0: एक न्यास की तुझे लगे जा नानका सकंडी है सदी रे समाए चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा हो
1: सलाम जवाब दो करे मुंडा कुत्ता जा नानक।

हीअ आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़। तंहिं खां सवाइ तव्हां आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप ऐं डीडी फ्री डिश ते बि ॿुधी सघंदा आहियो। असांजो प्रोग्राम शुरू थी चुको आहे। तफ़सील कुझु हिन रीत आहिनि। सभ खां अवल तव्हां भगत कंवर राम जे मिठड़े आवाज़ में कलाम ॿुधंदा। तंहिं खां पोइ तबसिरो पेश कयो वेंदो। 6:40 ते भगवंती नावाणी जे सुहिणे आवाज़ में सुखमनी साहिब जी अष्टपदी ॿुधंदा। उन खां पोइ ख़ासि ख़ासि ख़बरूं नशर कयूं वेंदियूं। इहा त हुई असांजे प्रोग्राम जी तफ़सील। हींअर अचो असां ॿुधूं भगत कंवर राम जे मिठड़े आवाज़ में ही कलाम।

पूरो करण लाइ हिकु वॾी साई आम दरफ़्त इनकलाब मां गुज़री रहियो आहे। इहो बदिलाउ तेज़ीअ सां इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाइण, आवामी आम दरफ़्त जो वॾो विस्तार ऐं भारी सामान ढोइण वारी लॉजिस्टिक खे टिकाऊ बणाइण जे मक़सद सां कयो वञी रहियो आहे, जीअं शहर जी भीड़ ऐं हवा जे प्रदूषण खे घटि कजे। सॼे देश में मिलियन जी तइदाद में ईवी रजिस्टर थिया आहिनि। इहा तरक़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, थ्री व्हीलर ऐं वधंदड़ कमर्शियल गाॾियुनि जे सबब थी आहे। रियासती ट्रांसपोर्ट इदारा डीज़ल गाॾियुनि खे ज़ीरो एमीशन वारी गाॾियुनि सां तेज़ी सां बदिले रहिया आहिनि, जिन खे पीएमई बस सेवा स्कीम जहिड़नि कदमनि जो सहारो आहे। मास रैपिड ट्रांज़िट नेटवर्क टीयर 1 ऐं टीयर 2 शहरनि में तेज़ी सां वधी रहिया आहिनि। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजीअ में सरमायोकारी कई वञी रही आहे, ख़ासि करे भारी कमर्शियल गाॾियुन ऐं लॉन्ग रूट ट्रकनि लाइ। साई ऐं टिकाऊ आम दरफ़्त जे पासो हिकु वॾो क़दम खणंदे भारतीय रेलवे हाल ही में नॉर्दन रेलवे जे ज़िंद सोनीपत सेंक्शन ते 10 दॿनि वारो हाइड्रोजन फ्यूल सेल ते आधारित ट्रेन सेट हलाइण जी मंज़ूरी ॾिनी आहे। इहो ट्रेन सेट जल्दी ही शुरू थियण वारो आहे ऐं इहो 75 किलोमीटर फी कलाक जी वधीक खां वधीक रफ़्तार ते हलंदो, जंहिंखे 1200 किलोवाट जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्शन सिस्टम ताक़त ॾींदो। हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन जो इस्तेमाल करे हिकु केमिकल रिएक्शन ज़रिए बिजली पैदा कंदी आहे, जंहिं मां एमिशन जे रूप में सिर्फ़ पाणीअ जी बाफ़ निकरंदी आहे। इहो ई सबबु आहे जो इहो पारंपरिक फॉसिल फ्यूल ते हलण वारनि सिस्टम जो हिकु साफ़ सुथरो बदल आहे। हाइड्रोजन ते हलण वारो रेल सिस्टम पूरी दुनिया में टिकाऊ आम दरफ़्त लाइ हिकु उमीदवार तरीक़ो मञियो वञी रहियो आहे। इन शुरूआत मां भारत दुनिया जे उतन मुंड वारनि देशनि जहिड़ोक जर्मनी, जापान, चीन ऐं अमेरिका में शामिल थी वियो आहे, जेके साफ़ सुथरी रेल आम दरफ़्त लाइ हाइड्रोजन जो इस्तेमाल जांचे रहिया आहिनि। छो त इहा टेक्नोलॉजी अञा शुरूआती दौर में आहे, तंहिं करे दुनिया जा सिर्फ़ कुझु ई देश हाणे इन्हीअ सिस्टम खे हलाए या जांचे रहिया आहिनि। इहा टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स ते आधारित आहे, जेका सिर्फ़ पाणीअ जी बाफ़ कढंदी आहे, जंहिंसां कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन ख़तम थी वेंदो। ट्रेन जी ताक़त, इहो ब्रॉडगेज प्लेटफॉर्म ते दुनिया जो सभ खां ढिघो 10 दॿनि वारो ऐं सभ खां ताक़तवर हाइड्रोजन ट्रेन सेट आहे, जंहिंजी कुल कुवत 2400 किलोवाट आहे। हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर रिफ्यूलिंग लाइ ज़िंद में ई 1 मेगावाट जो पीईएम इलेक्ट्रोलाइज़र ऐं 3000 किलोग्राम जो हाइड्रोजन स्टोरेज ऐं डिस्पेंसिंग जो मर्कज़ बणायो वियो आहे। हरियाणा जे ज़िंद सोनीपत सेंक्शन खे इन्हीअ कार्रवाई जे पायलट रूप तौर सुञाणप कई वई आहे। ट्रेन सेट लाइ ज़िंद में हिकु स्वदेशी हाइड्रोजन स्टोरेज ऐं रीफ्यूलिंग मर्कज़ क़ाइम कयो वियो आहे। पेट्रोलियम ऐं एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइज़ेशन पीईएसओ इन्हीअ मर्कज़ ते कम्प्रेस्ड हाइड्रोजन गैस खे सांडण ऐं विरिहाइण जो ज़रूरी लाइसेंस ॾिनो आहे। रीफ्यूलिंग कार्रवाई लाइ हिकु हाइड्रोजन कम्प्रेशन सिस्टम ॾिनो वियो आहे। साॻो साॻो ज़रूरी तकनीकी मदद ऐं ख़ासि स्पेयर पार्ट्स बि ॾिना विया आहिनि। कंहिं बि ख़राबी बिना हिन में भरोसेमंद कम थी सघे। हिकु स्टैंड बाय कम्प्रेशर यूनिट बि तयार रखी वई आहे। हाइड्रोजन पैदा करण, सांडण ऐं डिस्पेंसिंग मर्कज़ ते लॻा पियल जुदा जुदा सेफ्टी सेंसर जहिड़ोक हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर ऐं फ्लेम डिटेक्टर तिन्हीअ जी बाक़ायदा जांच ऐं सफ़ाई कई वेंदी, जीअं त काई धूड़ जमा न थिए ऐं कम महफ़ूज़ तरीक़े सां हले। हाइड्रोजन ट्रेन सेट ऐं हाइड्रोजन प्लांट जी ऑपरेशन ऐं मेंटेनेंस मैनुअल्स जेके RDSO खां मंज़ूर थियल आहिनि, उहे बि मुहैया कया वञी रहिया आहिनि। शकूर बस्ती में तजवीज़ कयल मेंटेनेंस मर्कज़ लाइ ज़रूरी बचाव जो बंदोबस्त, बाक़ायदा ऑडिट ऐं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पक कया वञी रहिया आहिनि। इन्हीअ मंज़ूरीअ खे महफ़ूज़ ऐं ऑपरेशनल प्रोटोकॉल जी पूरी पाबंदी शामिल आहे, जंहिंमें हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग सिस्टम जी 24/7 निगरानी, ख़ासि कमनि लाइ सिखियल ऐं सर्टिफाइड स्टाफ जी तैनाती ऐं बाक़ायदा जांच ऐं मेंटेनेंस

जो शेड्यूल शामिल आहे। शुरुआत जे दौर में सिखायल तकनीकी स्टाफ ट्रेन जैसा गड रहंदो ता कंहिं कम कोई भी कम बिना कंहिं रुकावट जे हली सघंदो। इहो प्रोजेक्ट भारतीय रेलवे जो इनोवेशन एनर्जी एफिशिएंसी ए माहौल दोस्त एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट जे सीधे पोह खे जाहिर करे थो ए भारत जे कौमी साफ ऊर्जा ए नेट जीरो कार्बन एमिशन जे मकसदन खे सहारो डिए थो। इहो पायलट प्रोजेक्ट रेलवे खे जीरो एमिशन रेल नेटवर्क में बदलण जे वडे मकसद हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज जो एक हिस्सो आहे। भारतीय रेलवे जो प्लान आहे त उहो पूरे देश जे पहाड़ी ए हेरिटेज रूटन ते अहिड़ो पंटीह माहौल दोस्त ट्रेनू हलाईंदो। तमा तब सिरो बुधी रहा हुआ।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।

हीअ आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस आहे। तव्हां भगवंती नावाणीअ जे मिठड़े आवाज़ में सुखमनी साहिब जी पहिरीं अष्टपदी ॿुधी रहिया हुआ। हींअर पेश आहिनि ख़ासि ख़ासि ख़बरूं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ऐं म्यांमार जे राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्वाइन नई दिल्लीअ में ॻाल्हियूं कयूं। हिननि हिक ॿिए जी सुरक्षा जे ख़िलाफ़ पंहिंजे इलाइक़े जे ग़लति इस्तेमाल खे रोकण ते ज़ोर ॾिनो। भारत ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौतो लागू थी वियो आहे, जंहिंसां भारतीय निर्यात कंदड़नि खे ओमान जे 98% टैरिफ लाइननि ते महसूल मुफ़्त यानी ड्यूटी फ्री पहुच मिलंदी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया जे उप प्रधानमंत्री ए रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ले से मिलिया। अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प चयो आहे त इज़राइल ए हिज़बुल्लाह मध्यस्थन जरिए गालियों करण खां पोए लड़ाई घट करण ते सहमत थिया आहिन। हॉकी में भारत मेन्स अंडर अरना एशिया कप 2026 में कोरिया मथां 4-1 सां शानदार जीत दर्ज कई।

तव्हां आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे। वरी तव्हां सां गॾिजाणी थींदी सुभाणे सुबुह जो भारतीय वक़्तु मुताबिक़ 6 बजे। तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त, सदाई गॾु।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जो ओमान को होने वाले भारत के 99% से अधिक निर्यात को कवर करती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरू भाई अंबानी के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुच्चेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुच्चेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किए। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi yesterday. The discussions covered trade, defence, border management and culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, the Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
3: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
2: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India and the US have finalized most elements of the first phase of the bilateral trade agreement and negotiations are now focused on a few minor issues, commas and full stops. He said that the US team is in New Delhi to hold talks on finalizing the first phase of bilateral trade agreement BTA. The talks will take place in New Delhi from today till Thursday. India's chief negotiator is Darpan Jain, additional secretary in the Department of Commerce, while the US team is led by its chief negotiator, Brendan Lynch. Five newly appointed Supreme Court judges will take oath today. Chief Justice of India, Suryakant, will administer the oath of office to the judges. President Draupadi Murmu, after consultation with the Chief Justice of India, has appointed five new judges to the Supreme Court. According to a notification issued by the Law Ministry, Chief Justice of Punjab and Haryana High Court, Justice Sheel Nagu, Chief Justice of Bombay High Court, Justice Shri Chandrasekhar, Chief Justice of Madhya Pradesh High Court, Justice Sanjeev Sajdeva, and Chief Justice of Jammu and Kashmir and Ladakh High Court, Justice Arun Balli, have been elevated as Supreme Court judges. Senior Advocate Venkita Subramani Mohana has also been appointed as a judge in the Apex Court. BJP National President Nitin Nabin held a meeting with senior party office bearers and workers in New Delhi yesterday. Talking to media, party MP and spokesperson Dr. Sambit Patra shared key details, highlighting discussions on Narendra Modi government's 12 years of service, organizational expansion and future initiatives aimed at broadening the party's outreach across various sections of society. He said that the government is completing 12 years in office and everyone has witnessed how India has progressed under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, with advancements taking place across every sector. Uttar Pradesh government has constituted two separate high-level inquiry committees to investigate the collapse of the segmental span of the under-construction bridge over the Betwa River in Hamirpur district. The committees under the district administration and Uttar Pradesh Bridge Corporation have begun a comprehensive investigation into the incident, which took six lives. District Magistrate Hamirpur Abhishek Goyal said that the three-member inquiry committee constituted by the district administration, headed by the additional district magistrate Namami Gange, is conducting a detailed examination of all administrative, technical and procedural aspects related to the incident. In Uttarakhand, UNESCO World Heritage Site Valley of Flowers, located in Chamoli district, has been opened to tourists. The Forest Department has appealed to visitors to cooperate in the conservation of the valley's rich biodiversity and rare plant species. According to the department, Valley of Flower is currently home to more than 300 species of flowers and several rare varieties of flora. Forest Range Officer Chetna Kandpal said that the valley will remain open to visitors until the 31st of October. In hockey, India registered a commanding 4-1 victory over Korea in their third Pool A match of the Men's Under-18 Asia Cup in Takamigahara, Japan, yesterday. Captain Ketan Kushwaha led from the front with a brace, scoring in the 3rd and 36th minutes. Varinder Singh added another goal in the 5th minute, while Shahrukh Ali sealed the win with a powerful strike in the 54th minute. And that is the end of this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़।

810 किलो हर्ट्स पर। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका। संगीतिका कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे ब्रजेश मिश्रा की आवाज में भजन। तो सबसे पहले सुनते हैं ये भजन।

इसी के साथ आज का संगीति का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुने ब्रजेश मिश्रा की आवाज में भजन, हारमोनियम पर संगत कर रहे थे करीम नियाजी, बांसुरी पे विनय प्रसन्ना और राशिद नियाजी तबले पर, और कीबोर्ड पे थे लवीदास और दानिश असलम सरोद पर। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे सत्यम शिवम सुंदरम का ये गीत। आप सुन रहे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ आज मैं आपकी दोस्त शोभा शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। और बहुत सारे गीत भी हैं और बहुत सारी बातें भी दिल में आ रही हैं, और सुबह की जो ये सुनहरी बेला है इसमें आपका बहुत स्वागत है। और यूँ कहें कि कार्यक्रम भी आपको ज़रूर अच्छा लगता होगा, क्योंकि पूरी ऊर्जा के साथ हम सोचते हैं अच्छे अच्छे गीत चलाएं, और जो सुबह होती है ना वो नई उम्मीद और नई ऊर्जा के साथ शुरू हो तो वाकई पूरा दिन बन जाता है। कहते हैं कि सुबह का जो पहला विचार पूरे दिन की दिशा तय करता है, इसलिए आज का दिन सकारात्मक सोच, मुस्कुराहट और उत्साह के साथ शुरू कीजिए।

दोस्तों, सुबह की ताज़ी हवा, चिड़ियों की चहचहाट और मधुर संगीत, इन सब में अपना ही जादू है और इसी जादू को हम बरकरार रखते हैं। जी हाँ, बहुत ही प्यारा गीत आप सुनते हैं फिल्म गुमनाम से लता मंगेशकर की आवाज़ में, कार्यक्रम वही गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

हाँ बिल्कुल, टेंशन्स गम ये सब छोड़ दे, डिप्रेशन में चले जाओगे, इससे अच्छा है कि अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जिए। और कहें कि मैं कहूंगी कि सबका ख्याल रखिए पर अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि अगर कहीं आप खुश होंगे तो सब खुश हो पाएंगे, अगर आप ही खुश नहीं हो तो आपके व्यवहार में वो फर्क नजर आएगा और फिर यूं कहें कि खुशियां कहीं दूर चली जाती हैं। दोस्तों जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीखिए, कभी उगते सूरज को देखिए, कभी परिवार के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद लीजिए, यही पल जीवन को खूबसूरत बनाते हैं।

तो आज के आज होगी तो मेरा गुड मॉर्निंग कार्यक्रम है, पर यूँ कहूँगी कि बस अब समाप्त होने के लिए कगार पे जी। हाँ, आज का ये कार्यक्रम मुझे संपन्न करने की से इजाज़त दीजिए, पर चाहिएगा कहीं नहीं, बहुत ही प्यारा सा गीत आपके इंतज़ार में है और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो गीत थे आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और आप ज़रूर सकारात्मक और पॉजिटिव एनर्जी के साथ भर गए होंगे, क्योंकि हर सुबह एक नया अवसर है, नई उम्मीद है और नई शुरुआत है अपनी ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बनाने का। बाकी मैं तो कहूँगी कि एक पॉजिटिविटी के साथ भर जाइए और अपने काम को दिल लगा के कीजिए, और जिसके को आप बहुत प्यार से और शिद्दत से करते हैं आप उसमें ज़रूर सफल होते हैं। तो इसी के साथ मैं शुभ आपसे चाहती हूँ इजाजत, नमस्कार, पर जाइएगा नहीं, बहुत ही प्यारा सा गीत आपके इंतजार में और यूँ कह के अपना दिन बना देगा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने

0: व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री ऑनलाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति ऑनलाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित

0: क्या?
1: With the help of this scheme, I started my...
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
1: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
0: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
3: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
0: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि यह घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
5: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
4: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नवनियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा।

0: 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पंवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षय लद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्ता ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिंग आउंग लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमरीका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन आउंग फ्लाइंग सेज हिज कंट्री विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under 18 Asia Cup. Myanmar President U Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defense, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Aung Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the President of Myanmar reiterated the assurance that Myanmar's territory will not be permitted to be used against India's security interests. Mr. Misri said Prime Minister Modi reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests.
4: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
3: The Foreign Secretary said that both sides expressed interest in forging closer cooperation, particularly in areas of trade and investment, health, education, energy, and critical technologies like artificial intelligence. The Myanmarese leader, accompanied by a high-level delegation, will travel to Mumbai today for business and industry interactions and site visits. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India and the United States have finalized most elements of the first phase of the bilateral trade agreement, and negotiations are now focused on a few minor issues, commerce and full stops. We have a report.
5: Commerce Minister Piyush Goyal said that the team from United States is in New Delhi to hold talks on finalizing the first phase of bilateral trade agreement BTA. The talks will take place in New Delhi from today and it will last till Thursday. India's chief negotiator is Darpan Jain, additional secretary in the Department of Commerce, while the US team is led by its chief negotiator Brendan Lynch. On 3rd of February, both sides announced the framework for the first phase of the BTA. The two sides have proposed to finalize the details of the interim agreement and take forward the negotiations under the broader BTA on multiple areas such as market access, non-tariff measures, customs and trade facilitation and investment promotion. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
3: BJP National President Nitin Naveen held a meeting with senior party office bearers and workers in New Delhi yesterday. Talking to media, party MP and spokesperson Dr. Sambit Patra shared key details, highlighting discussions on the Narendra Modi government's 12 years of service, organizational expansion and future initiatives aimed at broadening the party's outreach across various sections of society. He said that the government is completing 12 years in office and everyone has witnessed how India has progressed under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, with advancement taking place across every sector. Mr. Patra said, today, the Bharatiya Janata Party and the NDA have been given the opportunity to serve in government in 22 states. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature on the government's efforts over the last 12 years across key sectors. Today, we focus on the measures taken by the government towards the empowerment of women.
6: Over the past 12 years, women empowerment in India has witnessed a transformative shift driven by sustained government efforts to enhance access to health care, education, livelihood opportunities, financial inclusion and leadership roles. The Pradhan Mantri Mudra Yojana, launched in 2015, has enabled millions of women to access collateral-free loans to start and expand their businesses. Under the scheme, loans worth more than 40 lakh crore rupees had been disbursed to beneficiaries by March this year. Of them, around 17 lakh crore rupees were given to women. Talking spokesperson to Akashwani News, Vanesri from Tirupur, Tamil Nadu, said that the scheme had motivated her to become entrepreneurs.
7: With the help of this scheme, I started my dream career and opened my new business as a small boutique shop. And I'm really proud to say it's running successfully. Now I'm capable to start 2 to 3 branches also, and also

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। म्यांमा के सदर ओमिन आउनलाइन ने यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका ने बाहमी तिजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है। उत्तराखंड में यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सियाहों के लिए खोल दिया गया है। एशियाई गेम्स 2026 से कबल 22 कुश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। और हॉकी में 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप में भारत ने कोरिया को 1-4 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। म्यांमा के सदर ओमिन आउनलाइन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने कल नई दिल्ली में तिजारत, दिफा, तवानाई और कनेक्टिविटी के शोबों में बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए वसीतर मौजूआत पर बातचीत की। म्यांमा के सदर भारत के 5 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। बातचीत के बाद नामानिकारों को जानकारी देते हुए खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने म्यांमा के इकतदार आला और इलाकाई सालिमियत के तहत भारत की हिमायत का इरादा किया और तरफेन ने अपने सिक्योरिटी मफादात के मुनाफी सरगर्मियों के लिए अपने इलाके के बेजा इस्तेमाल की रोकथाम की अहमियत उजागर की।
1: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
0: खारिजा सेक्रेटरी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने खासतौर पर तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, तवानाई और मसनूई जहानत जैसी अहम टेक्नोलॉजी के शोबों में करीबी इश्तराक कायम करने में दिलचस्पी का इजहार किया। म्यांमा के सदर आला सतह के वफद के हमराह आज मुंबई जा रहे हैं, जहां वो कारोबारी और सनती रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू करेंगे और मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेंगे। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका ने बाहमी तिजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है और अब मुजाकरात में चंद मामूली उमूर पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। उन्होंने कहा कि अमरीकी टीम दोतरफा तिजारती मुआहदे के पहले मरहले को हतमी शक्ल देने के बारे में बातचीत के लिए नई दिल्ली आई हुई है। ये बातचीत नई दिल्ली में आज से जुमेरात तक जारी रहेगी। कॉमर्स के महकमे में एडिशनल सेक्रेटरी दर्पण जैन भारत के आला मुजाकरातकार हैं, जबकि अमरीकी टीम की सरबराही उसके आला मुजाकरातकार ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के आला अहदेदारों और कारकुनान के साथ मीटिंग में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट और तर्जुमान डॉक्टर संबित पात्रा ने नरेंद्र मोदी हुकूमत के गुज़श्ता 12 साल तंजीमी तौसी और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने से मुतालिक बातचीत के कलीदी निकात को शेयर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने 12 साल मुकम्मल कर रही है और हर किसी ने यह महसूस किया है कि कैसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत में हर शोबे में तरक्की रूनुमा हुई है। जनाब पात्रा ने कहा कि मौजूदा वक्त में बीजेपी और एनडीए को मुल्क की 22 रियासतों में खिदमात अंजाम देने का मौका हासिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मिसाली क्यादत में गुज़श्ता 12 साल में भारत में नुमाया तब्दीली रूनुमा हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उसूल इस तब्दीली का मुहर्रिक रहा है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख्वातीन और नौजवानों पर मरकूज मुतअद्दिद पहलुओं का आगाज और निफाज किया है। आकाशवाणी न्यूज गुज़श्ता 12 साल में कलीदी शोबों में किए गए हुकूमत के इकदामात पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम हुकूमत की जानिब से ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक किए गए इकदामात का जायजा ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: گزشتہ 12 سال میں خواتین کو با اختیار بنانے سے متعلق اقدامات میں نمایاں تبدیلی آئی ہے. حکومت کی جانب سے حفظان صحت، تعلیم، روزگار کے مواقع اور معاشی شمولیت کے لیے کیے گئے اقدامات اس تبدیلی کے محرک ہیں. پردھان منتری مدرا یوجنا کے تحت جس کا آغاز 2015 میں کیا گیا تھا، کروڑوں خواتین اپنے کاروبار کو شروع کرنے اور وسعت دینے کے لیے ضمانت سے مبرہ قرض حاصل کر پائی ہیں. مذکورہ اسکیم کے تحت اس سال مارچ کے آخر تک 40 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کا قرض دیا جا چکا ہے، جس میں سے 17 لاکھ کروڑ روپے خواتین کو دیے گئے. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے تروپور تمل ناڈو کی رہائشی ونشیری نے بتایا،
3: اس یوجنا کی سہایتا سے میں نے اپنی نئی بوٹک شاپ کھولی ہے اور میں یہ گرو کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ شاپ بہت اچھی چل رہی ہے. اس کے ساتھ ہی میں اب اپنے پرتشٹھان کی 3 سے 4 اور شاخاؤں کا سفل سنچالن کرنے میں سکشم ہو گئی ہوں. 2 to 3 branches also.

0: जापान के साथ साथ भारत के भी 6 पॉइंट हो गए हैं। भारत कल अपना आखिरी पूल मैच चीनी ताइपे के खिलाफ खेलेगा। केरलम में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के इम्कान के मद्देनजर 14 जिलों में से 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन में बारिश में शिद्दत आने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला लड़ाई रोकने पर रजामंद हो गए हैं। इससे कबल उन्होंने इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत की और सालिसों के तवस्सुत से लेबनान के मिलिटेंट ग्रुप को इससे मुत्तला किया। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर गुफ्तगू के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। अमरीकी सदर ने कहा कि अब कोई भी फौजी बेरूत नहीं जाएगा और जो फौजी वहां रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। सदर ट्रंप ने बताया कि हिजबुल्ला ग्रुप ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि सभी तरह की गोलीबारी बंद हो जाएगी, इसराइल उस पर हमला नहीं करेगा और वो भी इसराइल पर कोई वार नहीं करेगा। तृणमूल कांग्रेस ने अपने 2 एमएलए संदीपन साहा और ऋतुप्रता बनर्जी को पार्टी से निकाल दिया है। ये कार्रवाई दोनों रहनुमाओं की जानिब से पार्टी मुखालिफ कार्रवाइयों, कलीदी मीटिंगों में अदम मौजूदगी और पार्टी कयादत मुखालिफ बयानात की वजह से की गई है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
1: शुक्रिया नीतिका। दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमा के सदर के दरमियान हुई बातचीत को नुमाया किया है। वजीर आजम ने म्यांमा के तई हिमायत का इरादा किया, जबकि सदर उमिन आउलाइन ने कहा कि म्यांमा में भारत मुखालिफ अनासिर के लिए कोई जगह नहीं है। अखबार की एक और सुर्खी है, सदर जमहूरिया की मंजूरी मिलने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की कुल तादाद 37 हो गई। रोजनामा इंकलाब की नीट इम्तिहान से मुतालिक सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट का नीट इम्तिहान कंप्यूटर से कराने से इनकार, पेपर लीक की वजह से दोबारा इम्तिहान के लिए 21 जून की तारीख मुकर्रर की गई है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। म्यांमा के सदर उमिन आउलाइन ने यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका ने बाहमी तिजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है। उत्तराखंड में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सियाहों के लिए खोल दिया गया है। एशियाई गेम्स 2026 से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। हॉकी में 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप में भारत ने कोरिया को 1 के मुकाबले 4 गोल से हरा दिया। 2026 के एशियाई खेलों से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे प्रभुलाल भांगरा से सितार वादन, राग है जौनपुरी, तबले पर संगत की है अमजद अली ने।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसके अंतर्गत आज आपने सुना प्रभुलाल धांधरा से राग जौनपुरी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।

0: विज्ञान पत्रिका के संक में आप सबका स्वागत है। भारत में वैज्ञानिक चेतना साइंटिफिक टेंपर का विकास केवल तकनीकी प्रगति नहीं बल्कि तार्किक सोच साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण और रूढ़िवादी मान्यताओं से मुक्ति का एक सशक्त दर्शन है। आधुनिक युग में ये राष्ट्र निर्माण नवाचार और आत्मनिर्भरता का मूल आधार बन चुकी है। विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं ये भेंटवार्ता। भारत में वैज्ञानिक चेतना का विकास आधुनिक आयाम चुनौतियां और संभावनाएं। ACSIR के पूर्व प्रोफेसर और CSIR के मुख्य वैज्ञानिक लेखक कवि और वृत्तचित्र फिल्म निर्माता गौरव रजन से भेंट कर रहे हैं दिलीप झा।
1: आज जो हमारा विषय है और जो विशेषज्ञ हैं दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। विषय का महत्व ये है कि वैज्ञानिक चेतना की बात अक्सर की जाती रही है, साइंटिफिक टेम्पर की बात की जाती है। हमारे संविधान में भी Article 51A हर नागरिक के मूल कर्तव्य के रूप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवता और सुधार की भावना के विकास की बात करने को कहता है। लेकिन जब विज्ञान अनुसंधान और उसके प्रतिफल आते हैं तो क्या वो सर्वमान्य मानवता के लिए ही तैसी हो जाते हैं? उसके प्रतिफल को उपयोग करने के लिए किस तरह के एक वैज्ञानिक चेतना के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण को भी अपनाए जाने की जरूरत है। विज्ञान को आम जनता तक सरल भाषा और सांस्कृतिक माध्यमों से पहुंचाने के लिए विशेष रूप से जाने जाने वाले गौहर रजा साहब, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
2: बेहद शुक्रिया आपका यहाँ मुझे बुलाने के लिए।
1: आपने कल्चरल डिस्टेंस मॉडल ऑफ पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस जैसी महत्व

0: महत्वपूर्ण अवधारणा विकसित की है, तो इसके पीछे की मूल अवधारणा क्या है और किस तरह से लोगों को समझना चाहिए?
1: आपने दो सवाल रखे हैं, तो पहला सवाल अपने अंदर बहुत जटिल सवाल है कि हमारे देश में, हमारे समाज में जो इतना फैलाव है और जो इतनी विविधता है, उसमें साइंटिफिक टेम्पर की या वैज्ञानिक दृष्टिकोण की क्या अवधारणाएं हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं और किस तरह से उसको फैलाया जा सकता है। ये एक बहुत जटिल सवाल है और आजादी से पहले से हमारे पूर्वजों ने ये सवाल पूछना शुरू कर दिया था। और अभी आपने जिक्र किया आर्टिकल 51AH का, और इस आर्टिकल में एक बड़ी खास बात है, बल्कि दो बहुत खास बातें हैं। एक खास बात तो यह है कि हम अकेले देश हैं जिन्होंने ऐसा आर्टिकल अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है, दुनिया भर के देशों को अगर देखें। दूसरे, साइंस और ह्यूमनिज्म यानी मानवता को, दोनों को एक साथ रखा है। साइंस बिना मानवता के और क्यूरियोसिटी को भी रखा है, वहीं उसी बास्केट में रखा है,
0: पर्यावरण को भी रखा है,
1: पर्यावरण को रखा। तो ये जो चीजें हैं ये दर्शाती हैं कि हमारे पूर्वज कितने डीप थिंकर थे, कितनी गहरी सोच थी उनकी आने वाले वक्त को लेकर के भी और जिस वक्त वो मौजूद थे उस वक्त को लेकर के भी। अब सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या परिभाषा, तभी बहस आगे बढ़ सकती है। मतलब अगर आपको परिभाषा नहीं पता तो मैं कुछ समझ रहा हूँ और आप कुछ समझ रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो अलग अलग गड़बड़ हो जाएगी। तो उसमें हमको सबसे ज्यादा जो मदद देते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू देते हैं। ये अलग बात है कि हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी उसके ऊपर बातचीत की है, लेकिन सबसे खूबसूरत परिभाषा हमको नेहरू के यहाँ मिलती है। और वो ये कह रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब ये है कि आप नई चीजें खोजने के लिए हमेशा अपने दिमाग को तैयार रखें, जो अनुशासित हो और आजाद भी हो। ये बड़ी अजीब बात है कि अनुशासित और आजाद दोनों की बात नेहरू कर रहे हैं, और नए प्रमाण और नए डेटा के आधार के ऊपर आप अपनी पुरानी मान्यताओं को बदलने के लिए तैयार हो। अब ये बात जो है ये बड़ी चौंका देने वाली बात, हम अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि दाल ऐसी पकती है हमारे घर में, जो पड़ोस में दाल पकती है जिस तरह की, वो हमें मंजूर नहीं। हमारा धर्म ये कहता है कि इस दिन ऐसे करके ऐसे ही खाना खाना, छोड़ने को तैयार नहीं है। सूर्य ग्रहण हो जाए तो अपना खाना अलग रख देना है, खराब हो जाता है फेंक देना वो खाना। तो इन मान्यताओं को छोड़ने का आह्वान दे रहा है, अगर ये टकराती हैं साइंस के साथ, ये कह रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर इस डेफिनेशन को हम लें, बात काफी साफ हो जाती है। इस डेफिनेशन को लेने के बाद ये बात साफ हो जाती है कि हमको साइंस की जानकारी का दायरा बढ़ाते हुए इसका भी ख्याल रखना है कि पुरानी वो मान्यताएं जो साइंस की जानकारी से टकराती हैं या समाज के लिए बुरी हैं, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, धर्मों के बारे में बात करते हुए कहा है कि जो धर्म की अवधारणा या प्रैक्टिस दोनों में से कोई अगर मानवता के उसूलों से टकराती है तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे समाज के अंदर जो डीपली रिलीजियस हो और धर्म बन जाए सुपरस्टिशंस का आधार और उसका एक मार्केट तैयार हो जाए, ऐसे में आवाहन दे रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि नहीं भाई, कुछ चीजें तो छोड़नी पड़ेंगी, साइंस आज की ये कह रही है। इसे फैलाने के लिए हमको समाज में एक माहौल तैयार करना होगा जिसमें नई जेनरेशंस, हमारी नई नस्लें जो हैं, वो कम से कम ये हिम्मत रखें कि भाई ये चीज जो है वो साइंस के हिसाब से गलत है। अब जैसे हमारे देश में जहां तक जाति प्रथा का मामला है, वो हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब में, और हमारे देश में जो मान्यता है जाति की, उसके आधार के ऊपर इंसान गंदा होता है, यानी उसका साया पड़ जाए, वो कोई चीज छू ले, वो अंदर आके बैठ जाए, तब गंदा हो जाता है सब कुछ। तब आपको या तो गंगाजल से उसको करना है या आबे जमजम से करना है उस जगह को, या कोई और करवाना। साइंटिफिक आइडिया जो है गंदगी का, वो ऐसे समाज में नीचे तक जा नहीं सकता, क्योंकि साइंटिफिक आइडिया है कि जर्म्स गंदे हैं, वो गंदगी पैदा करते हैं, मक्खियां गंदगी पैदा करती हैं, वायरस गंदगी पैदा करते हैं, वो कॉज है हमारे, ये साइंटिफिक आइडिया। इन दोनों में टकराव।
0: तो ये कल्चरल डिस्टेंस मॉडल आपका है पब्लिक अंडरस्टैंडिंग।
1: कल्चरल डिस्टेंस मॉडल की जरूरत पड़ती है, जहाँ टकराव है, जहाँ फिल्टर्स हैं, वहाँ साइंस की जानकारी लोगों तक कैसे पहुँचाई जाए। अगर हमें ये नहीं पता कि किसी एक आइडिया का कितना डिस्टेंस है हमारे कल्चर से, कितनी दूरी पर है, तो हम उसे लोगों तक नहीं पहुँचा सकते, इफेक्टिवली नहीं पहुँचा सकते।
0: निश्चित रूप से, क्योंकि विज्ञान का भी अपना धर्म है, जो सत्यता की कसौटी पे परख के लोगों के सामने लाता है, और धर्म का अपना विज्ञान है जो हमारी मान्यताओं के अनुरूप हमारे मन मस्तिष्क पे छा जाता है, और जो चूंकि संस्कारों की गीली तीलियां जल्दी आ

0: नहीं पकड़ती, ऐसे जनमानस में विज्ञान की सत्यता को पहुंचना, उसे स्वीकार दिलाना एक कठिन चुनौती विज्ञान संचारकों के बीच में रही है। तो आप जा विज्ञान लोगों की भावनाओं और जीवन में पर्याप्त रूप से जुड़ने के लिए प्रयत्नशील है। इस प्रयत्नशीलता में अगर आप देखें तो जैसे कि आपने चुनौतियां एक दो बताई कि जो हमारे अंधविश्वास हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारे धर्म और समाज, जो जाति पे बटे हुए समाज है, ये सारी हैं। लेकिन इन सब तक पहुंचने के लिए एक भाषा, एक चीज बात जो है, एक जो सत्य है वो विज्ञान है, जो हर जगह है। अगर हम देखें कि इसके कल्चरल डिफरेंस की बात की, हमारा देश ही सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। सबसे बड़ा जो विज्ञान है वो कुंभ मेला है। कुंभ मेले का भी अपना विज्ञान है और विज्ञान के लिए वो कुंभ मेला एक चुनौती भी है। तो आपने 25 वर्ष तक अपने शोध से समाज और विज्ञान को खास करके कुंभ मेले से जोड़ के किया है, वो क्या है, किस तरह से वो आम लोगों के लिए जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हमारे सुनने वालों को बताइए।
1: 1900 से लेकर के 1989 से लेकर के और 2019 तक मैंने कोई अर्धकुंभ और कोई कुंभ ऐसा नहीं है जो छोड़ा हो, जहां टीम के साथ ना गया हूं मैं। उसमें मेरे बहुत सारे कलीग्स शामिल थे और वहां लोगों से साइंस के सवाल पूछे।
0: उन दिनों आप CSIR में थे, निस्केयर में मुख्य वैज्ञानिक के पद पे आप रहे वहां तक।
1: मेरे 34 साल वहां गुजरे और 30 साल मैं लगातार कुंभ में भी गया, तो इस पर मेजर काम रहा। जो अहम सवाल था हमारे सामने वो ये था कि क्या हम वेस्टर्न मॉडल्स अपने देश में लागू कर सकते हैं साइंस कम्युनिकेशन के, क्या हम उन मॉडल्स से परख सकते हैं अपने देश की जनता। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल था कि अमेरिका में उस जमाने में इसके ऊपर काम शुरू हुआ जो यूरोप में फैला, और तभी हमने शुरू किया साइंस कम्युनिकेशन पे रिसर्च का काम। जो टीम्स वहां थी उन्होंने जो कुछ काम किया था उसको परखने की कोशिश की और इस नतीजे पर पहुंचे कि वो इंडिकेटर्स, वो पैरामीटर्स इस्तेमाल नहीं किए जा सकते जो वेस्टर्न सोसाइटी को परखने के लिए इस्तेमाल करेंगे, हमें अपने इंडिकेटर्स चाहिए। तो कुंभ मेले में हिंदुस्तान पूरा रिप्रेजेंटेशन के साथ मौजूद होता है। दुनिया सबसे बड़ा जमावड़ा है, हिंदुस्तान के हर कोने से लोग आते हैं और हिंदुस्तान के बाहर से भी लोग आते हैं वहां। तो इससे खूबसूरत जगह कोई हो ही नहीं सकती थी, और इलाहाबाद का कुंभ मेले की बात कर रहा हूं जो सबसे बड़ा होता है, जहां करोड़ों में लोग आते हैं। इससे खूबसूरत कोई जगह नहीं थी जिसमें मैं उस कम पैसे के साथ जो हमें प्रोजेक्ट के लिए मिला था मैं एक बेहतरीन हिंदुस्तान का सैंपल इकट्ठा कर सकूं जानकारी का। तो वहां चले और फिर जो रिसर्च का और साइंस का नशा होता है वो बहुत गहरा होता है, तो 30 साल तक लगातार जाते रहे। मैं काफी लोगों कहता हूँ कि तुम धार्मिक होने का दावा करते हो, कितनी बार गए हो कुंभ मेले में, मतलब लगातार 30 साल तक कोई कुंभ मेला ना छोड़े, ऐसा अधर्मी देखा है मेरे जैसा। महाकुंभ हर 12 साल पे आते हैं, तो तीन महाकुंभ हैं उसमें और तीन अर्धकुंभ हैं उसमें, और हर साल वहाँ माघ मेला तो होता ही है। मैं मांग मेले में नहीं गया, वहां लगभग 5000 लोगों से इंटरव्यू करना अपने अंदर बड़ा चैलेंज था। खासतौर से महिलाओं से इंटरव्यू करना एक बड़ा चैलेंज इसलिए होता है कि हमारे यहाँ महिलाओं को अप्रोच करना, उनसे बात करना लड़के नहीं कर सकते, जाकर के मर्द नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए लड़कियों को भी ट्रेन करना पड़ा एन्यूमरेटर्स को। तो 100 लोगों की टीम इलाहाबाद में इकट्ठा करके उनको ट्रेन करके कैसे इंटरव्यू करना है, किन चीजों का ख्याल रखना है, किन चीजों पर इम्फेसिस देनी है वगैरह, ये सब कुछ करके वहां हर साल जाते थे। और ऐसे में सवाल पूछ करके वापस लौट करके उसको कोड करके उसको कंप्यूटर में डाल के एनालाइज करना मुश्किल होता था। पर बड़ी चौंकाने वाली चीजें निकली। पहली बात तो ये कि लोग उन जटिल सवालों के बारे में जिसमें हम ये सोचते हैं जैसे पढ़े लिखे लोग उनके बारे में सोचते हैं, यानी ब्रह्मांड कैसा है से लेकर के इंसान इस धरती पर कैसे पैदा हुआ, या पर्यावरण में क्या तब्दीलियां आ रही है, या हेल्थ में क्या तब्दीलियां आ रही है, और खासतौर से महिलाएं। कमाल की बात यह है कि महिलाओं की जानकारी हेल्थ के एरिया में मर्दों से कहीं ज्यादा निकली हर साल जब भी हम गए, और उसकी वजह शायद यही है कि बीमारी का सबसे बड़ा बोझ खानदान में महिलाएं झेलती हैं। तो वो डेटा से साबित हो रहा था कि महिलाओं की जानकारी, जिसका मतलब ये होगा कि महिलाएं जो हैं वो हर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हेल्थ से रिलेटेड है वो कलेक्ट करके जमा करके अपनी सोच का हिस्सा बना लेती। तो मैं ये कह रहा था कि आम आदमी जिसे हम जाहिल समझते हैं, जिसे हम कहते हैं कि अनपढ़ है, गवार है, इसे क्या मालूम होगा, वो भी जटिल सवालों के बारे में लगातार सोचता रहता है, और उसके अंदर जिज्ञासा की भूख बहुत ज्यादा है हमारे देश। यानी हो सकता है कि कुछ लोग लोग साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन को लेके परेशान हो जाएं और आपके कत्ल करने पे तुल जाएं, जैसा नरेंद्र दाभोलकर और पंसारे और इन सब लोगों के साथ हुआ, लेकिन आम नागरिक उसके अंदर इतनी भूख है जानकारी की कि वो बड़े आने वाले वक्तों के लिए वो हमको बहुत भरोसा दिलाती है कि हमारा देश सही दिशा में आगे जा रहा था।
0: आपने जब वहाँ सर्वे किया लोगों के साथ, जैसा कि अब 30 साल से लगे रहे, 5,000 से ज्यादा लोगों से बातचीत की, एक क्वेश्चन आयर किस तरह के होते थे जानकारी लेने के लिए, किस तरह के प्रश्नों को आपने तैयार किए?
1: हमारे प्रश्न बिल्कुल बेसिक होते थे, जो अमेरिका और यूरोप में सवाल पूछे गए वो उनसे कंपेयर करके आपको इसका जवाब देता। वो सवाल ऐसे थे जिनमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई, तो हमें ये लगा कि देखिए हमारे देश में न्यूक्लियर साइंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे कभी डिबेट नहीं। अगर अमेरिकन सोसाइटी में आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड सवाल पूछेंगे तो वो साइंटिफिकली लिटरेट करार दे देंगे उनको, और हमारे यहाँ अगर आप एग्रीकल्चर के बारे में पूछेंगे तो हरेक का ऑलमोस्ट फैमिली ताल्लुक है कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर के साथ, तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की जानकारी ज्यादा मिल जाएगी, साइंटिफिक जानकारी मिल जाएगी, और यही हुआ, ये कन्फर्म हो गया। तो जो आइडिया था हमारा कि जांचने की कोशिश करें कि लोगों में जानकारी क्या है, उसके लिए जो सवाल थे वो फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी के सवाल थे, पर्यावरण और ज्योग्राफी के सवाल थे, हेल्थ साइंसेस के सवाल थे और एग्रीकल्चर के सवाल थे। ये एरियाज थे जिनमें हमने बेसिक जानकारी से शुरू करके बहुत कॉम्प्लेक्स जानकारी तक हासिल करने की कोशिश की।
0: ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जिससे प्रायः देश का हर क्षेत्र का हर नागरिक जुड़ा हुआ हर तबके का है,
1: और इनमें हमारा कंक्लूजन ये है जो मैं किताब लिख रहा हूँ इस वक्त, उसमें भी यही बात है, पिछले 30 सालों में लोग भ्रांतियों से अंधविश्वास से दूर गए हैं और साइंस के करीब आए हैं। कल्चरल डिस्टेंस हमारा साइंस के उन सवालों के ऊपर इन 4 एरियाज में कम हुआ है इस बीच में, जो एक बहुत अच्छी खबर है। इसके बावजूद कि इस बीच में बाबाओं का और खासतौर से प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स का बहुत बुरा रोल रहा है, हमारे जो राजनेता हैं उनका बड़ा बुरा रोल रहा है,
0: चमत्कारिक बातें करते हैं,
1: चमत्कार अंधविश्वास फैलाने की, नए नए अंधविश्वास फैलाने की बात करते हैं ये लोग, लगता ऐसा है कि शायद सारा देश अंधविश्वास के कुएं की तरफ जा रहा है, पर हमारी रिसर्च ये कह रही है कि ऐसा नहीं है, लोग साइंस की तरफ धीरे धीरे ही सही कदम बढ़ा रहे हैं और हम दुनिया के किसी देश से कदम बढ़ाने की रफ्तार में पीछे।
0: गोराजा साहब, इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मुझे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया।
2: भारत में वैज्ञानिक चेतना का विकास, आधुनिक आयाम, चुनौतियां और संभावनाएं। अभी आप वैज्ञानिक, लेखक, कवि और वृत्तचित्र फिल्म निर्माता गौहर रजा से ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। भेंट करता था दिलीप झा। और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाइक का, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 9:30 होने को है।

सकेंगे। 9:45 पर आज सवेरे प्रोग्राम होगा। खबरें 9:50 पर नष्ट होंगी और 10 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम शम्मे फरोजा। 10:05 पर हुस्ने गजल प्रोग्राम में गैर फिल्मी गजलें नश्र की जाएंगी। 10:30 पर आप सुन सकते हैं प्रोग्राम पूर्वोत्तर डायरी। 11 बजे मेरी पसंद प्रोग्राम होगा। 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्मसाज हिदायतकार और अदाकार राज कपूर के यौम वफात पर एक फीचर जिसका उन्वान है गर्दिश में था आसमान का तारा। 12 बजे खबरें नश्र की जाएंगी। 12:10 से आप सुन सकते हैं प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। दौरान प्रोग्राम तारीख साज प्रोग्राम में आज का मौजू है तहबाग तहरीक। 12:45 पर दिन में 1 बजे माफ कीजिएगा खबरें नश्र की जाएंगी और 1:15 पर आज की पहली मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नजर इस मजलिस में नश्र होने वाले प्रोग्रामों पर। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशरियात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर दस्तयाब है। पेश खिदमत है प्रोग्राम सुबह का ही।

0: अभी शुभग्राही प्रोग्राम के तहत आपने भजन सुने, पेश कर रही थी विद्या स्थाया। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश है आज सवेरे।
1: और श्रोताओं, वक्त आ गया है अतीत के पार उन प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज के दिन अपनी एक विशेष पहचान दर्ज की। आज 2 जून 2026 है और 2 जून का इतिहास देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक बदलावों का गवाह रहा है। आज ही के दिन आधुनिक भारत के नक्शे पर एक नए राज्य का उदय हुआ था। वर्ष 2014 में आज ही के दिन तेलंगाना आधिकारिक तौर पर भारत का 29वां राज्य बना था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर इस नए राज्य का उदय हुआ और जिसकी राजधानी हैदराबाद बनी। आज ही के दिन 1875 में सिकंदर ग्राहम बेल ने पहली बार टेलीफोन पर मानव आवाज का सफलतापूर्वक प्रसारण किया, जिससे वैश्विक संचार तकनीक में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन 1946 में इटली में राजशाही को समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ, जिसके तहत देश आधिकारिक तौर पर एक लोकतांत्रिक संसदीय गणराज्य बना। आज ही के दिन वर्ष 1966 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान सर्वेयर 1 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अमेरिका का पहला अंतरिक्ष यान बना। और श्रोताओं, जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में वादा किया था कि अब समय हो चला है हमारे आखिरी सेगमेंट का, जहां हम आपको आज के विशेष हस्तियों की जानकारी देंगे। सबसे पहले हम याद कर रहे हैं आधुनिक उड़ीसा के पहले आधुनिक वैज्ञानिक और देश के दिग्गज वनस्पति शास्त्री डॉक्टर प्राण कृष्ण पारीजा को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। एक ऐसे समय में जब देश में संसाधन बेहद कम थे, डॉक्टर पारीजा ने अपनी प्रतिभा के दम पर इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक का सफर तय किया। वे वहां से वनस्पति विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने। भारत लौटकर उन्होंने प्रयोगशालाओं से बाहर निकलकर सीधे किसानों की मदद की। उन्होंने फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली जलकुंभी और धान की खेती पर वो ऐतिहासिक रिसर्च की जिसने हमारी कृषि व्यवस्था को बदल दी। साल 1955 में देश ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। 2 जून 1978 को भले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनका संघर्ष और उनकी सफलता आज भी हर भारतीय को प्रेरित करती है। हम याद कर रहे हैं भारत के एक और महान भौतिकी विज्ञानी डॉक्टर देवेंद्र मोहन बोस को, इनकी भी आज पुण्यतिथि है। डॉक्टर डी एम बोस ने परमाणु भौतिकी और ब्रह्मांडीय किरणों यानी कि कॉस्मिक रेंज के क्षेत्र में वो ऐतिहासिक काम किया जिसने वैश्विक विज्ञान को हिला कर रख दिया। उन्होंने ही भारत में पहली बार क्लाउड चैम्बर तकनीक का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष से आने वाली अदृश्य किरणों की फोटोग्राफी की थी। याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के उस सबसे बड़े जादूगर को जिसे दुनिया द ग्रेट शोमैन के नाम से जानती है।

है हिंदी सिनेमा के युग पुरुष राज कपूर की। नीली आंखें, चेहरे पर मासूम से मुस्कान और चार्ली चैपलिन वाले अंदाज में जब राज कपूर पर्दे पर आते थे तो थिएटर तालियों से गूंज उठता था। आवारा, श्री 420, संगम और बॉबी जैसी फिल्मों से उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि रूस, चीन और मध्य पूर्व के देशों में भी हिंदी सिनेमा का परचम लहराया।

राज कपूर सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता नहीं बल्कि एक विजनकारी निर्देशक और निर्माता भी थे। उन्होंने आरके स्टूडियोज के बैनर तले समाज के हर रंग को पर्दे पर उतारा। सिनेमा के प्रति उनके इसी बेमिसाल जुनून के लिए उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और एडीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। म्यांमा के सदर ऊ मिन आउलाइन ने यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका ने बाहमी तजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है। उत्तराखंड में यूनेस्को के आलमी विरसे के मुकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सैयाहों के लिए खोल दिया गया है। एशियाई गेम्स 2026 से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है और हॉकी 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप में भारत ने कोरिया को 1-4 से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। म्यांमा के सदर ऊ मिन आउलाइन ने वजीर आजम नरेन्द्र मोदी को यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने कल नई दिल्ली में तजारत, दिफा, तवानाई और कनेक्टिविटी के शोबों में बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए वसी तर मौजूदात पर बातचीत की। म्यांमा के सदर भारत के 5 के दौरे पर आए हुए हैं। बातचीत के बाद नामनिगारों को जानकारी देते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने म्यांमा के इकतदार आला और इलाकाई सालमियत के तई भारत की हिमायत का इरादा किया और तफेन ने अपने सिक्योरिटी मफादात के मुनाफी सरगर्मियों के लिए अपने इलाके के बेजा इस्तेमाल की रोकथाम की अहमियत उजागर की। खारजा सेक्रेटरी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने खासतौर पर तजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, तवानाई और मसनू जहानत जैसी अहम टेक्नोलॉजी के शोबों में करीबी इश्तराक कायम करने में दिलचस्पी का इजहार किया। म्यांमा के सदर आला सतह के वफद के हमराह आज मुंबई जा रहे हैं, जहां वो कारोबारी और सनअती रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू करेंगे और मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करेंगे। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका ने बाहमी तजारती समझौते के पहले

0: पहले के बेशतर पहलुओं को हतम शक्ल दे दी है और अब मुज़ाकरात में चंद मामूली उमूर पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। उन्होंने कहा कि अमरीकी टीम दो तरफा तजारती मुआहदे के पहले मरहले को हतमी शक्ल देने के बारे में बातचीत के लिए नई दिल्ली आई हुई है। ये बातचीत नई दिल्ली में आज से जुमेरात तक जारी रहेगी। कांग्रेस के महकमे में एडिशनल सेक्रेटरी दर्पण जैन भारत के आला मुजाकरात कार हैं, जबकि अमरीकी टीम की सरबराही उसके आला मुजाकरात कार ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के आला अहदेदारों और कारकुनान के साथ मीटिंग में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट और तर्जुमान डॉक्टर संबित पात्रा ने नरेंद्र मोदी हुकूमत के गुज़िश्ता 12 साल तंजीमी तौसी और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने से मुतालिक बातचीत के कलीदी निकात को शेयर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने 12 साल मुकम्मल कर रही है और हर किसी ने यह महसूस किया है कि कैसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत में हर शोबा में तरक्की रुनुमा हुई है। जनाब पात्रा ने कहा कि मौजूदा वक्त में बीजेपी और एनडीए को मुल्क की 22 रियासतों में खिदमत अंजाम देने का मौका हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मिसाली क़यादत में गुज़िश्ता 12 साल में भारत में नुमाया तब्दीली रोनुमा हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उसूल इस तब्दीली का मुहर्रिक रहा है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों पर मरकूज मुतअद्दिद पहलों का आगाज और निफाज किया है। आकाशवाणी न्यूज गुज़िश्ता 12 साल में कलीदी शोबों में किए गए हुकूमत के इकदाम पर एक खुसूसी सीरीज पेश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 9 तकर्रुर शुदा 5 जज आज हलफ लेंगे। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत उन्हें ओहदे का हलफ दिलाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत के चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की तकर्री की है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने तलबा के लिए नंबरों की तस्दीक और इम्तिहान के पर्चों की फिर से जांच के लिए पोर्टल शुरू कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर बोर्ड ने यह जानकारी दी है। सीबीएसई ने तलबा को यह सलाह दी है कि वो नंबरों की तस्दीक और इम्तिहान के पर्चों की फिर से जांच के लिए दरख्वास्त देने के तरीकेकार के बारे में हिदायत के ताल्लुक से वीडियो को ध्यान से देखें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उत्तराखंड में यूनेस्को आलमी वर्षे के मुकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सैयाहों के लिए खोल दिया गया है। मस्कूरा मुकाम रियासत के चमोली जिले में है। जंगलात के महकमे ने सैयाहों से अपील की है कि वो वैली के मालामाल हयातियाती तनवो और पौधों की कमयाब अकसाम के तहफ्फुज में ताउन करें। महकमे के मुताबिक वैली ऑफ फ्लावर्स में सरदस्त फूलों की 300 अकसाम और पौधों की मुतअद्दिद कमयाब अकसाम हैं। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर चेतना कंडपाल ने बताया कि वैली 31 अक्टूबर तक सैयाहों के लिए खुली रहेगी। खबरें जिक्र है कि वैली ऑफ फ्लावर्स एक ऐसे खित्ते में वाक़ है जहां मुश्किल जोग्राफियाई हालात हैं। मौसमी हालात और सलामती के मेयारात को मद्देनजर रखते हुए सैयाहों को जरूरी रहनुमा खतूत जारी किए जा रहे हैं ताकि उनके सफर को महफूज और लुत्फानंदोज बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा दरिया पर जेर तामीर पुल का कुछ हिस्सा गिरने के वाकये की तहकीकात के लिए आला सतह की 2 इंक्वायरी कमेटियां तश्कील दी हैं। इस सानहे में 6 अफराद की मौत हो गई थी। हमीरपुर के जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक गोयल ने बताया कि जिला इंतजामिया की जानिब से तश्कील दी गई 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी इस वाकये से वाबस्ता सभी इंतजामी, तकनीकी और तरीकेकार से मुतालिक पहलुओं की तफसीली जांच कर रही है। तृणमूल कांग्रेस ने अपने 2 एमएलए संदीपन साहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी से निकाल दिया है। ये कार्रवाई दोनों रहनुमाओं की जानिब से पार्टी मुखालिफ कार्रवाईयों, तहरीरी मीटिंगों में अदम मौजूदगी और पार्टी क्यादत मुखालिफ बयान की वजह से की गई है। انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے پنجاب میں رام نگر کے مقام پر گیان ساگر تعلیمی اور خیراتی ٹرسٹ کی 14 غیر منقولہ املاک کو عبوری طور پر قرق کر لیا ہے، جن کی مالیت تقریباً 1600 کروڑ روپے ہے۔ کالے دھن کو جائز شکل دینے کی روک تھام سے متعلق ایکٹ کے تحت یہ کارروائی کی گئی ہے۔ مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے بینک فراڈ کیس میں ریلائنس کمیونیکیشنز گروپ کے اعلی ایگزیکٹو امیتاب جھنجھنوالا کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایجنسی نے بتایا ہے کہ وہ ریلائنس کمیونیکیشنز کے گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اور کارپوریٹ فائنانس، بینکاری اور فنڈز کو بروئے کار لانے جیسے اہم کام کاج کی امور کی ذمہ داری سنبھال رہے تھے۔ 2026 کے ایشیائی کھیلوں سے قبل 22 کشتی راں کھلاڑیوں کو ٹارگیٹ اولمپک پوڈیم اسکیم ٹاپس ترکیت گروپ میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ کھلاڑی اب کشتی رانی کے مقابلے والے بڑے بین الاقوامی کھیل مقابلوں کے لیے تیاری کریں گے، جس میں ایشیائی کھیل اور ورلڈ کپ سرکٹ شامل ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ لڑائی روکنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ بات چیت کی اور ثالثوں کے توسط سے لبنان کے ملیٹنٹ گروپ کو اس سے مبتلا کیا۔ ہاکی میں جاپان میں کاکا ویگھارا کے مقام پر 18 سال تک کی عمر کے ایشیا کپ میں پول اے کے اپنے تیسرے میچ میں بھارت نے کوریا کو 1-4 سے ہرا دیا۔ بھارتی ٹیم کے کپتان کیتن کشواہا نے کھیل کے تیسرے اور 36 منٹ میں 2 کیے، وریندر سنگھ نے 5 منٹ میں 1 کیا، جبکہ شاہ رخ علی نے کھیل کے 54 منٹ میں زوردار طریقے سے گول کیا۔ کیرل میں کہیں کہیں موسلادھار بارش کے امکان کے مدنظر 14 ضلعوں میں سے 10 ضلعوں میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اگلے 3 دن میں بارش میں شدت آنے کا امکان ہے۔ خاص خبریں ایک بار پھر، میامہ کے صدر او من آ اولائن نے یقین دلایا ہے کہ میامہ کے علاقے کو بھارت کے سیکورٹی مفادات کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ نے باہمی تجارتی سمجھوتے کے پہلے مرحلے کے بیشتر پہلوؤں کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اتراکھنڈ میں یونیسکو کے عالمی ورثے کے مقام ویلی آف فلاورز کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے اور ہاکی میں 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کے ایشیا کپ میں بھارت نے کوریا کو 1-4 سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز اور AIR اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات۔ پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل۔ مینو پرشوتم کی آواز میں سنیے فراق گورکھپوری اور خواجہ میر درد کا کلام۔

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम का 3 दिवसीय दौरा किया। 26 से 28 मई तक चले इस दौरे के दौरान उन्होंने राज्य में आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामरिक और प्रशासनिक कार्यक्रमों में भाग लिया। राष्ट्रपति मंगलवार को लिविंग आर्मी हेलीपैड पहुंची, जहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग तथा सेना और राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति ने गंगटोक स्थित रिज पार्क के ऑर्किडेरियम का भ्रमण किया। उन्होंने वहां हिमालयी जैव विविधता और विभिन्न प्रजातियों के ऑर्किड संग्रह का अवलोकन किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने देवराली स्थित नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिब्बटोलॉजी का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान की ओर से बौद्ध अध्ययन तथा सिक्किम और हिमालयी क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति नाथुला दर्रे पहुंचे और भारतीय चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों के जवानों से बातचीत की। उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा में उनके योगदान की प्रशंसा की। गंगटोक लौटने के बाद राष्ट्रपति ने महिलाओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए शुरू की गई आमा दीदी बहिनी बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नए संसाधन पुनर्प्राप्ति वाहनों को भी रवाना किया। बाद में राष्ट्रपति ने सिक्किम विश्वविद्यालय के स्थापना दीक्षांत समारोह में भाग लिया। उन्होंने वर्ष 2023, 2024 और 2025 के विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति ने गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पुलिस कलर सम्मान प्रदान किया। यह सम्मान पुलिस बल की वर्ष 1897 से अब तक की उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और समर्पण के लिए दिया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुलिस व्यवस्था को औपनिवेशिक सोच से मुक्त होकर जन केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने पुलिस कर्मियों से नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता और सहयोग की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्था नहीं बल्कि जनता के विश्वसनीयता सहयोगी और मार्गदर्शक भी होनी चाहिए। अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने सिक्किम के विकास, शिक्षा, सुरक्षा और सुशासन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। पूर्वोत्तर डायरी के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।

0: दोस्तों, इस रिपोर्ट के बाद अब हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम की यात्रा पर। हमारे सहयोगी उत्पल ने बीते सप्ताह या हाल ही में इन क्षेत्रों में हुई गतिविधियों को लेकर एक संकलित रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की कीवी के बारे में, मणिपुर की लोकटक झील के कमल के फूल की चाय के बारे में और साथ ही मिजोरम में मत्स्य पालन, डेयरी और पशुपालन के विकास के बारे में। तो आइए ये संकलित रिपोर्ट सुनवाते हैं आपको।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में अरुणाचल कीवी द यूनिवर्सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक एक नई मिशन योजना की शुरुआत की। इस मिशन का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश को भारत में उच्च गुणवत्ता वाली ऑर्गेनिक कीवी का प्रमुख उत्पादक बनाना और इसकी वैश्विक बाजारों में निर्यात क्षमता बढ़ाना है। कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, किसान, उद्यमी और किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस परियोजना का बजट लगभग 167 करोड़ रुपए है। इसका नेतृत्व पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय कर रहा है। इस मिशन को नाबार्ड, एपीडा, ICAR और कई निजी कंपनियों का भी सहयोग प्राप्त है। मिशन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख कीवी उत्पादक क्षेत्र जैसे जीरो वैली, दिरांग, कालाकतांग, शी योमी और दिबांग वैली में 6 विशेष कीवी विकास केंद्र बनाए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों के लिए भंडारण सुविधाएं, कोल्ड चेन नेटवर्क, प्रसंस्करण इकाइयां, ब्रांडिंग और निर्यात व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये मिशन किसानों की उन समस्याओं को दूर करेगा जिनमें कम कीमत मिलना और फलों का जल्दी खराब हो जाना शामिल है। वर्तमान में कई किसानों को खराब भंडारण सुविधाओं के कारण फसल कटाई के केवल 7 से 10 दिनों के भीतर अपनी कीवी बेचनी पड़ती है। नई योजना का लक्ष्य फलों की भंडारण अवधि बढ़ाना और कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना है। मिशन के शुभारंभ के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि किसानों को खेती की पूरी प्रक्रिया का लाभ मिले, यानी खेत से थाली तक, फार्म टू फोर्क। उन्होंने बताया कि ब्रांड नॉर्थ ईस्ट अभियान के तहत पूर्वोत्तर के हर राज्य को उसके एक विशेष उत्पाद के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मिजोरम का अदरक, नागालैंड की कॉफी, मेघालय की याकाडोंग हल्दी और अब अरुणाचल प्रदेश की ऑर्गेनिक कीवी को बढ़ावा दिया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश भारत के कुल कीवी उत्पादन का 50% से अधिक हिस्सा पैदा करता है। इसके बावजूद यहाँ के किसानों को अक्सर बाजार में मिलने वाली आयातित कीवी की तुलना में कम की

होता है। इसलिए दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप जैसे बाजारों में निर्यात के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि कीवी की खेती अरुणाचल प्रदेश के किसानों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन चुकी है। ये पारंपरिक झूम खेती का एक बेहतर विकल्प भी साबित हो रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस मिशन को सफल बनाने के लिए हर संभव सहायता करेगी। सरकार का मानना है कि ये पहल रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करेगी, किसानों की आमदनी बढ़ाएगी और युवाओं को कीवी खेती तथा प्रसंस्करण उद्योग से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस तरह अरुणाचल कीवी मिशन केवल एक कृषि परियोजना नहीं है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने, स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने और पूर्वोत्तर भारत की आर्थिक प्रगति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विशाल शर्मा, पूर्वोत्तर।

अपने गर्व की बात है कि रोहतक झील से बनने वाली विशेष गुलाबी डिब्बे वाली कमल चाय लोटस टी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। ये चाय तब चर्चा में आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन को आधिकारिक मुलाकात के दौरान यह चाय उपहार में दी। ये चाय रोहतक झील के पास चलाए जा रहे सनाजिंग सनातनल पहल के तहत बनाई जाती है। इसे झील में प्राकृतिक रूप से उगने वाले कमल के पौधों से तैयार किया जाता है। यह चाय मणिपुर की संस्कृति, प्रकृति और पारंपरिक ज्ञान का प्रतीक है। साथ ही यह महिलाओं को सशक्तिकरण और पर्यावरण अनुकूल व्यवसाय को भी बढ़ावा देती है। इस पहल का नेतृत्व वनस्पति वैज्ञानिक विजया शांति तोंग ब्राम कर रही है। उनके काम की सराहना पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कर चुके हैं। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के उनके प्रयासों की प्रशंसा की थी। मन की बात के 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने विजया शांति लोंगब्राम से सीधे बातचीत भी की थी। विजया शांति लोंगब्राम भारत की पहली ऐसी महिला मानी जाती हैं जिन्होंने कमल के डंठलों से रेशा बनाना शुरू किया। इस रेशे से वे स्कार्फ, स्टॉल, मफलर और नेकटाई जैसे उत्पाद प्राकृतिक रंगों के साथ तैयार करती हैं। बाद में उन्होंने कमल के औषधीय गुणों के बारे में जानकर कमल की चाय बनानी भी शुरू की। उन्होंने देखा कि कमल के डंठल आमतौर पर बेकार समझकर फेंक दिए जाते हैं। इसी वजह से उन्होंने इनका उपयोग करने के नए और पर्यावरण के कुल तरीके खोजने का फैसला किया। वर्ष 2017 के आसपास उन्होंने कमल से जुड़े उत्पादों पर प्रयोग शुरू किए और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय से उद्यमिता का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। इस परियोजना से जुड़े लोगों का कहना है कि चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि रोहतक झील के आसपास रहने वाले लोगों की संस्कृति, परंपराओं और मेहनत की पहचान है। उन्हें गर्व है कि मणिपुर का यह स्थानीय उत्पाद अब दुनिया भर में पहचान बना रहा है। यह चाय पूरी तरह प्राकृतिक और रसायन मुक्त तरीके से तैयार की जाती है। स्थानीय ग्रामीण और महिला समूह कमल को इकट्ठा करने, सुखाने, प्रसंस्करण और पैकिंग का काम पारंपरिक तरीकों से करते हैं। विजय शांति लोंगब्राम ने वर्ष 2019 में केवल 10 महिलाओं के साथ इस महिला समूह की शुरुआत की। आज यह पहल कई महिला कारीगरों और बुनकरों को रोजगार दे रही है। यह चाय रोहतक झील के पर्यावरण से भी गहराई से जुड़ी हुई है। रोहतक झील अपनी तैरती हुई फुंडी और समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। झील का स्वच्छ वातावरण और प्राकृतिक कमल इस चाय को हल्की फूलों जैसी सुगंध और सुकून देने वाला स्वाद प्रदान करते हैं। लोकतस लोटस टी के निर्माता मानते हैं कि व्यवसाय का विकास प्रकृति और झील की रक्षा के साथ होना चाहिए। वे यह भी चाहते हैं कि इस चाय के माध्यम से दुनिया पूर्वोत्तर भारत की अनोखी संस्कृति और हस्तनिर्मित उत्पादों के बारे में अधिक जाने। रोहतक लोटस झील केवल एक स्वास्थ्य वर्धक पेय नहीं रह गई है, यह मणिपुर और पूरे पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक पहचान बनती जा रही है जो वहाँ के लोगों उनकी

0: पशुपालन और मंत्रालय ने मिजोरम की राजधानी आइजोल में पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने की। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन भी मौजूद रहे। बैठक में पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों के नेताओं और अधिकारियों ने भाग लिया और इस क्षेत्र में मत्स्य डेयरी तथा पशुपालन क्षेत्रों के विकास पर चर्चा की। मंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मत्स्य तथा जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि के तहत लगभग 32 करोड़ 15 लाख रुपए की मत्स्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा भारत सरकार ने मिजोरम में आधुनिक कोल्ड चेन सुविधाओं से युक्त एक अत्याधुनिक मछली विपणन केंद्र स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत वाला ये केंद्र मछलियों के भंडारण, परिवहन और विपणन को बेहतर बनाएगा तथा राज्य में मत्स्य क्षेत्र की पूरी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम में मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए और सफल मत्स्य स्टार्टअप तथा सहकारी समितियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में मत्स्य पालन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, विशेष रूप से ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग में। इससे निर्यात बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए एकीकृत एक्वा पार्क क्लस्टर विकास, बायोफ्लॉक तकनीक और डिजिटल प्रणालियों के उपयोग पर भी बल दिया। बैठक की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहुउद्देश्य डेयरी सहकारी समितियों के विस्तार के लिए गांव के स्तर पर आधारभूत सर्वेक्षण की शुरुआत रही। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य डेयरी सहकारी समितियों को मजबूत बनाना और ग्रामीण डेयरी किसानों की आजीविका में सुधार करना है। सुअर पालन में अच्छी पशुपालन पद्धतियां नामक एक पुस्तिका और अफ्रीकी स्वाइन फीवर जागरूकता फिल्म भी प्रदर्शित की गई। पुस्तिका में वैज्ञानिक तरीके से सुअर पालन, रोगों की रोकथाम और आधुनिक प्रबंधन तकनीकों की जानकारी दी गई है। फिल्म के माध्यम से अफ्रीकी स्वाइन फीवर जैसी बीमारी से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर भारत में डेयरी और पशुपालन क्षेत्र को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्हें अधिक दूध देने वाले पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और सिक्स सॉर्टेड सीमेन तकनीक के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। उन्होंने राज्य से सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, टीकाकरण अभियानों और केंद्र सरकार से मिलने वाले धन का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने का आग्रह किया। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों, बेहतर कोल्ड चेन व्यवस्था और मजबूत बाजार संपर्क की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत में मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों को मजबूत बनाने में महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका की भी सराहना की। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने मुल्को डेयरी का दौरा किया, जहां मिजो कैफे और एफपीओ कार्यालय सह विक्रय केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मुल्को गाय के घी को भी लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान की गई और उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाया कि भारत सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड पूर्वोत्तर क्षेत्र को डेयरी उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की आय तथा जीवन स्तर को सुधारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये पहल पूर्वोत्तर भारत में मत्स्य पालन, डेयरी और पशुपालन क्षेत्रों को नई दिशा देने के साथ साथ किसानों के लिए बेहतर रोजगार और आय के अवसर पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं सरफिरोजी।
1: बीते 50 वर्षों से अरुणाचल प्रदेश की जीवन रेखा रही है अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस, और अरुणाचल प्रदेश के इस परिवहन व्यवस्था को 50 वर्ष पूरे हुए हैं और इस संबंध में अरुणाचल प्रदेश की परिवहन सेवा की उपलब्धि पर

0: हाल ही में गोल्डन जुबली कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम से जुड़ी एक विस्तृत रिपोर्ट हमारे सहयोगी मनोज कुमार शर्मा ने ईटानगर से हमें भेजी है, तो आइए इस रिपोर्ट में आप भी सुनिए कि किस तरह से अरुणाचल प्रदेश में एक सुदृढ़ परिवहन सेवा के रूप में अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस लगातार काम करती रही है।
1: अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज APSTS के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में तिरा जिले के खोनसा में गोल्डन जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय गोल्डन जुबली समारोह एवं लुक इनटू द फ्यूचर विषय पर कार्यशाला का आयोजन 29 से 31 मई 2026 तक किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गोल्डन जुबली मैराथन के आयोजन के साथ हुई। परिवहन राज्य मंत्री अजिंता सिंह ने एडवाइजर परिवहन श्रीमती जागृत आबो, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट GMSTS, DCTF, SPTF, JPCTF तथा विभागीय अधिकारियों के साथ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर परिवहन मंत्री ने राज्य एवं क्षेत्र भर से बड़ी संख्या में लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि ये सहभागिता एकता, सहन शक्ति और सामूहिक उत्सव की भावना को दर्शाती है। उन्होंने सभी वर्गों के विजेताओं को बधाई दी तथा कार्यक्रम को यादगार बनाने वाले सभी प्रतिभागियों के उत्साह और की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने APSTS के 50 वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि पिछले 50 दशकों से APSTS लोगों को जोड़ने, संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने तथा विशेष रूप से दूरदराज क्षेत्रों में राज्य के विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने भी APSTS को गोल्डन जुबली के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि पिछले 50 वर्षों से APSTS अरुणाचल प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में कार्य कर रहा है, जिसने दूरदराज क्षेत्रों को जोड़ने, समुदायों को करीब लाने तथा राज्य के विकास और प्रगति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये उपलब्धि उन सभी ड्राइवरों, कंडक्टरों, मैकेनिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के अथक प्रयासों को समर्पित है, जिन्होंने दशकों से APSTS की गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाया है। उप मुख्यमंत्री ने आने वाले वर्षों में सुरक्षित, आधुनिक और जन केंद्रित परिवहन सेवाओं की दिशा में APSTS की निरंतर सफलता की कामना की। तैयारी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।
0: एक मजबूत और सशक्त लोकतंत्र में जब सुरक्षा बल और नागरिक समाज एक साझेदारी और सहयोग के साथ काम करते हैं तो हम एक सुदृढ़ सुरक्षा को देख पाते हैं। इसी संबंध में हाल ही में अगरतला में एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिक समाज और सुरक्षा बलों के बीच साझेदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो आइए हमारे सहयोगी सुमन भट्टाचार्य की एक रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने इस संगोष्ठी के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की है।

ऑपरेशन सिंधु की सफलता ने एक बार फिर भारत की बढ़ती सैनिक क्षमता और रणनीतिक तैयारी को साबित किया है। हाल ही में अगरतला में आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नायडू ने कहा कि रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में आज दुनिया के कोई देश भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। सिविल मिलिट्री फ्यूजन शीर्षक से आयोजित इस संगोष्ठी का उद्देश्य नागरिक समाज और सशस्त्र बलों के बीच समन्वय का विश्लेषण करना था। इसका आयोजन राज्य की राजधानी स्थित सर्किट हाउस के निकट अल्फा ऑडिटोरियम में 21 सेक्टर असम राइफल्स द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस प्रशासन और नागरिक समाज के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में उभरती राष्ट्रीय और जन संबंधी चुनौतियों से निपटने में सशस्त्र बलों और नागरिक प्रशासन की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में सुरक्षा एजेंसियों और नागरिकों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

संगोष्ठी में त्रिपुरा के गृह सचिव अभिषेक सिंह, पुलिस महानिदेशक अनुराग, भारतीय सेना के 73 माउंटेन बटालियन के वरिष्ठ अधिकारी ब्रिगेडियर धीरज कुमार सिंह, असम राइफल्स के कमांडर ब्रिगेडियर निशांत चंदेल तथा त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक अलोक कुमार चक्रवर्ती ने राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, साइबर खतरों, आपदा प्रबंधन तथा नागरिक समाज और सुरक्षा बलों के बीच समन्वय जैसे विषयों पर अपने विचार रखे। त्रिपुरा में बीएसएफ के महानिदेशक अलोक कुमार चक्रवर्ती ने पड़ोसी देशों के साथ बदलते संबंधों के संदर्भ में सीमा प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले गांव के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कौशल विकास और जनसंपर्क कार्यक्रम को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। पुलिस महानिदेशक अनुराग ने पहचान आधारित राजनीति, सीमा पर मानव तस्करी और डिजिटल खतरों जैसी उभरती चुनौतियों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि त्रिपुरा में वर्तमान में देश में दूसरा सबसे कम अपराध दर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक तरीकों और आधुनिक निगरानी प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है। ब्रिगेडियर धीरज कुमार सिंह ने राष्ट्र निर्माण, सीमावर्ती क्षेत्र के विकास और आपदा प्रबंधन के पूर्व सैनिकों तथा युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा सैन्य नागरिक समन्वय का एक आदर्श मॉडल बन सकता है, जहां नागरिकों और सुरक्षा बलों के बीच सहयोग, विकास और सुरक्षा दोनों को मजबूत करेगा। संगोष्ठी के दौरान वक्ताओं ने अपने क्षेत्रीय अनुभव भी साझा किए। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता, साइबर अपराधों को रोकथाम और नागरिक तथा सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के उपाय पर चर्चा की। संगोष्ठी का समापन राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा क्षेत्रों की स्थिरता और त्रिपुरा के समावेशी विकास के लिए नागरिक समाज और सुरक्षा बलों के बीच और अधिक मजबूत सहयोग के सामूहिक आह्वान के साथ हुआ। पूर्वोत्तर डायरी के लिए शुभम भट्टाचार्य, आकाशवाणी, अगरतला।

उम्मीद है आज का अंक आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक लगातार पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094।

सप्ताह हम आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे पूर्वोत्तर डायरी के इस कार्यक्रम के माध्यम से, पूर्वोत्तर राज्यों की गतिविधियों से आपको अवगत करवाते रहेंगे। आप भी अपने सुझाव और प्रतिक्रियाओं के साथ हमसे जुड़े रहिए और अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 5:30 बजे रविवार को। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: आलेख और संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम पूर्वोत्तर डायरी। मेगा वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर हमारी नशरियात का सिलसिला जारी है। और अब वक्त हो गया है फिल्मी नगमों के प्रोग्राम का, जिसका नाम है मेरी पसंद। और आज का मेरी पसंद प्रोग्राम हम लेकर हाजिर हैं आप सबकी खिदमत में। और आज का ये प्रोग्राम डेडिकेट करेंगे हम एक अजीम शख्सियत के नाम।

तो जनाब आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया की एक ऐसी शख्सियत की जिसने न सिर्फ अपने दौर में सिनेमा को नई बुलंदियों तक पहुंचाया बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी एक लाजवाल मीरास छोड़ी और ये शख्सियत थी राज कपूर साहब की जिन्हें अक्सर द ग्रेट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। राज कपूर 14 दिसंबर सन 1924 को पेशावर में पैदा हुए थे। उनके वालिद पृथ्वी राज कपूर हिंदुस्तानी थिएटर और फिल्मी दुनिया के मारूफ अदाकार थे। फन और अदाकारी का माहौल राज कपूर को बचपन से ही मैसर आया जिसने उनकी शख्सियत और उनके मुस्तकबिल के ऊपर गहरा असर छोड़ा था। अपने फिल्मी सफर का आगाज अगर सामीन बात की जाए तो उन्होंने बहुत कम उम्र में कर दिया था। इब्तदा में मुख्तलिफ फिल्मों में मुआविन किरदार और तकनीकी काम सीखने के बाद उन्होंने 24 साल की उम्र में ही अपना फिल्मी इदारा आरके फिल्म्स कायम किया था। यह उस जमाने में बड़ी गैर मामूली सी बात थी क्योंकि इतनी कम उम्र में किसी फिल्म साज का अपना स्टूडियोज मतलब अपना स्टूडियो खड़ा करना बनाना आसान बात नहीं थी। सन 1948 का दौर तारीख की आंखों ने देखा सामीन। इस साल फिल्म आई थी आग और ये उनकी पहली हिदायतकारी थी, पहली एक्टिंग भी थी। अगरचे फिल्म महदूद कामयाबी ही हासिल कर पाई थी लेकिन इसने राज कपूर की तख्लीकी सलाहियतों को दुनिया के सामने मुतारिफ कराया और उसके बाद उन्होंने एक ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई एक के बाद एक जिन्होंने तारीख रकम कर दी थी।

उसके बाद 1951 में आने वाली फिल्म आवारा ने उन्हें आलमी शोहरत दिलाई। इस फिल्म की कहानी, मौसिकी और जज्बाती अंदाज ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कई ममालिक में समीन नाजरीन के दिल जीत लिए, खासतौर पर सोवियत यूनियन, चीन यानी कि उस वक्त का सोवियत यूनियन, आज का रशिया जिसे हम जानते हैं, चाइना और मशरक वस्ता में राज कपूर बेहद मकबूल हुए। आवारा हूँ ये जो टाइटल ट्रैक था इस फिल्म का, जिसका लिटिल बिट मैं आपको यहाँ पर सुनवा देती हूँ, ये बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था और ये अक्सर लोग गुनगुनाते हुए दिखाई दिया करते थे।

0: जानी रुकना मौत की निशानी सर पे लाल टोपी
1: भी दिल है हिंदुस्तानी। राज कपूर साहब को खराज अकीदत पेश कर रही है आकाशवाणी की उर्दू सर्विस। दोस्तों, राज कपूर सिर्फ एक अदाकार नहीं थे बल्कि एक विजन रखने वाले फिल्म साज भी थे। उनकी फिल्मों में मोहब्बत, गरीबी, समाजी जो सोशल इश्यूज हैं उन पर बात होती थी, जो डिफरेंसेस हैं, जो स्टेटस के डिफरेंसेज हैं, तबकाती फर्क, इंसानी जज्बात जैसे मौजूद पर उनकी फिल्में मबनी हुआ करती थी। यानी वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक सोशल मैसेज भी दिया करते थे, जिसकी वजह से उनकी फिल्में जो है वो अवाम और नाकदीन यानी जो क्रिटिक थे फिल्मों के उनको भी पसंद आती थी, और जो हम जैसे यानी कि आपके और हमारे जैसे आम लोग थे फिल्मों के शायकीन उनको भी बहुत पसंद आती थी।

0: रुक जा रुक जा ओ जाने वाली रुक जा।
1: जहाँ जाइएगा आप भी कहीं नहीं, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम के वेरी नेक्स्ट यानी 11:30 पर हम गर्दिश में था आसमान का तारा उन्वान के तहत राज कपूर साहब पर एक फीचर भी नशर करेंगे और आपकी मालूमात में इजाफा होगा, कई खूबसूरत नगमे भी उसमें इंक्लूड किए गए हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे राज कपूर साहब के फिल्मी सफर के हवाले से। 1960 और 70 की दहाई की अगर बात करें तो यहां पर जो उनका फन है वो अपने उरूज पर नजर आता है, और क्यों ना हो, क्योंकि काफी तजर्बा भी वो इन दिनों में हासिल कर चुके थे, तो जो फनी बारीकियां थी उस पर उनकी पकड़ भी मजबूत हो गई थी। तो इस बार उन्होंने इस दौरान यानी 60 से 70 की दहाई में राज कपूर ने बड़ी यादगार फिल्में बनाई, जिनमें अगर खास फिल्मों का जिक्र करें संगम, मेरा नाम जोकर और बॉबी वगैरह शामिल है। ये कह सकते हैं सामीन कि मेरा नाम जोकर जब रिलीज हुई थी तो उस वक्त उसको उतनी ज्यादा कामयाबी नहीं मिली थी, हालांकि ये एक कमर्शियल फिल्म थी तो कमर्शियली अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा ये सक्सेसफुल नहीं हुई थी फिल्म, लेकिन बाद में इसे हिंदुस्तानी सिनेमा के शाहकारों में शुमार किया जाने लगा मेरा नाम जोकर को। और दूसरी जानब जब बॉबी फिल्म आई तो इसने तो तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। नौजवान मोहब्बत की कहानी को नए अंदाज में पर्दाए सीमी पर उतारा था राज कपूर साहब ने, और नई नस्ल के अदाकारों को भी मुतारिफ किया गया था। ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया ने डेब्यू किया था और ये फिल्म बहुत ही ज्यादा कामयाब रही थी।

राज कपूर साहब की फिल्मों की एक खास बात उनकी फिल्मों की मौसीकी भी थी, क्योंकि वो फिल्म के हर एक पहलू पर नजर रखते थे कि कहीं कहीं कोई भी कमी ना रह जाए। इसीलिए उनकी फिल्मों के जो नगमे हैं आज भी सुनने वालों के दिलों में जिंदा है। मौसीकारों, शायरों और गुलकारों के साथ उनकी जो मीटिंग्स रहती थी तो उसकी बदौलत ही हम कह सकते हैं नो डाउट कि हिन्दुस्तानी फिल्मी मौसीकी को बेशुमार लाजवाल नगमे मिले हैं। ये नगमा हमने आपको सुनाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी में था, लेकिन ज्यादातर जो राज कपूर साहब का काम नजर आता है तो शंकर जयकिशन उनके सबसे पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर्स में थे। अपनी जिंदगी में राज कपूर ने बेशुमार एजाजात हासिल किए। वो हिंदुस्तानी सिनेमा में गैर मामूली खदमात के एतराफ में हिंदुस्तानी सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के भी अता किया गया, जो सबसे बड़ा एजाज इस फील्ड में समझा जाता है। 2 जून 1988 को राज कपूर साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, लेकिन उनका जो फन है आज भी जिंदा है।

बेशक राज कपूर आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, फिल्मों के कैरेक्टर्स और फिल्मों के जरिए भेजे गए जो सोशल मैसेजेस थे वो आज भी इसी तरह से हैं जैसे उनके जमाने में थे। आज भी हम लोगों के लिए मिशले राह हैं उनकी फिल्मों के सोशल पैगाम। वो सिर्फ एक अदाकार या हिदायतकार नहीं थे सामईन, बल्कि एक ऐसे फनकार थे जिन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा को एक नई जबान और नई पहचान दी थी, और शायद इसीलिए हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख में हमेशा उनका जो नाम है वो हम सुनहरी यूरोप में लिखा जाएगा। उन्होंने अपने फन से, मेहनत से और तख्लीकी सलाहियतों से साबित किया कि अजीम फनकार वक्त की कैद से आजाद होते हैं। जब भी उनकी फिल्मों का जिक्र होता है तो एक पूरा अहद गोया हमारी आंखों के सामने फिर जाता है, आ जाता है, गुजर जाता है। और बहुत ही सिंपलिसिटी जो उन्होंने अपनी अदाकारी के जरिए हम

जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मेरी पसंद। आज के प्रोग्राम में सामेईन हमने याद किया फिल्म साज, हिदायतकार और अदाकार राज कपूर साहब को। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। अब पेश है जनाब मलिक अश्तर का तहरीर करदा फीचर, गर्दिश में था आसमान का तारा। ये फीचर फिल्मसाज हिदायतकार राज कपूर साहब के यौमे वफात की मुनासबत से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है।

अगर आप भारतीय सिनेमा को एक तनावर दरख्त मान लें, उसकी आबियारी करने वालों में जो अफराद सबसे ज्यादा सरगर्म नजर आएंगे, उनमें एक अहम नाम कपूर खानदान का भी है। आज इस खानदान की चौथी पुश्त भारतीय सिनेमा के उफक पर आबिंदा है और इसी कहकशा के अवलीन सितारे थे पृथ्वीराज कपूर और उनके साहबजादे राज कपूर।

उन्होंने कई फिल्मों में शानदार अदाकारी की। खासतौर पर मुगले आजम में उन्होंने अकबर आजम का जो किरदार अदा किया उसके बारे में तो कहने वालों ने यहाँ तक कहा कि खुद अकबर भी उस फिल्म में काम करते तो शायद इतनी खूबी से ये किरदार अदा न कर पाते। राज कपूर ने सिनेमा की दुनिया में जो अनमिट नकोश छोड़ने शुरू किए थे उस फनी रवायत को उनके बेटे राज कपूर ने बुलंदियों तक पहुंचा दिया। और आज बिना मुबालगा ये बात कही जा सकती है कि हिंदी फिल्मों की कोई तारीख राज कपूर के तस्करे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती है।

नसीब का बेदार जो हम बचपन के साथी आदियों में चली जीवन बाती भूख में है बड़े प्यार से पाला।

राज कपूर की शख्सियत के कई पहलू हैं। अदाकार राज कपूर, हिदायतकार राज कपूर, फिल्मसाज राज कपूर, यारों का यार राज कपूर और मुन कचरुल मिजाज राज कपूर। अपने दौर में न जाने कितने नौजवानों की उम्मीदों का मरकज राज कपूर।

और सबसे बढ़कर एक खूबसूरत इंसान राज कपूर। हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम किस राज कपूर को याद करें और उसकी किस किस खूबी को समेटें। वो राज कपूर जिसने अपने वालिद की तरह थिएटर में काम किया, जिसे मामूली मुलाजिम के तौर पर स्टूडियो में काम मिला और बाद में भारत में सिनेमा का आला तरीन एजाज जिसके हिस्से में आया, या फिर उस राज कपूर का जिक्र हो जिसकी अदाकारी मुस्कुराहटों के साथ जहन में न जाने कितने सवालात को

जैसा कि होता आया है, राज कपूर को कामयाबी रकाबे में सच कर नहीं मिली। उन्होंने एक एक ईंट से कामयाबी की इमारत खड़ी की और उस बुलंद इमारत को बनाने में न जाने कितनी भी मुश्किलात के सूरज और नाकामियों की तमाजत उन्हें झुलसाती रही, मगर वो डटे रहे। राज कपूर की जिंदगी में कामयाबियों और नाकामियों का ये छुपन छुपाई का खेल आखिर तक चलता रहा। सही है कि उन्हें मायूसियों ने भी घेरा, मखूस भी हुए, मगर जिहाद जिंदगानी में मर्दों की तकदीरें हमेशा काम आई और वो अपना नाम बिना शुबा

इस साल मुल्क आजाद हुआ, उसी साल उनकी फिल्म आई नीलकमल। इस फिल्म की हीरोइन थी मधुबाला। केदार शर्मा ने राज कपूर को इस फिल्म में हीरो का रोल दिया। फिल्म आई और ये पैगाम देकर चली गई कि 23 बरस के इस नौजवान में अदाकारी की गैर मामूली सलाहियतें मौजूद हैं।

1947 में राज कपूर ने गजानन जागीरदार की फिल्म जेल यात्रा में भी अदाकारी की। उसके अलावा इसी साल उनको मोहन सिन्हा की दो फिल्मों में अदाकारी का मौका मिला। ये फिल्में थी दिल की रानी और चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ विजय में मधुबाला ने भी बतौर हीरोइन काम किया था। 1948 में महेश कौल की फिल्म गोपीनाथ में राज कपूर ने अदाकारी की। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी तृप्ति मित्रा। फिल्म महज 1.25 घंटे से कुछ ज्यादा की थी, लेकिन उसके गीत काफी मकबूल हुए।

तो ये भी सकता था कि राज कपूर अदाकारी में ही किस्मत आजमाते रहते जैसा कि उन्हें काम मिल रहा था तो आमदनी भी होती रहती, लेकिन उन्होंने उसी रोजशब में उलझने को मुनासिब नहीं समझा और सन 48 में बतौर फिल्मसाज आग बनाकर उस दौर के सबसे कम उम्र फिल्मसाज होने का एजाज हासिल कर लिया। इस फिल्म की हीरोइन थी नरगिस। से राज कपूर की जिंदगी का एक तारीखी मोड़ थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आग नहीं लगा सकी, लेकिन इसके जरिए फिल्म के हिदायतकार और अदाकार के दिल में छुपी ये आग जरूर जाहिर हो गई कि उसे रिवायात को तोड़ना है और एक नया अंदाज अख्तियार करना है। जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसा दौर जब चमकीले चेहरे ही हीरो के तौर पर दिखते हों। उस दौर में फिल्म में अदाकार का जला हुआ चेहरा दिखाना अगर खतरे से खेलना नहीं था तो और क्या था। फिल्म नहीं चली, अलबत्ता उसकी मौसीकी काफी मकबूल हुई।

आम पर आई। राज कपूर और दिलीप कुमार ने एक ही फिल्म में एक साथ काम किया। सन 1949 में आई फिल्म अंदाज में इस फिल्म में नरगिस हीरोइन थी और ये फिल्म महबूब खान ने बनाई थी और इस फिल्म की मौसीकी काफी मशहूर हुई।

से ही नरगिस के साथ राज कपूर की जोड़ी कभी मतलब पर्दे पे आई और फिर एक मुद्दत तक आती ही चली गई। ऐसा नहीं है कि राज कपूर ने दीगर अदाकारों के साथ काम नहीं किया, लेकिन उनको असल मकबूलियत नरगिस के साथ मिली। सन 1948 में ही मधुबाला और राज कपूर की अदाकारी में बनी फिल्म अमर प्रेम

स्ट्रॉन्ग फिल्म साज राज कपूर को जिस कामयाबी की तलाश थी वो उन्हें आग नहीं बल्कि बरसात से मिली। इस फिल्म ने राज कपूर को बतौर हिदायतकार और बतौर अदाकार एक ऐसा मकाम दिलवाया जिसे बहुत कम लोग पा सके हैं। फिल्म ने नरगिस के साथ साथ उनकी जोड़ी में मजीद कशिश पैदा की और ये जोड़ी अपने दौर की मकबूल आम जोड़ी बन गई। इस फिल्म में मौसीकार

नरगिस बरसात में ऐसी फिल्म थी कि उनका चर्चा चरासू हुआ। उधर शंकर जयकिशन, बरसात के नगमा निगार हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, ये सब राज कपूर की फिल्म साजी के सफर में अहम रफीक बन गए। बरसात की कहानी, अदाकारी, नगमे, मौसीकी, गरज ये कि हर चीज की तारीफ हुई, हर बात सराही गई। राज कपूर फिल्म साजों की फहरिस्त में अचानक सारे फहरिस्त अफराद में गिने जाने लगे।

1950 में राज कपूर की जो फिल्में आई उसमें सिर्फ उन्होंने बतौर अदाकार काम किया था, जिनमें जी राकेश की भौरा, प्यार कारदार की दास्तान, अली मिस्त्री की जान पहचान और बीएन व्यास की प्यार शामिल है। राज कपूर को सबसे पहले बतौर हीरो मौका देने वाले केदार शर्मा ने इस साल उन्हें अपनी फिल्म बावड़े नैन में भी लिया। इसी साल राज कपूर की अदाकारी में बनी एक फिल्म ने जबरदस्त कमाई की और वो फिल्म थी प्यारे लाल।

0: तरह कहा जाता है कि कुरुसावा को उनकी फिल्म रश्मन ने कुरुसावा बनाया। अब्बास किया रुस्तमी को उनकी फिल्म हमें दोस्त कुदास ने अब्बास किया रुस्तमी बनाया। इस तरह राज कपूर के राज कपूर बनने का साल सन 1951 था। इस साल उनकी सिर्फ एक फिल्म आई जो बिना शुबा उनकी अब तक की तमाम फिल्मों पर भारी थी और ये फिल्म थी आवारा।
1: मैं तो बहुत काबिल नहीं। तुम जानबूझकर उसे अपना हाथ काट दिया। मैं भी जानती थी तुम अपना हिम्मत कर दूसरे।

0: 的地方，那是第一个黑暗。安静，不行，我们登上宝塔证明不一定。我的一个上司死者，就把王府打中了印度的炸弹。
1: 我一个，我们是第一个人，我的第一个人。
2: आवारा दुनिया की दिल चुनी बेहतरीन फिल्मों में शामिल की जाती है। इस फिल्म की शोहरत ने नए नए रिकॉर्ड बनाए। इस फिल्म में बतौर अदाकारा नरगिस ने काम किया और राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी इस फिल्म के बाद शोहरत के आसमान पर जा पहुंची। फिल्म में शंकर जयकिशन, हसरत, शैलेंद्र सबके सब राज कपूर के साथ काम करने वालों में शामिल थे, जिसका नतीजा उन लाजवाब नहों की शक्ल में निकल कर सामने आया जो आज तक हमारे कानों में रस घोल रहे हैं।

बदला जा चुका है। समाज की तल्ख सच्चाइयों और जिंदगी की कड़वाहटों को जिस करीने से इस फिल्म ने पर्दे पर उतारा है, उसकी मिसाल भारतीय सिनेमा में इससे पहले तो क्या, उसके बाद भी कमी नजर आती है। इस फिल्म में हीरो महज एक शख्स नहीं बल्कि समाज के एक बहुत बड़े तबके का नुमाइंदा नजर आता है, जो फिल्मी पर्दे के जरिए दुनिया को झंझोड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में राज कपूर के वालिद पृथ्वी राज कपूर ने तो काम किया ही, उनके वालिद यानी राज कपूर के दादा दीवान बशीरनाथ कपूर ने भी काम किया था।

गर्दिश में था आसमान का तारा। ये फीचर अभी आपने सुना, फिल्मसाज, हिदायतकार और अदाकार राज कपूर साहब की यौमे वफात पर आकाशवाणी की उर्दू सर्विस ने ये फीचर नशर किया। ये था हमारा उनके नाम खराज अकीदत। तहरीर जनाब मलिक अश्तर की थी, सदाकार थे जहीर जैदी और अली मोहतशिम रजा, और इस प्रोग्राम की तरतीब और पेशकश अली मोहतशिम रजा की थी। इस फीचर का दूसरा और आखिरी हिस्सा समय आज दिन में 3:30 पर नशर किया जाएगा, तो सुनना ना भूलिएगा। गर्दिश में था आसमान का तारा फीचर का दूसरा और आखिरी हिस्सा दिन में 3:30 पर। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।

खलिया फिल्म का दो गाना आपने सुना, मुकेश और लता मंगेशकर का गाया हुआ। प्रोग्राम की अगली पेशकश संगम फिल्म से है।

गांगी अगली पेश कर शाप सबकी नजर है लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। फिल्म का नाम है परवरिश।

0: मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में ये नगमा था नजराना फिल्म से। हमारे आज के प्रोग्राम की अगली पेशकश शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाजों में है। फिल्म का नाम है बॉबी।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

अभी को जा। हम तुम एक कमरे में

आओ कभी किसको खबर है, थोड़ा सा मेरे दिल

0: आप सुन रहे हैं फिल्मी दो गाने, प्रोग्राम है मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये प्रोग्राम अभी जारी है, वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है तहबाग तहरीक।
1: नाइंसाफी के खिलाफ जद्दोजहद और इस्लाही व फलाही तहरीकों के सरसरी जायजे से मालूम होता है कि उनके बानी मुबानी और करता धरता आम हालात में दरमियाना या आला तबकों से मुतालिक साहिब हैसियत व साहिब इख्तदार लोग ही रहे हैं। ऐसी मिसालें निस्बतन चंद ही मिलती हैं कि जब खुद जुल्म के शिकार महरूम और पसमांदा तबकों ने किसी तहरीक को जन्म देकर उसकी नौयत और मिसाल मुतायन की हो और रहनुमाई भी की हो। ये दलील बिलखसूस औरतों को मसावी हकूक के लिए जद्दोजहद की कहानी से भी उभरती है। मसावी हकूक के हुसूल के लिए जद्दोजहद की दागबेल डालने और फिर उसे तहरीक की शक्ल देने में अहम रोल खुद मर्दों ने अदा किया है। हालांकि इस तहरीक का निशाना मर्द ही थे, दूसरे वो ख्वातीन पेश रहीं जो खुद महरूमी और जुल्म से बराह रास्त दो चार नहीं हुई। वो महज मुशाहदे और जायजे की बुनियाद पर मुतासिर होकर इस जंग में कूद गईं। इस पस मंजर में बंगाल की तहबाग तहरीक और अदीमुल मिसाल जद्दोजहद महसूस

0: तहवाग तहरीक 1946 में जमींदारों के खिलाफ किसान औरतों की जद्दोजहद की शक्ल में शुरू हुई। इस तहरीक के दौरान औरतों ने नहायत इनकलाबी रोल अदा किया। वो पुलिस और जमींदारों से नबुद आजमा हुई। बहुत सी जगहों पर उन्होंने अपना लाए अमल खूब मरतब किया, तंजीमें बनाई, अपने मकासद को शोहरत दी, औरतों के हिफाजती दस्ते कायम किए, तहरीक की रूह रवां, रहनुमा और कारकुन की हैसियत से इन तबाह हाल पसमांदा कुचली हुई अंगूठा टेक औरतों ने अपनी फसलों, घरों और इज्जत की हिफाजत की, मर्दों को खून खराबे से बाज रखा और इस तरह बेपनाह तंजीमी शऊर और मुत्तहिदा मज़ाहमत का बेमिसाल मज़ाहरा किया, रहनुमाओं और हमनवाओं को ताज्जुब खेज बना दिया। तहबाग तहरीक ने देहाती औरतों और बीवियों में अजीम ख्वातीन पैदा की, साथ ही साथ बहसियत मजमू एक नई बेदारी, एक नया शूर फूका। अंजामकार जिम्मेदारी के खिलाफ शुरू हुई किसान औरतों की ये तहरीक औरतों के मसावी हकूक के लिए जद्दोजहद की शक्ल इख्तियार कर गई। इस सिलसिले में औरतों ने अपने और अपने बच्चों के लिए हकूक तलब किए। एक सियासी कारकुन की बीवी ने पार्टी से सवाल किया कि बीवी को जिस्मानी अजियत पहुंचाने का हक शौहर को क्यों कर हासिल है। एक नाखानदा औरत ने सवाल किया कि शौहर क्यों कर बीवी की पैदा करदा दौलत को गसब करता है। दूसरी खवातीन ने कृषक समिति के दफ्तर पर धावा बोलकर समिति को मर्दों की इजारादारी खत्म करके खवातीन को भी रुकनियत देने पर मजबूर किया। औरतों ने ये सभी मुतालबे तस्लीम कराए। उनका अगला मुतालबा काफी अहम था और वो ये कि आम वालदेन के बच्चों की तालीम के लिए वही इंतजाम किया जाए जो कि दौलतमंद वालदेन की औलादों को दस्तियाब थे। मकामी महिला आत्मरक्षा समिति के अराकीन की ये मांग देहातों में बढ़ती हुई बेदारी का नतीजा थी और आखिर में औरतों ने जायदाद में मर्दों के मसावी हक की पुरजोर मांग की। ये तहरीक दरअसल औरतों की पैदा करदा तहरीक थी। इस तहरीक के तरीक़ाकार में जिद्दत तराजी की झलक तो मिलती ही है। औरतों की रहनुमाई और देही ख़वातीन की मौसर शिरकत इसका तुर्रे इम्तियाज है। कभी कभी तहरीक में तशद्दुद की झलक भी मिलती है, मगर मुश्तइल होने के बावजूद ये मुनज़्ज़म और मुत्तहिद रहीं। आखिर में ये कहा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय ने निशातुस्सानिया की क्षमा रोशन की तो औरतों की नजात का अजीम सिलसिला शुरू हुआ, मगर ये सिलसिला शहरों तक महदूद रहा। तहबाग तहरीक ने पहली बार देही बंगाल की पसमांदा, नाखांदा और महरूम औरतों को बेदार किया। महरूम तरीन तबका इस बेदारी में महात्मा गांधी के तसव्वुर का आम इंसान फिक्र व अमल की मुफलिसी से आजाद होता हुआ नजर आता है।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज। आज का मौजू था तहबाग तहरीक और रावी थे अकबाल वारसी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम के तहत अब सुनते हैं अगली पेशकश प्रेम रोग फिल्म से सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाजों में।

हर काम की साथ।

Yeah.

0: लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के गाए हुए इस दो गाने के साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप अब्दुल मालिक से आलमी खबरें सुनिए। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउ लाइन ने यकीन दिलाया है कि म्यांमार के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। कॉमर्स और सनातों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका ने बाहमी तजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जनूबी अफ्रीका के नायब सदर के साथ तिजारत सरमायाकारी और स्ट्रेटेजिक ताउन के बारे में तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्लाह लड़ाई रोकने पर रजामंद हो गए हैं। और हॉकी में जापान में जारी 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप में भारत ने कोरिया को 1-4 से हरा दिया है। अब खबरें तफसील से। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउ लाइन ने वजीर आजम नरेन्द्र मोदी को यकीन दिलाया है कि म्यांमार के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने कल नई दिल्ली में तिजारत दिफा तवानाई और कनेक्टिविटी के शोबों में बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए वसी तर मौजूदात पर बातचीत की। म्यांमार के सदर भारत के 5 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। बातचीत के बाद नामा निगारों को जानकारी देते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने म्यांमार के इकतदार आला और इलाकाई सालमियत के तई भारत की हिमायत का अदा किया और तरफेन ने अपने सिक्योरिटी मफादात के मुनाफी सरगर्मियों के लिए अपने इलाके के बेजा इस्तेमाल की रोकथाम की अहमियत उजागर की। खारजा सेक्रेटरी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने खासतौर पर तिजारत सरमायाकारी सेहत तालीम तवानाई और मसनूई जहानत एआई जैसी अहम टेक्नोलॉजी के शोबों में करीबी इश्तराक कायम करने में दिलचस्पी का इजहार किया। म्यांमार के सदर आला सतह के वफद के हमरा आज मुंबई जा रहे हैं जहां वो कारोबारी और सनअती रहनुमाओं के साथ गुफ्तगु करेंगे और मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेंगे। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जनूबी अफ्रीका के नायब सदर पॉल मेशेटाइल से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉ जयशंकर ने कहा कि इस मीटिंग के दौरान उन्होंने तिजारत सरमायाकारी एमएसएमईज डिजिटल और बुनियादी ढांचे के शोबों में मौके के बारे में तबादला ख्याल किया। डॉ जयशंकर ने दोनों मुल्कों के दरमियान तवील मुद्दती साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने से मुतालिक जनाब पॉल मेशेटाइल के आजम की सदाइश की। उन्होंने कहा कि दोनों लीडरों ने इस बात से भी इत्तेफाक किया कि भारत और जनूबी अफ्रीका को बैन अल-अक़वामी सतहों पर मिलकर काम करना चाहिए। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका ने बाहमी तजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है और अब मुज़ाकरात में चंद मामूली उमूर पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। उन्होंने कहा कि अमरीकी टीम दो तरफा तिजारती मुआहदे के पहले मरहले को हतमी शक्ल देने के बारे में बातचीत के लिए नई दिल्ली आई हुई है। ये बातचीत नई दिल्ली में आज से जुमेरात तक जारी रहेगी। कॉमर्स के महकमे में एडिशनल सेक्रेटरी दर्पण जैन भारत के आला मुजाकरात का है जबकि अमरीकी टीम की सरबराही उसके आला मुजाकरातकार ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। भारत में 2025-26 के दौरान 19 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा मालियत की बैरी गजाई अशिया की बरामदात दर्ज की गई। बैरी अशिया की बरामदात के फरोख से मुतालिक तंजीम के चेयरपर्सन पी जवार ने बताया कि मस्कूरा बरामदात मकदार और मालियत दोनों एतबार से अब तक की सबसे ऊंची सतह पर हैं और ऐसा आलमी बाजारों में चैलेंजिंग हालात के बावजूद हुआ है। उन्होंने बताया कि इस दौरानिये में अमरीका और चीन भारतीय बहरी गजाई अशिया के सबसे बड़े दरामद कुनिंदा बने हैं। बरामद होने वाली अशिया में सबसे ज्यादा हिस्सा फ्रोजिन झींगा का रहा जिसकी मालियत 49,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रही। इसके बाद फ्रोजिन मछली 5,658 करोड़ रुपए मालियत के साथ दूसरे नंबर पर रही।

भारत बुध और जमेरात को उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में दूसरे ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग की मेजबानी करेगा। महकमे सकाफत के सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया। इस दो रोजा मीटिंग से ब्रिक्स 2026 के लिए भारत के खास मौजू के साथ मुताबिकत रखते हुए सकाफती इश्तराक के बारे में मुनज्जम कसी रुखी मुजाकरात में सहूलत होगी। भारत का ब्रिक्स 2026 का मौजू है मजबूती इख्तरा इश्तराक और पायदार निजाम के लिए तामीर। उमूर दाखिला की वजारत ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक तरमीमी जाब्तों मजरिया 2026 को नोटिफाई कर दिया है। इसके तहत रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से वक्त की हद में अहम तब्दीलियां की गई हैं। साथ ही इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक 2025 के जाब्तों के तहत अपील दायर करने के तरीकेकार में तब्दीली की गई है। मस्कूरा तरमीम की रूह से भारत पहुंचने के 180 दिन की मुद्दत खत्म होने से पहले किसी भी वक्त रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करना होगा। अभी तक 180 दिन की मुद्दत खत्म होने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन का अमल पूरा करना होता था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्लाह लड़ाई रोकने पर रजामंद हो गए हैं। इससे कबल उन्होंने इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत की और साजिशों के तवसुत से लबनान के मिलिटेंट ग्रुप को इससे मुतला किया। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर गुफ्तगू के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी दी। अमरीकी सदर ने कहा कि अब कोई भी फौजी बेरूत नहीं जाएगा और जो फौजी वहां रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। सदर ट्रंप ने बताया कि हिजबुल्ला ग्रुप ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि सभी तरह की गोलीबारी बंद हो जाएगी। इसराइल उस पर हमला नहीं करेगा और वो भी इसराइल पर कोई वार नहीं करेंगे। ईरान के सिपाही पासदारान इंकलाब इस्लामी IRGC ने दावा किया है कि उसने पनामा के परचमबरदार कंटेनर जहाज MSC सरिस्का को एक क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया है। ईरान ने कहा कि यह कार्रवाई ओमान के करीब ईरानी जहाज पर होने वाले हमले के जवाब में की गई है। यह दावा उस वाकये के बाद सामने आया है जिसमें कल खलीज अरब में इराक की उम्म कसर बंदरगाह से तकरीबन 40 बहरी मील जुनूब मशरक में एक माल बरदार जहाज धमाके की जद में आ गया था। जहाज के हमले के तमाम अरकान महफूज हैं और जहाज का सफर जारी है। इस वाकये के नतीजे में किसी माहौलियाती नुकसान की इतला नहीं है। पेंटागन में मीडिया के रसाई को महदूद करने के इकदाम के सिलसिले के तहत एक और कदम उठाते हुए अमरीकी महकमा दिफा ने पेंटागन के प्रेस दफ्तर को एक मखसूस मकाम करार दिया है और वहां सहाफियों के दाखिल होने पर रोक लगा दी है। अमरीकी महकमा दिफा के कायम मकाम प्रेस सेक्रेटरी जोल वल्देस ने कहा है कि यह इकदाम मुतनाजिया नहीं है बल्कि हसास और अहम जानकारी के तहफ्फुज के लिए ऐसा करना जरूरी हो गया है। ट्रंप इंतजामिया और मीडिया के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में यह फैसला सामने आया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दलील पेश करते हुए अदालत में बंदिशों को चैलेंज किया है कि इससे अव्वल तरमीम के तहफात की खिलाफ वर्जी होती है और साथ ही इससे फौजी उमूर पर आजादाना रिपोर्टिंग में रूकावट पड़ेगी। अमरीका के वफाकी तफ्तीशकारों ने मेक्सिको से लेकर जनूबी कैलिफोर्निया तक बनाई गई जदीद तर्ज की एक सेरे जमीन टनल यानी सुरंग का पता लगाया है और एक टन से ज्यादा कोकेन जब्त की है जिसकी मालियत तकरीबन 4.5 करोड़ डॉलर है। चार महीने की छानबीन के बाद चार अफराद पर इल्जाम आयद किए गए हैं जिससे स्मगलिंग के एक रास्ते का पर्दाफाश हुआ है जो मेक्सिको में तिजुआना से लेकर कैलिफोर्निया में ओटे मेसा पोर्ट ऑफ एंट्री के नजदीक एक गोदाम तक फैला हुआ था जो एक रिटेल स्टोर के तौर पर काम कर रहा था। बांग्लादेश ने गुज़िश्ता 6 हफ्तों में दूसरी बार ईंधन की कीमतों में इजाफा किया है। यह इजाफा मगरबी एशिया में जारी जंग से मुतासर मुल्क के खजाने पर दबाव को कम करने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम का एक हिस्सा है। तवानाई की वजारत ने एक बयान में बताया कि केरोसिन की कीमत 130 टका फी लीटर से बढ़ाकर 135 टका या 1.4 अमरीकी डॉलर कर दी गई है जबकि पेट्रोल की कीमत 135 टका से बढ़ाकर 140 टका फी डॉलर कर दी गई है। हालांकि डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है और ये 115 टका फी डॉलर पर बरकरार है। हॉकी में

0: राजस्थान में काका मेघारा के मकाम पर 18 साल तक की उम्र के एशिया कप में पूल ए के अपने तीसरे मैच में भारत ने कोरिया को एक मुकाबले 4 गोल से हरा दिया। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। म्यांमार के सदर ओ मिन आउ लाइन ने यकीन दिलाया है कि म्यांमार के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। वजीर खारजा एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जनूबी अफ्रीका के नायब सदर के साथ तिजारत, सरमायाकारी और स्ट्रेटेजिक ताउन के बारे में तबादला ख्याल किया। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका ने बाहमी तिजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्लाह लड़ाई रोकने पर रजामंद हो गए हैं। इसके साथ ही आलमी खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस।

मिनिमम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात आप सुन रहे हैं। अब पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। म्यांमार के सदर ऊ मिन आउलाइन ने यकीन दिलाया है कि म्यांमार के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका ने बाहमी तिजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जनूबी अफ्रीका के नायब सदर के साथ तिजारत, सरमायाकारी और स्ट्रेटेजिक तआवुन के बारे में तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला लड़ाई रोकने पर रजामंद हो गए हैं।

और हॉकी में 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप में भारत ने कोरिया को 1-4 से हरा दिया है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। यह आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दिन के 1:15 होने जा रहे हैं। पहली मजलिस की नशरियात अब खत्म होती है। दिन में 3 उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

लेकिन ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बहुत आसानी से मिल जाते हैं संदेशों के जरिए। जी हाँ, प्रोग्राम कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर आपके संदेश हमें एहसास दिला देते हैं कि आप हमारे करीब हैं। फिलहाल ढेर सारे संदेश पहुँच रहे हैं सही जवाब के साथ, और आपने पहचान ही लिया है कि आज हम आपके लिए लेकर आए 1973 की एक सुपरहिट फिल्म नमक हराम। ये फिल्म आनंद के बाद ऋषिकेश मुखर्जी की दूसरी फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने अभिनय किया था। दिए जलते हैं, अभी आपने जो गीत सुना, नदिया की से दरिया और मैं शायर बदनाम, ये सबसे यादगार गीत है जिन्हें किशोर दा ने दमदार तरीके से गाया था। और ये फिल्माए गए थे राजेश खन्ना साहब पर, जिन्होंने अपने भावपूर्ण अभिनय और चेहरे के भाव से लाखों लोगों का दिल जीत लिया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और 1973 की पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। और इस फिल्म को तमिल में उना कांगा नाम से रिमेक किया गया था। ये 1970 के दशक की शुरुआत में बॉम्बे की जो कपड़ा मिल थी उसमें मुद्रास्फीति की पृष्ठभूमि में श्रमिक जो संघ थे उनके उदय पर ये फिल्म केंद्रित थी। फिल्म में राजेश खन्ना, रेखा, सिमी ग्रेवाल, अमिताभ बच्चन, इनके अलावा नजर आए थे असरानी, रजा मुराद, ए के हंगल, ओम शुक्री। हमने आपको बताया कि संगीत आर डी बर्मन साहब का था, पटकथा गुलजार साहब की लिखी हुई थी और गीत लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना को 1974 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था और 1974 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का उन्होंने अपना दूसरा फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। राजेश खन्ना जो इस फिल्म में सोमनाथ चंद्र सिंह यानी कि सोमू के किरदार में नजर आए थे, बिक्की महाराज यानी कि बिक्की कौन हो सकते हैं, अमिताभ बच्चन, जी हाँ उन्होंने इस किरदार को निभाया था। रेखा श्यामा के किरदार में थी, सिमी ग्रेवाल मनीषा के किरदार में दिखाई दी थी, ए के हंगल बिपिन लाल पांडे के किरदार में दिखे थे, श्यामा के भाई धोनू के रूप में असरानी थे, मनमोहन ने जयसिंह के का किरदार प्ले किया था, दामोदर महाराज के रूप में ओम शुप्री थे, रजा मुराद आलम बने थे और जय शेट्टी की भी एक बेहतरीन भूमिका थी इस फिल्म में। तो चलिए इतनी सारी बात हमने कर ली और आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत आप तक पहुंचा रही हूं।

1973 की सर्दियों में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म नमक हराम रिलीज हुई और ये उनके अब तक की सभी फिल्मों से बिल्कुल अलग थी। अपने दिल को छू लेने वाली कॉमेडी और सौम्य पारिवारिक ड्रामा फिल्मों के लिए मशहूर इस फिल्म में राजनीति, सत्ता और वर्ग संघर्ष जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था, लेकिन राजेश खन्ना अभिनीत ये फिल्म उससे कहीं बढ़कर साबित हुई बॉलीवुड में आए बदलाव का एक प्रतीक के रूप में। आज इसे हम दो दिग्गजों की टकराव के रूप में भी याद कर सकते हैं, जिसमें उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना का सामना हुआ था उभरते सितारे अमिताभ बच्चन के साथ। जहां नमक हराम 1964 की हॉलीवुड क्लासिक बेकिट की कहानी पर आधारित है, जिसका मूल विचार था पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का जो टकराव और ये संघर्ष किस प्रकार एक मित्रता, नैतिकता और मानवीय संबंधों को नष्ट करता है, ये सब बेकिट में दिखाया गया था। बेकिट में रिचर्ड बर्टन और पीटर ओटूल जैसे कलाकार थे, वहीं ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी खुद की दिग्गज जोड़ी राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को कास्ट किया, जो आनंद फिल्म के बाद एक बार फिर साथ में नजर आए थे। इस फिल्म की कहानी दो दोस्तों की थी, सोमू यानी कि अमिताभ बच्चन और विक्रम यानी कि राजेश खन्ना। विक्रम एक अमीर उद्योगपति का बेटा है, जबकि सोमू उनका घनिष्ठ मित्र।

ये कहानी होनी थी, लेकिन बाद में इस कहानी में हेर फेर किया गया था और ऋषिकेश चाहते थे कि जो आनंद फिल्म में उन्होंने किया था इन दोनों कैरेक्टर के साथ में, तो यहाँ पर उनके उनका जो व्यक्तित्व था वो थोड़ा सा अलग दिखाया जाए। तो 1970 के दशक में जब मिल मालिकों और मजदूर संघों के बीच जो संघर्ष था उसकी पृष्ठभूमि पर इस फिल्म को बनाया गया, और ये फिल्म दो घनिष्ठ मित्रों की कहानी को भी बयां करती थी जो संघर्ष में एक दूसरे के विपरीत पक्षों में आ जाते हैं। राजेश खन्ना ने, हमने आपको बताया, सोमू का किरदार निभाया था जो एक गरीब विनम्र और आदर्शवादी व्यक्ति है, जबकि अमिताभ बच्चन ने बिक्की का किरदार निभाया था जो एक मिल मालिक का रंगीन मिजाज बारिश है। मजदूरों के साथ झड़प में बिक्की के अहंकार को ठेस पहुंचती है। सोमू बदला लेने के लिए मिल के मजदूरों के रूप में उनके साथ काम करने लगता है, लेकिन जब वो मजदूरों के बीच रहकर देखता है तो उसकी जो सहानुभूति होती है वो बदल जाती है। प्रबंधक यानी कि मैनेजमेंट का चमचा करार दिए जाने पर सोमू की हत्या कर दी जाती है, और एक चौंकाने वाले मोड़ में बिक्की दोष अपने ऊपर ले लेता है और जेल चला जाता है। ये थी फिल्म की कहानी, लेकिन इसका जो क्लाइमेक्स था, इसका जो अंत था, वो थोड़ा सा विवाद का विषय बन गया था। कैसे बना था वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपको हम बता दें कि ये जो फिल्म थी, ये फिल्म एक कहा जाता है कि इसकी जो क्लाइमेक्स थी, उसकी शूटिंग के समय जब सेट जो था वो बहुत भावुक हो गया था, फिल्म का अंत इतना असरदार बनाया था कि जो यूनिट के सदस्य थे वो भी कुछ देर तक चुप खड़े रहे थे। तो यही तो कमाल था नमक हराम का, एक ऐसी फिल्म जिसने सिर्फ पर्दे पर कहानी नहीं दिखाई थी बल्कि दिलों में दोस्ती और इंसानियत की भी गहरी छाप छोड़ी थी। आपने भी अगर इस फिल्म को देखा होगा तो आपने अंदाज लगाया होगा कि इस फिल्म में वो जादू था जिसकी कल्पना शायद उस वक्त नहीं की जा सकती थी, और ऋषिकेश दा ने वो करके दिखा दिया था। आपको सुनवाते हैं एक और किशोर दा की आवाज में इस फिल्म का गीत, और आपके ढेर सारे संदेश भी हमारे पास पहुंच रहे हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे, और साथ ही इसका क्लाइमेक्स में किस तरीके से बदलाव किया गया वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल सुनिए इस गीत को।

जी हाँ दोस्तों, नमक हराम का जो क्लाइमेक्स था वो इसका विवाद का एक केंद्र बिंदु बन गया था। हुआ ये था कि अमिताभ बच्चन ने 1972 में ही अपने सोलो सीन पूरे कर लिए थे, जबकि राजेश

खन्ना कई फिल्मों में व्यस्त थे, इसलिए 1973 तक सब कुछ बदल चुका था। जंजीर के गुस्से वाले नौजवान की छवि को उजागर कर दिया था अमिताभ जी ने और वो अब एक उभरते सितारे थे। अब वे अपने मुख्य दृश्यों की शूटिंग जब वो साथ में कर रहे थे तो टकराव का जो केंद्र बिंदु था वो था इस फिल्म का क्लाइमेक्स। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि नमक हराम की पूरी शूटिंग के दौरान दोनों अभिनेताओं को क्लाइमेक्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि इस क्लाइमेक्स के साथ उन्हें डर था कि कोई ना कोई विवाद ना हो जाए, और ऐसे ही हुआ था। फिल्म के मूल क्लाइमेक्स के अनुसार बैकिच की जो कहानी थी, जो इसका ओरिजिनल फिल्म थी, उससे हटकर अमिताभ के किरदार की मृत्यु होनी थी। जब राजेश खन्ना साहब को इस बारे में पता चला तो वे खुश नहीं हुए। राजेश खन्ना को मरने वाले किरदारों से खास लगाव था, ये बात सभी जानते थे। उनका मानना था कि उनकी सबसे यादगार फिल्में वो थी जिनमें उन्होंने पर्दे पर अपनी मृत्यु का दृश्य प्रस्तुत किया था। नमक हराम में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मृत्यु का जो दृश्य है वो उन्हीं पर होना चाहिए। राजेश खन्ना साहब अड़ गए। ऋषिकेश से उन्होंने कहा कि बड़े स्टार होने के नाते तो जो मृत्यु वाला दृश्य है वो उन्हें मिलना चाहिए। अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने बहुत सारी उनसे बातें कही ऋषिकेश से, और साथ ही साथ अपनी तस्वीर पर फूलों की माला भी चढ़ा दी ताकि जो भव्य फिल्मी मृत्यु है उसकी मांग पूरी हो सके। ये ऋषिकेश मुखर्जी के लिए एक अंतिम संकेत भी था कि अगर आपने मुझे नहीं मारा तो शायद फिल्म में मैं अपने आप को रोक भी सकता हूँ। खैर, उनकी बात मानी गई और राजेश खन्ना साहब को मृत्यु वाला दृश्य जो था वो मिल गया। नमक हराम फिल्म में गुलजार साहब ने बताया था कि इसका क्लाइमेक्स बदलना पड़ा क्योंकि ऋषिकेश जो साहब थे उन्होंने राजेश खन्ना की मृत्यु वाली बात को मान लिया था उनकी जीत के बाद। अमिताभ बच्चन लेकिन इस फैसले से नाराज थे। राजेश खन्ना के कहने पर स्क्रिप्ट में बदलाव तो किया गया लेकिन शूटिंग के दिन ये बात अमिताभ बच्चन जी से छुपा ली गई थी और इस बात का उनको दुख हुआ कि मुझे धोखा दिया गया है। और इसी बात पर कई दिनों तक, शायद इस फिल्म के बाद इन दोनों ही एक्टर ने साथ में कभी काम नहीं किया और साथ उनकी बात भी नहीं हुई। तो ये थी इस फिल्म का क्लाइमेक्स जो हम आपको बताना चाह रहे थे। और अब हमारे पास ढेर सारे आपके संदेश भी आ रहे हैं, लेकिन हमने आपको नई शायर बदनाम इस गीत को थोड़ा सा रोक दिया था, तो आपकी इच्छा, आपकी बहुत सारे संदेश आ रहे हैं इस गीत को सुनने के लिए, एक बार फिर से थोड़ा सा सुनवाती हूँ, फिर आपके संदेश शामिल करूंगी।

कौन गुजरात से जी, तो भाप सर प्रमीला परवीन सुल्ताना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमेशा कहते थे सरे तरह इन्होंने ढेर सारी जानकारी हम तक पहुंचाई है। नीतीश कुमार तनुजा, ईशांत लखन जी पहाड़ा पलारी छत्तीसगढ़ से हमें सुन रहे हैं। ये संदेश है सुरेश यादव अनीता पैठन से हमें भेज रहे हैं। सुदर्शन मुखी अनिता मुखी सिमरन जी शांति नगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल मोहन उषा मोहन चिलू नायक मधु नायक जी पहाड़गढ़ मुल्तानी ढांडा से हमारे साथ हैं और डीवी राणा नेहरू बिहार दिल्ली से हमारे साथ हैं। सुनील पाठक जी हमें सुन रहे हैं और इन्होंने हमें ये संदेश कहाँ से पहुंचाया है ये थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा क्योंकि काफी लंबा है। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से इनके साथ कमल और गाव्या मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन और शालीमार बाग दिल्ली से अशोक कुमार सहगल जी हमें सुन रहे हैं। शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता जी हैं। ग्राम पंचायत कालीगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव प्रशांत संचित प्रथमेश प्रणाली जी और ढेर सारे इनके दोस्त हैं। गांव नथा

ना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर सीता गीता हमारे साथ हैं, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम, संगीन नवापारा से मुकेश, श्रद्धा अदिति, राधे दीपक गुप्ता हैं, बुकिंग खेड़ा पंजाब से मिंटी टॉमस, पिंकी लवली आरती हैं, हीरा मणि वर्मा दतरेंगी भाटापारा से जुड़े हुए हैं, भूषण खेड़ा जी हमारे साथ, विष्णु खेड़ा विशाल जी के साथ फालसिका पंजाब से जुड़े हुए हैं, राज रेडियो ग्रुप राजकोट से जैमिन कुमार जैन, हैतल और राकेश जैन है, जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा जी हमारे साथ हैं, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत राजदीप लोहरगढ़ ठाकुरवाला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से अनिल मोहन, उषा मोहन, चिल्लू नायक जी, मधु नायक जी के साथ हमारे साथ हैं, बलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस मानकर, निर्मला विशाल सोपान, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार इंगले हमारे साथ हैं, और ये सहारनपुर से सैयद मसरून, शाइना हसन, नाजिया जी का हमारे पास संदेश पहुंचा है, मामूलीबाड़ी महाराष्ट्र से सुपान ताइडे, वसंतराव, बीएस नौनकर, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता जी का एक और संदेश है, प्रकाश वर्मा निखिल प्रिंस छत्तीसगढ़ पलारी से है, और नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज हिमांशु है, मोहम्मद सईद अब्बासी निगत, परवीन शेनवाज, सरफराज, परदीन सोहान, अरजान अवान परिवार के सभी सदस्य, ऊपर कोच मोहला चौखंडी बुलंदशहर से हमें सुन रहे हैं, मेरठ से दिग्दर्शन और कविता जी हैं, संजय डिंगे, नमन डिंगे, अपार जी बागपत उत्तर प्रदेश से हैं, सीपीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हैं, और राजू मिगलानी जी, बबीता मिगलानी, दुर्गा कॉलोनी हांसी से हमें सुन रहे हैं, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुगेरी से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, असफाक अफरीन जी हमारे साथ हैं, देव नारायण साहू, योगिता गीतिका, चंचल रानी, उमाबाई हमें भोई नापार लाटापोर जिला बालोद छत्तीसगढ़ से सुन रहे हैं, संदीप मक्कर जी हैं, चिरमिया कुरासिया, कार्डी सिंद्रवान, अनुभव ऋषभ सिंह जी हमें सुन रहे हैं, और उसके बाद बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या हेमलता, डिंपल देवांगन है, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी जी हमें सुन रहे हैं, तो आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सफर में, हमारे हम सफर बनने के लिए, कुछ दो संदेश और उनको भी हम शामिल कर लेते हैं, हमारे साथ ये जुड़े हैं पंकज शर्मा जी, प्रतिभा शर्मा जगमोहन जी के साथ में, ये मॉडल टाउन करनाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगला संदेश अनिल मोहन जी का एक बार फिर आया है, तो आप सभी का हम दिल से शुक्रिया करते हैं, हमारे साथ इस सफर में आप हमारे हम सफर बने हैं, और आज की ये फिल्म उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर पसंद आई होगी, दोस्तों जब इम्तिहान दोस्ती जब इम्तिहान से गुजरती है तो रिश्तों की असली कीमत सामने आती है, नमक हराम सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि दोस्ती, इंसानियत और सामाजिक न्याय की एक भावनात्मक दास्तान है, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की अदाकारी ने इसे हिंदी सिनेमा की अमर कृति बना दिया था, उम्मीद करते हैं कि आपने इस फिल्म को जरूर देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा तो हमेशा की तरह कहेंगे कि वक्त निकाल कर जरूर देखिए, फिलहाल अपने दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए, परसों यानी कि 4 तारीख को फिर एक नई फिल्म के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को ही कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षा शक्तिकरण का एक मजबूत साधन है क्योंकि व्यक्ति आत्मनिर्भर जागरूक के समर्थ बनाता है। गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन के विदेशियों बारे शोध नियम 2026 नोटिफाई कर दिया है जिस तहत विदेशियों बारे नियमों के महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

0: आप खबरों विस्तार में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सिक्ख्या सशक्तिकरण का एक मजबूत साधन है क्योंकि यह व्यक्तियों को आत्मनिर्भर जागरूकता समर्थ बनाती है। आज नवी दिल्ली में स्कॉलरशिप स्कीम के आदिवासी लाभार्थियों को संबोधन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सच्चा विकास तब ही हासिल किया जा सकता है जब समाज के सारे वर्ग सामाजिक आर्थिक प्रगति और तरक्की कर लें। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कॉलरशिप स्कीम ने उच्च शिक्षा के नवे मौकों तक पहुंच कर आदिवासियों के जीवन में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार आदिवासी विद्यार्थियों को अगर बढ़ाने के लिए यत्नशील है।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है जिनमें प्रतिभा तो होती नहीं है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने रोकता है। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आप जैसे अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त
0: की। राष्ट्रपति ने भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है तो इस संबोधन खोलने सही मंच प्रदान किया जाने की लोड़ है। गृह मंत्रालय ने इमीग्रेशन के विदेशियों बारे शोध नियम 2020 नोटिफाई कर दिया है। इस वक्त इमीग्रेशन के विदेशियों बारे नियम 2025 तक रजिस्ट्रेशन की समय सीमा अपील विधि महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस शोध तहत भारत में पहुंचने

नई दिल्ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माचापेलो ने मुलाकात की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार निवेश छोटे के दरमियान उद्यमा डिजिटल के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र के मौकों पर चर्चा की है। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी भाईवाली मजबूत करने के लिए माचापेलो की सहायता की थी। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस गल से सहमत हुए कि भारत के दक्षिण अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मंचों के तौर से काम करना चाहता है। सेहत मंत्रालय ने कहा कि देश के कारण तक इबोला वायरस का कोई केस सामने नहीं आया। मंत्रालय ने सलाह दी है कि अजय व्यक्ति जो पिछले 21 दिन इबोला प्रभावित देशों से यात्रा करके आए हैं तो बुखार सिरदर्द मांसपेशियों के दर्द दस्त या

कोर्ट ऑर्डिनेंस 2026 जारी करने तो कोई हफ्ते बाद आया है। इस तहत सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत जजों की मौजूदगी गिनती 34 से 35 हो गई है। ये 15 तो सुन रहे हो।

उत्तर प्रदेश के दहशतगर्दी विरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद पट्टी नाल संबंधों के खतरे च आतंकवाद तों एक नौजवान मुहम्मद शेख नूं गिरफ्तार किया है। एटीएस अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के कई दहशतगर्द चढ़े भारत तक दहशत फैलाने लई शहजाद पट्टी के नेटवर्क की वरतों कर रहे हैं।

Reliance Communications Group के साथ प्रमोशन डॉक्टर अमिताभ झुंझुनवाला ने सीबीआई ने पूर्ण पेज बैंक पैसा धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने मुंबई के आर्थर रोड जेल ले जाया गया।

वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के अमृतसर कर व्यापार समझौते के पहले गेड़ में ज्यादातर बिल्डिंग से सहमति बन गई है। समझौते में हम अंतिम रूप दिता जा रहा है। अमरीकी टीम चार जून तक गलबात दिल्ली में है। भारत वालों वाणिज्य विभाग में एडिशनल सचिव डॉक्टर जैन मुख्य वार्ताकार हैं, जबकि तो अमरीकी टीम की अगुवाई ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों धिरों ने 3 फरवरी समझौते से पहले प्रभावी रूपरेखा का ऐलान किया। पहली विश्व योगासन के

क्या कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक मजबूत साधन है क्योंकि इसे व्यक्ति में आत्मनिर्भर जागरूक के समर्थ बनाती है। गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन के विदेश में भरे 100 नियम 2016 में नोटिफाई किए थे जिस तहत विदेश में भरे नियमों के महत्वपूर्ण बदलाव को कहते हैं। भारत में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के 5 नियम डब्बे में फौजदार समर्थ पाई है। सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं से गलतियों की तस्दीक और पुनर्मूल्यांकन एक पोर्टल शुरू कर सकता है। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। सभी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्कॉलरशिप स्कीमों के कबायली मुस्तफेदीन से खिताब किया। उन्होंने सही मानों में तरक्की के लिए समाज के सभी तबकों की समाजी, इक्तसादी और तालीमी तरक्की पर जोर दिया। हुकूमत ने इमिग्रेशन और गैर मुल्कियों से मुतालिक 2026 के तरमीमी जाब्तों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन जाब्तों के तहत रजिस्ट्रेशन के औकात और अपील से मुतालिक निजाम में अहम तब्दीलियां की गई है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जजों को ओहदे का हलफ दिलाया है। जवाबी पर्चों से मुतालिक इतराजात की तस्दीक और इनकी दोबारा जांच से मुतालिक CBSE के पोर्टल पर 6 जून तक का कामकाज जारी रहेगा। राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, ओडिशा और साहिली आंध्र प्रदेश में आज गरज चमक के साथ छींटा पड़ने के बारे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और खवातीन क्रिकेट में भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैन अलावा मैच आज रात टोरंटो में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तालीम बाइख्तियार बनाने का एक ताकतवर वसीला है, क्योंकि ये लोगों को खुद कफील, बाशऊर और बासलाहियत बनाती है। आज नई दिल्ली में स्कॉलरशिप के कबायली मुस्तफेदीन से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि हकीकी तरक्की तभी हो सकती है जब माशरे के सभी तबके समाजी, इक्तसादी और तालीमी एतबार से तरक्की करें। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि सरकारी स्कॉलरशिप स्कीमों की वजह से कबायली अफराद की जिंदगी में तब्दीली आई है, क्योंकि उन्हें आला तालीम और नए मौके हासिल हुए हैं। सदर जमहूरिया ने जोर देकर कहा कि भारत में सलाहियत की कोई कमी नहीं है और उन्होंने इसकी शनाख्त करके इसे परवान चढ़ाने के लिए सही प्लेटफॉर्म फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने रोकता है। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न
0: क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है। नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने आज तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर रियासत के आवाम को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि तेलंगाना अपनी सकाफती विरासत से मालामाल है और वहां के आवाम बहुत मेहनती है। उन्होंने कहा कि रियासत ने गुजश्ता सालों के दौरान बहुत तरक्की की है और जल्द तराजी के शोबे में भी जबरदस्त पेशरफ्त की है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने कहा कि तेलंगाना सकाफती विरासत और दरख्शां रिवायतों से मालामाल है और उसने मुल्क की तरक्की में गर्व कदर तआवुन किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के तरक्याती सफर में मुकम्मल तआवुन फराहम करने से मुतालिक मरकजी हुकूमत के अहद की तौसीख की है, ताकि एक तरक्की याफ्ता भारत के ख्वाब को हकीकत की शक्ल दी जा सके। उन्होंने तेलंगाना के आवाम की अच्छी सेहत, खुशहाली और कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने दाखिला की वजारत ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक तरमीमी जाब्तों नजरिया 2026 को नोटिफाई कर दिया है। इसके तहत रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से वक्त की हद में अहम तब्दीलियां की गई हैं। साथ ही इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक 2025 के जाब्तों के तहत अपील दायर करने के तरीकेकार में तब्दीली की गई है। मजकूरा तरमीम की रूह से भारत पहुंचने के 180 दिन की मुद्दत खत्म होने से पहले किसी भी वक्त रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करना होगा। अभी तक 180 दिन की मुद्दत खत्म होने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन का अमल पूरा करना होता था। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आज सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जजेस को ओहदे का हलफ दिलाया है। जस्टिस शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा, अरुण पल्ली और सीनियर वकील वी मोहना ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर हलफ लिया। मरकज ने कल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर उनके तकरीर की इजाजत दे दी थी। ये तकरीर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 नाफिज किए जाने के चंद हफ्ते बाद किया गया है। इस ऑर्डिनेंस के तहत

सुप्रीम कोर्ट में जजों की मंजूर शुदा तादाद को 34 से बढ़ाकर 38 कर दिया गया है, जिसमें भारत के चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सरकारी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE के पोर्टल पर आज से कामकाज शुरू हो गया है, जो 6 जून तक जारी रहेगा। यह पोर्टल फराहम की गई जवाबी पर्चों की स्कैन्ड कॉपी में किसी तरह के एतराजात की तस्दीक और इनकी दोबारा जांच से मुतालिक है। CBSE ने कहा कि यह सहूलत महज उन तलबा के लिए दस्तयाब है जिन्होंने अपने जांच किए हुए जवाबी पर्चों की स्कैन्ड कॉपी हासिल कर ली है। बोर्ड ने यह भी कहा कि हिफाजती वजूहात से आधार के जरिए तस्दीक भी की जाएगी। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है वो अपने वालिदैन, रिश्तेदारों या सरपरस्तों की आधार तफसीलात फराहम कर सकते हैं। CBSE ने तलबा को मशवरा दिया है कि वो इस सिलसिले में वीडियो भी देख सकते हैं कि नंबरों की तस्दीक और दोबारा जांच के लिए किस तरह दरख्वास्त दी जाए। इंसानी हकूक के कौमी कमीशन ने मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस रियासत के सिद्धि जिले में एक साल के अंदर अंदर 53 ऐसी माओं की अमवात की खबर पर जारी किया गया है जो जजनी से पहले या बाद में फौत हो गई। कमीशन ने मीडिया की एक रिपोर्ट पर अजखुद कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 हफ्ते के अंदर अंदर तफसीलात तलब की है। कमीशन ने कहा कि अगर खबर का यह मवाद सच पर मबनी है तो इससे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का एक तश्वीशनाक मामला सामने आता है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में अब तक इबोला वायरस बीमारी के किसी भी मामले की कोई खबर नहीं मिली है। वजारत ने मशवरा दिया है कि अगर किसी शख्स ने गुज़श्ता 21 दिन में इबोला से मुतासिरा मुल्क का सफर किया है और उसमें बुखार, सरदर्द, बदन दर्द, दस्त वगैरह जैसी अलामत पाई जाती है तो वो खुद को अलग थलग कर ले और इसकी इत्तला मकामी सेहत हुक्काम को दे। वजारत ने शहरियों से यह भी कहा है कि वो जानकारी, रहनुमाई और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। वजीर हाजिर डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जनूबी अफ्रीका के नायब सदर पॉल मेशटाइन से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस मीटिंग के दौरान उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी, MSMEs, डिजिटल और बुनियादी ढांचों के शोबों में मौकों के बारे में तबादला ख्याल किया। डॉक्टर शंकर ने दोनों मुल्कों के दरमियान तवील मुद्दती साझेदारी को मजीद मुस्तहकम करने से मुतालिक जनाब पॉल मेशटाइन के अजम की सताइश की। उन्होंने कहा कि दोनों लीडरों ने इस बात से भी इत्तेफाक किया कि भारत और जनूबी अफ्रीका को बैन अलाकवामी सतहों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने बीमारियों पर काबू पाने और उनकी रोकथाम के अफ्रीकी मरकजों को तिब्बी इमदाद की दूसरी खेप रवाना की है ताकि अफ्रीका में हिफ्जान सेहत में मदद दी जा सके और इबोला की रोकथाम की कोशिशों को मुस्तहकम बनाया जा सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा कि यह खेप हिफाजती मास्क, तशखीस और करीबी नजर रखने से मुतालिक आलात, दवाओं और तजियाती मतबादल पर मुश्तमिल है। म्यांमार के सदर वू मिन ऑग लैंग भारत के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर आज मुंबई पहुंचे। महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने छत्रपति शिवाजी महाराज बैन अलाकवामी हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। प्रोटोकॉल शोबे के वजीर जय कुमार रावल भी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। खवातीन क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैन अलाकवामी मैच आज रात इंग्लैंड में टॉन्टन के मकान पर खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। सीरीज 1-1 से बराबर है। भारत ने पहला मैच चेम्सफोर्ड में 38 रन से जबकि इंग्लैंड ने दूसरा मैच ब्रिस्टल में 26 रन से जीता था। हॉकी में जापान में काकामेगाहारा के मकान पर 18 साल तक की उम्र के एशिया कप में पूल ए के अपने तीसरे मैच में भारत ने कोरिया को 1-4 से हरा दिया। भारतीय टीम के कप्तान केतन कुशवाहा ने खेल के 33rd और 36th मिनट में 2 किए। और आखिर में खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। सभी जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्कॉलरशिप स्कीमों के कबायली मुस्तफेदीन से खिताब किया। उन्होंने सही मानों में तरक्की के लिए समाज के सभी तबकों की समाजी, इकतसादी और तालीमी तरक्की पर जोर दिया। हुकूमत ने इमिग्रेशन और गैर मुल्कियों से मुतालिक 2026 के तरमीमी जाब्तों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन जाब्तों के तहत रजिस्ट्रेशन के औकात और अपील से मुतालिक निजाम में अहम तब्दीलियां की गई है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जजों को अहदे का हलफ दिलाया है। जवाबी पर्चों से मुतालिक एतराजात की तस्दीक और इनकी दोबारा जांच से मुतालिक CBSE के पोर्टल पर 6 जून तक कामकाज जारी रहेगा। राजस्थान, गुजरात और मगरबी मध्य प्रदेश में माफ कीजिए और

0: international between India and hosts England to be played in Taunton tonight. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरे सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
2: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
1: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण, समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब

0: समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब एक ही दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र सीडीसी को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। यह पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सीबीएसई ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रूपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रूपये का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जांच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम

0: इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ यह कार्रवाई की है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देशभर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरू मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केन्द्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक की उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आवृजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 2:30:20 हो रहे हैं। और दोस्तों, अब समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार का, और आज इस कार्यक्रम को लेकर आज आपके सफर के साथी हूं मैं, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त मनीषा बोस। तो स्वीकारें मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के बहुमुखी प्रतिभा के धनी और उत्कृष्ट संगीत का जादू बिखेरने वाले, अभिनय का जादू बिखेरने वाले भारतीय सिनेमा के चार्ली चैपलिन कहे जाने वाले उस अभिनेता को, जिनकी आज पुण्यतिथि है और हम उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।

मेरे साथियों, हम सभी की यादों में मुस्कुराने वाले वो अमर कलाकार जिन्हें हम आज याद कर रहे हैं उनकी पुण्यतिथि पर, एक ऐसा कलाकार जिसने भारतीय फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन नहीं दिया बल्कि एक पहचान दी, जिसने इंसानी सपनों को पर्दे पर बखूबी उतारा, गरीब की उम्मीद को गीतों में पिरोया और दुनिया को बताया कि भारतीय सिनेमा दिलों की दास्तान कह सकता है। जी हाँ, द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा, राज कपूर।

जी हाँ, द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा राज कपूर। 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में जन्म हुआ रणबीर राज कपूर का, जिन्हें बाद में दुनिया राज कपूर के नाम से जानने लगी। पिता महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर, लेकिन राज कपूर की सबसे बड़ी खासियत रही दोस्तों कि उन्होंने सिर्फ परिवार की विरासत से पहचान नहीं बनाई, बल्कि अपना अलग सिनेमाई संसार बनाया। कहा जाता है कि उन्होंने फिल्मों में शुरुआत एक लैब बॉय और असिस्टेंट के तौर पर की, और इसी तरह उन्होंने कैमरा, लाइट, कहानी, कहने की बारीकियां सीखीं।

जी हाँ, इरादों के पक्के निर्माता निर्देशक अभिनेता रहे राज कपूर। महज 24 साल की उम्र में राज कपूर ने साल 1948 में अपनी खुद की कंपनी आरके फिल्म्स की स्थापना कर ली थी और फिल्म आग से निर्देशन की पारी भी शुरू कर दी थी। इसके बाद राज कपूर की क्लासिक रोमांटिक फिल्म बरसात जो 1949 में रिलीज हुई, जिसे खुद राज कपूर ने डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया, और इस फिल्म ने उन्हें स्टार बना दिया। लेकिन राज कपूर की सबसे सफल और यादगार फिल्मों में 1951 की आवारा और 1955 की श्री 420, संगम जो 1964 में आई और बॉबी जो 1973 में शामिल रही, ये फिल्में उनकी सबसे यादगार फिल्मों में गिनी जाती हैं। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए दोस्तों, और राज कपूर को बना दिया भारतीय सिनेमा का शोमैन।

जी दोस्तों, कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज आप सुन रहे हैं द ग्रेटेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन सिनेमा राज कपूर की फिल्मी दास्तान के बारे में। और आपके इस सफर की आज मैं साथी हूं मनीषा। और देखिए, आपके संदेशों के लिए आपको कार्यक्रम कैसा लग रहा है हम प्रतीक्षा में होते हैं ipradiodelhi@gmail.com पर। और बहुत सारे संदेश हमारे पास आ चुके हैं, हमारे श्रोता साथी प्रतीक्षा में हैं। उनमें पहला जो संदेश है वे नबी हसन का है, ये मारहरा दरवाजा एटा से हमें संदेश लिख रहे हैं और इन्हें कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह हमारे पास अगला जो संदेश है वो गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु और रधान खुराना का है। बागपत उत्तर प्रदेश से हैं संजय ढिंगिनिया, नमन ढिंगिनिया और अपार ढिंगिनिया। कार्यक्रम उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। जी, हमें सुनकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह हमारे साथ हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथी एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा से। जी, आपका नाम हम ले चुके हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशफाक खतीजा बेगम, मोहम्मद इशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, निलोफर फातिमा सभी कार्यक्रम को सराह रहे हैं और सचमुच में आपकी सराहना हमें काफी ऊर्जा देती है। आपको ये सुनकर अच्छा लग रहा होगा और हमें आपकी तारीफ सुनकर अच्छा लगता है। और राज कपूर की जानकारी को पसंद करने वाले हमारे अगले श्रोता साथी हैं, ये हैं इंद्रभान सिंह जो हैं चिरमरी कुरासिया कालरी से और इनके साथ हैं अनुभव सिंह, ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद और कालिंदी लहरे। बहुत स्वागत आपका। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से कार्यक्रम को हमेशा की तरह सुन रहे हैं। वनिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर, छंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता हमारे साथ हैं और खुशियां बांटने के लिए वो हमें धन्यवाद कह रहे हैं। आपका भी धन्यवाद। फारूख अली खान है हमारे साथ और ये हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से, इनके साथ फैजी फराज, फरहीन और फारिया और ताहिरा भी जुड़े हुए हैं। और हमारे ये साथी हैं शोभापुर बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता, कार्यक्रम इन्हें अच्छा लग रहा है। संदीप मक्कार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके साथ कमल साहनी पिंगा वाला चौक गोरिया जालंधर से ये हमें संदेश भेज रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपके संदेशों को शामिल करते हुए। लेकिन हम अब बात कर लेते हैं अपने कार्यक्रम में राज कपूर की उन शानदार जीवन की कृतियों पर जिसको उन्होंने फिल्मी दुनिया में हमें नवाजा। संगम भारत की उनकी पहली बड़ी फिल्मों से एक मानी जाती है जिसकी शूटिंग विदेशों में हुई थी दोस्तों। और दोस्तों, राज कपूर के साथ बतौर नायिका नरगिस ऑन स्क्रीन दमदार जोड़ी हमेशा देखी गई है और भारतीय सिनेमा की सबसे आइकॉनिक पार्टनरशिप्स में भी वो एक मानी जाती हैं, है ना। तो दोस्तों, इन दोनों ने साथ में बरसात, आवारा, श्री 420, चोरी चोरी जैसी कई यादगार फिल्में दी। और आरके स्टूडियो का वो मशहूर लोगो याद है जिसमें राज कपूर नरगिस को हाथों में उठाए देखते हैं। जानते हैं ये लोग, बरसात फिल्म के पोस्टर से ही लिया गया ये पोस्टर है। नरगिस और उनकी केमिस्ट्री ने भारतीय रोमांस को एक नई पहचान से जब जोड़ा था। चलिए सुनते हैं गीत।

ऋतु राज कपूर ने आम आदमी को अपने सिनेमा का हीरो बनाया था। उनके किरदार भारत की जनता और उपेक्षित वर्ग का संघर्ष जीते थे, लेकिन उम्मीद कभी नहीं छोड़ते थे। उनकी फिल्मों पर चार्ली चैपलिन का प्रभाव साफ नजर आता है, लेकिन भारतीय भावनाओं के साथ। साथियों, राज कपूर सिर्फ एंटरटेनर नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्थाओं के पैरोकार रहे। शहर की संवेदनहीनता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने जागते रहो बनाई। ईमानदारी और भ्रष्टाचार का संघर्ष उन्होंने अपनी फिल्मों में दिखाया। श्री 420 में और जिस देश में गंगा बहती है में अपराधियों के पुनर्वास की बात उभारी। बाहरी सुंदरता से ज्यादा आत्मा की सुंदरता को उन्होंने अपनी फिल्मों में दर्शाया। और फिर 1973 में बनाई बॉबी, इस तरह हिंदी सिनेमा में टीनेज रोमांस का दौर भी उन्होंने दिखलाया। राज कपूर की खासियत रही कि वे हर दौर के दर्शकों को बखूबी समझते थे।

ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में कहीं पहले राज कपूर वो कलाकार रहे जो इस दौर से पहले उनकी लोकप्रियता को पा चुके थे। 50 के दशक में ही पूरी दुनिया तक वो लोकप्रिय हो चुके थे। सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर में आवारा और श्री 420 इतनी लोकप्रिय हुई थी कि लोग उन फिल्मों के गाने गाया करते थे। आवारा हूँ सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का गीत बन चुका था दोस्तों। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय सिनेमा को ग्लोबल पहचान दिलाने में राज कपूर ने बड़ी भूमिका निभाई। 1980 तक आते आते राज कपूर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने लगे थे, लेकिन सिनेमा के लिए उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। 1988 में उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। आज राज कपूर साहेब हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी कृतियों से, अपने विचारों से और अपने अभिनय से सदा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे।

दोस्तों आशा करती हूँ मनीषा के साथ आज आपने इस सफर को खूब जिया होगा, क्योंकि आज हम बात कर रहे थे हिंदी फिल्म सिनेमा जगत के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर की फिल्मी दास्तां और जीवन के बारे में। आज के कलाकार ने हमारा सफर यहीं तक। आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे फिर किसी सफर में। मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

सामीन आदाब, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सपहर के 3 बजे हैं, हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है।

सलोनी आपको बता दें, फिर कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। 9:30 पेश करेंगे जनाब मालिक के अश्तर के तहरीर का द फीचर गर्दिश में था आसमान का तारा का दूसरा और आखिरी हिस्सा। यह फीचर राज कपूर की शख्सियत और खिदमात के हवाले से है। 4 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्म नगमों का। फिल्मी नगमों का यह प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने यह था कि मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: खबरें सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्कॉलरशिप स्कीमों के कबायली मुस्तफिदीन से खिताब किया। उन्होंने सही मानों में तरक्की के लिए समाज के सभी तबकों की समाजी, इकतसादी और तालीमी तरक्की पर जोर दिया। हुकूमत ने इमिग्रेशन और गैर मुल्कियों से मुतालिक 2026 के तरमीमी जाब्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

0: एससी के पोर्टल पर आज से काम शुरू हो गया है जो 6 जून तक जारी रहेगा। यह पोर्टल फराहम की गई जवाबी पर्चों की स्कैन कॉपी में किसी तरह के एतराजात की तस्दीक और इनकी दोबारा जांच से मुतालिक है। सीबीएसई ने कहा कि यह सहूलत महज उन तलबा के लिए दस्तयाब है जिन्होंने अपने जांच किए हुए जवाबी पर्चों की स्कैन कॉपी हासिल कर ली है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि हिफाजती वजूहात से आधार के जरिए तस्दीक भी की जाएगी। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है वो अपने वालदेन, रिश्तेदारों या सरपरस्तों की आधार तफसीलात फराहम कर सकते हैं। सीबीएसई ने तलबा को मशवरा दिया है कि वह इस सिलसिले में वीडियो भी देख सकते हैं कि नंबरों की तस्दीक और दोबारा जांच के लिए किस तरह दरखास्त दी जाए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में अब तक एबोला वायरस बीमारी के किसी भी मामले की कोई खबर नहीं मिली है। वजारत ने मशवरा दिया है कि अगर किसी शख्स ने गुज़श्ता 21 दिनों में एबोला से मुतासर मुल्क का सफर किया है और उसमें बुखार, सरदर्द, बदन दर्द, दस्त वगैरह जैसी अलामत पाई जाती हैं तो वो खुद को अलग थलग कर ले और इसकी इतला मकामी सेहत हुकाम को दे। वजारत ने शहरियों से यह भी कहा है कि वह जानकारी, रहनुमाई और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। भारत ने बीमारियों पर काबू पाने और इनकी रोकथाम के अफ्रीकी मरकजों को तिब्बी इमदाद की दूसरी खेप रवाना की है ताकि अफ्रीका में हिफ्जान सेहत में मदद की जा सके और इबोला की रोकथाम की कोशिशों को मुस्तहकम बनाया जा सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि यह खेप हिफाजती मास्क, तशखीस और करीबी नजर रखने से मुतालिक आलात, दवाओं और तगजियाती मतवाजिल पर मुश्तमिल है। उन्होंने तवाज जाहिर किया कि 43 टन की इस खेप से अफ्रीकी यूनियन के रुकन मुल्कों में हिफाजान सेहत की तैयारियों और इबोला की रोकथाम की सलाहियतों में इजाफा होगा। साबिक मरकजी वजीर और हमीरपुर से रुकन पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मरकजी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में रेलवे प्रोजेक्टों की तौसी, जदीदकारी और बिजलीकारी के लिए 2026-27 में 2,911 करोड़ रूपये मुख्तस किए हैं। कांगड़ा वैली रेल खिदमात दोबारा शुरू किए जाने के मौके पर कांगड़ा रेलवे स्टेशन पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब ठाकुर ने कहा कि मुख्तस की गई रकम साबका यूपीए सरकार के दौरान मुख्तस की गई सबसे ज्यादा 104 करोड़ रूपये की रकम से तकरीबन 27 गुना ज्यादा है। अमरीका की योग एथलीट्स की एक टीम पहली आलमी योग आसन में चैंपियनशिप में हिस्सा लेने की गरज से भारत आ रही है। यह चैंपियनशिप अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक होगी। खवातीन क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मुल्कवामी मैच आज रात इंग्लैंड में टॉन्टन के मकाम पर खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्कॉलरशिप स्कीमों के कबायली मुस्तफिदीन से खिताब किया। उन्होंने सही मानों में तरक्की के लिए समाज के सभी तबकों की समाजी, इकतसादी और तालीमी तरक्की पर जोर दिया। हुकूमत ने इमिग्रेशन और गैर मुल्कियों से मुतालिक 2026 के तरमीमी जाब्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जनूबी अफ्रीका के नायब सदर के साथ तजारत, सरमायाकारी और स्ट्रेटजिक तआवुन के बारे में तबादला ख्याल किया। सेहत की वजारत ने कहा है कि भारत में इबोला वायरस बीमारी के किसी भी मामले की कोई खबर नहीं मिली है। और खवातीन क्रिकेट में भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मुल्कवामी मैच आज रात टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। पेशे खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। سامعین آج کے میرے پسند پروگرام کے نغمے ہم نے لیے ہیں راج کپور کی فلموں سے جن کا آج یوم وفات ہے. راج کپور جنہیں ہندوستانی سنیما کا چارلی شومین کہا جاتا تھا اور چارلی چیپلن آف انڈیا کے نام سے بھی مشہور تھے. راج کپور نے ہندوستانی تہذیب و ثقافت کو اپنی فلموں کے ذریعے تمام دنیا میں عام کیا. ایک زمانے تک وہ رشین ہیرو کے نام سے بھی جانے جاتے تھے. آج کے میری پسند پروگرام میں ہم انہیں کی فلموں کے کچھ نغمے آپ کی نظر کر رہے ہیں.

मधुबनी फिल्म का नाम आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में, जिसे मौसीकी सजाया था रोशन ने। आज के मेरी पसंद प्रोग्राम में सामिन हम आपको सुनवा रहे हैं राज कपूर की फिल्मों के कुछ नगमे। प्रोग्राम की आखिर पेशकश शारदा फिल्म का नगमा माना डे की आवाज में, जिसे मौसीकी सजाया है श्रीराम चंद्र ने।

अमारा ने एक और काम ये किया कि नरगिस को राज कपूर की मुस्तकिल हीरोइन के तौर पर नाजरीन के दिलो दिमाग में बिठा दिया। 1957 में राज कपूर की बतौर हीरो चार फिल्में आईं, अंबर, अनहोनी, आशियाना और बेवफा। इन चारों ही फिल्मों की हीरोइन नरगिस थी। आजादी के बाद भारतीय सिनेमा में ये भी एक रिकॉर्ड है कि 1951 से 1956 तक राज कपूर की जितनी फिल्में आईं उन सब में उनकी हीरोइन नरगिस ही थी। जिस तरह राज कपूर ने दिलीप कुमार के साथ सिर्फ एक फिल्म अंदाज में काम किया, उसी तरह अशोक कुमार के साथ भी उन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म बेवफा में काम किया। अंदाज की तरह इस फिल्म की हीरोइन भी नरगिस ही थी।

राज कपूर की जिंदगी का एक कड़वा मोड़ लेकर आया। उस साल उनकी तीन फिल्में आई और तीनों की तीनों पिट गई। उन तीनों में उन्होंने नरगिस के साथ ही काम किया था। ये फिल्में थी धन, पाप और आह। आह फिल्म खुद राज कपूर ने बनाई थी। इन तीनों फिल्मों की नाकामी ने हालात का रुख एकदम से पलट कर रख दिया और हालत ये बनी कि बरसात और आवारा जैसी शानदार फिल्में देने वाला अदाकार बेकार बैठा था।

उम्र तो हालात से निकलने के लिए राज कपूर को कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही था, इसलिए उन्होंने फिल्म बूट पॉलिश बनाने का फैसला किया। हैरान कुन बात ये थी कि इस फिल्म में न तो वो खुद बतौर हीरो शामिल थे और न ही नरगिस बतौर अदाकारा। चाइल्ड आर्टिस्टों को लेकर बच्चों पर ये फिल्म बनी और सन 1954 में मंजर आम पर आई। नतीजा हालात फिर से पलट गए और हर तरफ राज कपूर का चर्चा होने लगा। इस फिल्म ने कमाई भी खूब की।

जैसे जैसे आगे बढ़ा नरगिस के साथ उनकी जोड़ी उतनी ही मकबूल होती चली गई। और फिर जब लोग इस जोड़ी को देखते तो पर्दे पर उसकी रोमानियत, उसकी चाहत और उसकी इंफरादियत तीनों का लुत्फ लेते। राज कपूर ने नरगिस के साथ 8 साल के अरसे में 16 फिल्मों में काम किया, यानी इस जोड़ी की औसतन हर साल 2 फिल्में आती रहीं। राज कपूर नहीं, भारतीय सिनेमा के किसी भी बड़े अदाकार की रिपीट, राज कपूर नहीं, भारतीय सिनेमा के किसी भी बड़े अदाकार की किसी अदाकारा के साथ ये सबसे लंबी और कामयाब जोड़ी रही।

फिल्मों में नजर आई। एक फिल्म तो खुद राज कपूर की ही थी जिसका नाम था जागते रहो। दूसरी फिल्म अनंत ठाकुर की चोरी चोरी थी। इस तरह ये खूबसूरत जोड़ी बरसों साथ साथ नाजरीन के दिलों की धड़कनों पर राज करके अलग हुई।

राज कपूर का फिल्मी सफर एक बार फिर हिचकोले खाने लगा। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में खास मुजाहरा न कर सकी। 1957 में उन्होंने फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं बनाई। इस दौरान वो दूसरे फिल्मसाजों की फिल्मों में भी काम करते रहे, जिनमें एलवी प्रसाद की शारदा, रमेश सहगल की फिर सुबह होगी, एस बनर्जी की परवरिश जैसी फिल्में शामिल है। 1959 में फिल्म अनाड़ी में उनकी अदाकारी को बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म में हीरोइन के तौर पर नूतन ने काम किया था। फिल्म के गीतों ने भी काफी मकबूलियत हासिल की। मुकेश की आवाज में इस फिल्म का एक गीत तो बहुत ही मशहूर हुआ।

0: 1960 में राज कपूर की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है मंजर आम पर आई। इस फिल्म से नाजरीन और खुद राज कपूर को बहुत उम्मीदें थी। इस फिल्म में राज कपूर के अलावा प्राण और पद्मिनी ने अदाकारी की। ये फिल्म एक प्यारी सी मोहब्बत की दास्तान और बहुत गहरे समाजी पैगाम से भरपूर थी।
1: एक देश इस दुनिया में जहाँ दाता अगर भिखारी को भिक्षा नहीं दे सकता तो ऐसे हाथ जोड़ के बोलता है कि मेरे को माफी दे दे भाई। जहाँ खिलाने वाला खाने वाले को बोलता है कि आपने बड़ी दया की जो मेरा चौका पवित्र किया। जहाँ एक पापी हत्यारा अपने पाप से पलटता है तो रामायण से लेकर ग्रंथ लिखता और इसी बाल ये कहलाता है ताऊ जी। उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है।
0: इस फिल्म ने राज कपूर की फिल्मी जिंदगी में एक नई उमंग पैदा की। फिल्म ने कमाई तो की ही, उसको बहुत से इजाजात भी मिले, जिससे फितरी तौर पर राज कपूर का हौसला एक बार फिर से बुलंदियों तक पहुंच गया। राज कपूर ने फिल्म में एक सादा लौह और प्यारे से नौजवान का किरदार बहुत खूबी से निभाया था।

राजकपूर 61 से 63 तक चार फिल्मों में बतौर अदाकार आए। इन फिल्मों में श्रीधर की नजराना, ऋषिकेश मुखर्जी की आशिक, प्यारेलाल संतोषी की दिल ही तो है और आरसी तलवार की एक दिल 100 अफसाने शामिल हैं। सन 1964 में राज कपूर ने संगम फिल्म बनाई जिसमें उनके साथ बतौर अदाकारा विजयंती माला ने काम किया। इस फिल्म में साइड रोल के लिए राज कपूर ने दिलीप कुमार से कहा तो उन्होंने राज कपूर वाला किरदार खुद के लिए मांगा, जिस पर राज कपूर राजी न हुए और दिलीप की जगह राजेंद्र कुमार को लिया गया। इस फिल्म ने अच्छी मकबूलियत हासिल की और उसकी मौसीकी की भी खूब तारीफ हुई।

फिल्म संगम, बतौर फिल्म साज और बतौर अदाकार भी राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म थी। इस फिल्म की तैयारी में उन्हें काफी वक्त लगा था। राज कपूर ने संगम 4 बरस के वक्त के बाद बनाई थी और इससे जाहिर है कि उन्हें बहुत सी उम्मीदें थी। इसी साल राज कपूर एक और फिल्म दूल्हा दुल्हन में भी नजर आए। शैलेंद्र के बारे में तो आप सभी जानते हैं, वो थे तो गीतकार लेकिन उन्होंने एक तजुर्बा करने का फैसला किया। ये तजुर्बा था कि एक फिल्म बनाई जाए। शैलेंद्र ने हिंदी के नावल निगार रेणु की कहानी पर तीसरी कसम नाम की एक फिल्म बनाई। इस फिल्म में उन्होंने हीरो राज कपूर को लिया और हीरोइन के तौर पर वहीदा रहमान को लिया। इस फिल्म पर शैलेंद्र ने उम्र भर की अपनी कमाई लुटा दी। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो नकादों ने इसे खूब सराहा, अवार्ड भी मिले, लेकिन अफसोस फिल्म कमाई के मामले में नाकाम रही और इसका शैलेंद्र को शदीद धचका लगा। वो एक गम से ऐसे टूटे कि कुछ दिन के बाद दुनिया को ही अलविदा

1970 में राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर रिलीज हुई। फिल्म की कहानी ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखी थी। इस फिल्म पर राज कपूर ने अपना बहुत कुछ दांव पर लगा रखा था। फिल्म में अदाकारों की एक पूरी फौज थी, जिसमें राज कपूर खुद और फिर मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र और ऋषि कपूर जैसे लोग शामिल थे। फिल्म का मरकजी ख्याल भी बहुत उम्दा था, लेकिन उस वक्त राज कपूर को इंतहाई धक्का लगा जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिर गई।

मेरा नाम जोकर की नाकामी ने राज कपूर को बुरी तरह से तोड़ दिया। माली एतबार से उनकी हालत खस्ता हो गई, कर्ज का दबाव था। उन्होंने फिल्म कल आज और कल बनाई जिसमें पूरे कपूर खानदान ने काम किया, लेकिन ये तजुर्बा भी राज कपूर को खातिर खास संभाला न दे सका। अब राज कपूर को किसी करिश्मे का इंतजाम या इंतजार कर

0: राज कपूर को नाकामियों से बाहर आने के लिए जिस करिश्मे का इंतजार था वो 1973 में रूनुमा हुआ। इस करिश्मे का नाम था बॉबी। ये फिल्म राज कपूर को फिर से शोहरत के आसमान तक ले गई। इस फिल्म में राज कपूर ने एक नया तजर्बा किया। नौ उम्रों की चाहत पर मबनी फिल्म में राज कपूर के नौखेज बेटे ऋषि कपूर और कमसिन हीरोइन डिंपल कपाडिया ने काम किया था। ये डिंपल कपाडिया की पहली फिल्म थी और फिल्म ने आते ही धूम मचाकर रख दी।
1: झूठ

रवि के बाद धर्म करम, सत्यम शिवम सुंदरम, बीवी ओ बीवी और प्रेम रोग फिल्में राज कपूर ने बनाई, लेकिन इतनी कामयाबी नहीं मिली जैसी इससे पहले देखी गई। सन 1958 में राम तेरी गंगा मैली राज कपूर की बनाई हुई आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म ने भी काफी कमाई की और बॉबी जैसा नाम कमाया।

फिल्म में राज कपूर के बेटे राजीव कपूर और मंदाकिनी मरकजी किरदारों में थे। फिल्म के बाज मनाजी पर एतराज भी हुआ, लेकिन बहरहाल फिल्म ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की।

0: कपूर अदाकार राज कपूर आखिरी बार मरकजी रोल में फिल्म वकील बाबू में हमको नजर आते हैं। इस फिल्म में उनके अलावा उनके भाई शशि कपूर ने भी अदाकारी की थी। राज कपूर की फिल्मी जिंदगी पर अगर नजर डाली जाए तो दो पहलू हमको खास तौर से नजर आते हैं। पहला है रोमानवियत का पहलू और दूसरा पहलू है आजाद भारत के समाजी मसाइल। उनकी फिल्मों में बहुत बुनियादी सवालात उठाने की भी कोशिश की गई जो तल्ख भी थे और हमको दावत फिक्र भी अता करते थे।
1: शेर तुम्हें कतर छुपा रहते, क्या तुम्हें इसका डर नहीं लगा? डर तो था शेर सिंह जी, मगर दुनिया में एक चीज शेर बबर से भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी है और वो है गरीबी और भूख। मुझे किसी भी कीमत पर पैसा चाहिए था अपना और अपनी माँ का पेट भरने के लिए, अपनी बीमार माँ का इलाज कराने के लिए।
0: राज कपूर ने अपनी फिल्मी जिंदगी में बहुत से एजाजात हासिल किए। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का आला तरीन एजाज दादा साहब फाल्के तो दिया ही गया, इसके अलावा उन्हें हुकूमत हिंद ने पद्म भूषण से भी सरफराज किया। राज कपूर को उनकी फिल्मों के लिए दो कौमी फिल्मी एजाजात और 11 फिल्मफेयर अवार्ड भी मिले। उनकी फिल्म आवारा को दुनिया की बेहतरीन फिल्मों की दर्जाबंदी में शामिल किया गया। शोमैन के नाम से मशहूर इस अजीम शख्सियत को इसके अलावा भी बहुत सारे एजाजात मिले। अपनी अदाकारी और फिल्मों से हमारे जहनों को झंझोड़ने और दिलों को छूने वाला ये इंसान 2 जून को दिल्ली में चल बसे।

ये आकाशवाणी है। अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्कॉलरशिप स्कीमों के कबायली मुस्तफिदीन से खिताब किया। उन्होंने सही मानों में तरक्की के लिए समाज के सभी तबकों की समाजी, इक्तिसादी और तालीमी तरक्की पर जोर दिया। हुकूमत ने इमिग्रेशन और गैर मुल्कियों से मुतालिक 2026 के तरमीमी जाब्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन जाब्तों के तहत रजिस्ट्रेशन के अवकात और अपील से मुतालिक निजाम में अहम तब्दीलियां की गई हैं। उत्तर प्रदेश के दहशतगर्दी की रोकथाम के दस्ते ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के साथ मुबैना रबते की बिना पर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। और आज राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और साहिली आंध्र प्रदेश में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाओं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तालीम बाख्तियार बनाने का एक ताकतवर वसीला है, क्योंकि ये लोगों को खुद कफील, बाशऊर और बासलाहियत बनाती है। आज नई दिल्ली में स्कॉलरशिप के कबायली मुस्तफिदीन से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि हकीकी तरक्की तभी हो सकती है जब मुआशरे के सभी तबके समाजी, इक्तिसादी और तालीमी एतबार से तरक्की करें। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि सरकारी स्कॉलरशिप स्कीमों की वजह से कबायली अफराद की जिंदगी में तब्दीली आई है, क्योंकि उन्हें आला तालीम और नए मौके हासिल हुए हैं। सदर जमहूरिया ने जोर देकर कहा कि भारत में सलाहियत की कोई कमी नहीं है और उन्होंने इसकी शिनाख्त करके इसे परवान चलाने के लिए सही प्लेटफार्म फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जनूबी अफ्रीका के नायब सदर पॉल मशाटाइल से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉ जयशंकर ने कहा कि इस मीटिंग के दौरान उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी, एमएसएमईस, डिजिटल और बुनियादी ढांचे के शोबों में दस्तियाब मौके के बारे में तबादला ख्याल किया। डॉ जयशंकर ने दोनों मुल्कों के दरमियान तवील मुद्दती साझेदारी को मजीद मुस्तहकम करने से मुतालिक जनाब पॉल मशाटाइल के आज़्म की सताइश की। उन्होंने कहा कि दोनों लीडरों ने इस बात से भी इत्तेफाक किया कि भारत और जनूबी अफ्रीका को बैन अल-अक़वामी सतहों पर मिलकर काम करना चाहिए। उमूर दाखिला की वजारत ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक तरमीमी जाब्तों वजरिया 2026 को नोटिफाई कर दिया है। इसके तहत रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से वक्त की हद में अहम तब्दीलियां की गई हैं। साथ ही इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक 2025 के जाब्तों के तहत अपील दायर करने के तरीकाकार में भी तब्दीली की गई है। मस्कूरा तरमीम की रूह से भारत पहुंचने के 180 दिन की मुद्दत खत्म होने से पहले किसी भी वक्त रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करना होगा। अभी तक 180 दिन की मुद्दत खत्म होने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन का अमल पूरा करना होता था। भारत ने बीमारियों पर काबू पाने और इनकी रोकथाम के अफ्रीकी मरकजों को तिब्बी इमदाद की दूसरी खेप रवाना की है, ताकि अफ्रीका में इंसानी सेहत में मदद दी जा सके और इबोला की रोकथाम की कोशिशों को मुस्तहकम बनाया जा सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा कि ये खेप हिफाजती मास्क, तशखीस और करीबी नजर रखने से मुतालिक आलात, दवाओं और तजिया के मुतबादिल पर मुश्तमिल है। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि 43 टन की इस खेप से अफ्रीकी यूनियन के रुकन मुल्कों में हिफाजत सेहत की तैयारियों और इबोला की रोकथाम की सलाहियतों में इजाफा होगा। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में अब तक इबोला वायरस बीमारी के किसी भी मामले की कोई खबर नहीं मिली है। वजारत ने मशवरा दिया है कि अगर किसी शख्स ने गुज़िश्ता 21 दिनों में इबोला से मुतासर मुल्क का सफर किया है और उसमें बुखार, सरदर्द, बदन दर्द और दस्त वगैरह जैसी अलामत पाई जाती हैं, तो वो खुद को अलग थलग कर ले और इतला मकामी सेहत हुकाम को दे। वजारत ने शहरियों से यह भी कहा है कि वो जानकारी, रहनुमाई और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के दहशतगर्दी की रोकथाम के दस्ते एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से मुबैना रबते के सिलसिले में आजमगढ़ से मोहम्मद शेख नामी एक नौजवान को गिरफ्तार किया है। एटीएस को इतला मिली थी कि पाकिस्तान की आईएसआई और दहशतगर्द तंजीम

मैं नीरू दुआ आप सब नु राम राम जी करेंदी हां ते आप सब दे सामने एक सिराए की लोक कहानी पेश करेंदी पईयां जिसदा नां है सोने दे धागे। गहरे घाटे जंगल दे हेक पासे हेक जई छोटी जई सल्तनत है। जंगल दी बहुत सारी कहानियां उत्थां दे बाशिंदे सुना के चस गिंदे हन। सल्तनत दे लोग बहु खुश रहंदे हन। सल्तनत दा एक नौजवान बादशाह है। सल्तनत विच एक गरीब आदमी अपनी धी दे नाल रांदा है। ओ धी बहु ही हसीन ते खूबसूरत है। ओ शख्स बहु बातूनी है। आवण वंजन वाले लोगां को लंबे लंबे झूठे किस्से सुनेंदा है। हूं शख्स ने कई बारी लोगां को बेवकूफ बनाया। लोग हुंदी शिकायत बादशाह सलामत को करेंदे हन। हेकड़ी बादशाह ने हूं शख्स को सबक सिखावन किते अपने दरबार विच सड़वा गिद्दा। बादशाह ने अपने गुलाम को पैगाम दे के गरीब शख्स दे घर पठा। गुलाम शख्स को अपने नाल घिन के दरबार च आए। गरीब शख्स ने बादशाह को सलाम पेश करेंदे वे आखा के बादशाह सलामत आप मेरे बारे विच किवें जानदे है ते मेरा फर्ज है के मैं आप दा शुक्रिया अदा करा ते आपको अपने ते अपनी बेटी बारे दसा। बादशाह ने आखा जरूर दसा। गरीब शख्स ने बहु ही नरम अल्फाज विच बोलना शुरू कीता। मेडी एक बच्ची है ते ओ दुनिया दी सब तो हसीन बच्ची है ते ओ कख विचो सोना कड्डन दा हुनर भी जान दी है। बादशाह को ए गल बहु पसंद आई। बादशाह ने आखा जेकर तेडी धी इतनी हुनरमंद है ते वल हुकू मेडे नाल महल विच घिन के आ। मैं उन्दा इम्तिहान घिनना चांदा। गरीब शख्स ने बादशाह दा हुक्म कबूल चा कीता ते दरबार विच इम्तिहान वास्ते धी को घिन के आवंदा वैदा कीता। ओ शख्स परेशान हाल विच घर गया ते सारा माजरा धी को सुनाया। धी ने नाराज थींदे वे आख्या लाला जी मैं पहले भी कितनी बारी तो आकुम आखेम के झूठ ना बोला करो। हुन देखो तुसा अपने झूठ विच आप फस गए वे। हुंदे प्यू कोल अल्फाज कहना हन ते ओ बहु शर्मिंदा थींदा पिया है। डूवे अपनी तबाही को देख दे वे मैल वल टुर पे। बादशाह ने डूवे को खुशामदीद आख्या ते लड़की दी खूबसूरती दी तारीफ कीती। आओ आओ प्यारी बच्ची तू वाकई बहु हसीन है। मे को उम्मीद है तू कख विचो सोना कड घिन से। वजीर वक्त जाया नहीं मिसी करेंदे आओ मेडे नाल। बादशाह उन्ने को एक कमरे विच घिन के गया। उथा बहु सारे घास फूस दे तिनके ते एक मशीन है। बादशाह ने लड़की को हुक्म दिता के हुन तू अपने काम ते लगवंज। जेकर सवेल थीवन तक तू कख विचो सोना ना कड्डा ते मैं तेकू ते तेडे प्यू को मार घते सा। बादशाह ने अपने पहरेदार को खास निगरानी कीते हुक्म दिता कि थई डूवे भज ना वंजन। हुन बिचारी लड़की को पता कहना हा कि वो क्या करे। हुन दी परेशान इतनी वध गई कि वो रोवण लग पई। इतने विच एक रोशनी नामुदार थई ते एक सोनी शकल दा बोना बंदा रोशनी विच नजर आवन लग गया। बोने ने लड़की दे रोवण दी वजह पुछी। लड़की ने रोंदे रोंदे आख्या कि मेको इन्ने कखा नाल सोना बनावना है ते मैं कहना जान दी कि ए कम मैं किवें करे सा। बोने ने सुनदे ही जवाब दिता जेकर मैं तेडा ए कम कर घिना देवा ते तू मेको के शैडे से। मैं तेको ए हार दे सकदी हां। ए आके अपना हार बोने आदमी को दे दिता। बोना आदमी मशीन दे अगू बैठिया। हुने त्रै दफा मशीन दा पहिया घुमाया ते सोने दे धागे कट दिते। ही तरह हूं कै घास फूस दे तिनके चाते ते उन्ना को सोने दे धागे विच तब्दील कर दिता। ही तरह

सवेर तक हूँ अपना काम जारी रख्या। हेक हेक करके सारे तिनके खत्म थी गए ते ओ सोने दी गोलियां दी शक्ल विच तब्दील थी गए। लड़की बहु खुश थी गई। ए सब देख के उन पुछया कि ए नन्ने बोने आदमी तू कौन हाई ते तेडा ना क्या है। बोना खिलदा रिया ते गायब थी गया। सवेर थींदे ही बादशाह आ गया। जेड़े वेले हूने सोने को डिठा ते ओ हैरान थी गया। ओ मेडे खुदाया मेकू लगदा पिया है के तेडा प्यू मेडे अगू कूड़ मरेंदा पिया है। हुण तू वंज के आराम कर, मैं अज शाम वेले तेकू मिल सा। लड़की ने सोचा के बादशाह खुश थी के असा को इनाम देसी ते राजी खुशी उन्ना को घर वंजन देसी। लेकिन लालची बादशाह अगले दिन उन्ना को एक वह कमरे विच घिन के गया जिथा ढेक सारे तिनके पए हन ते ओ कमरा पहले कमरे कन्नो वड्डा है। बादशाह ने हुक्म दिता के जेकर तेकु अपनी ते अपने प्यू दी जिंदगी नाल प्यार है ते इन्ने सारे घास फूस को रातो रात सोना बना। लड़की कहना जानदी है कि ओ क्या करे। हुन वला रोवना शुरू कर दिता। अचानक ओ सोना बोना आदमी वह नमुदार थिया। रोवना बंद कर लड़की ते मेकू ए डसा के मैं जेकर तेडा ए कम भी कर देवा ते तू मेकू कै छेड़े से। लड़की ने थोड़ी देर सोचा ते अपनी अंगुली च पाती हुई अंगूठी को दिता ते हुंदे कोले आखिरली कीमती शय है जेड़ी ए हुको दे सकदी है। लड़की ने आख्या के मेडी अंगुल कन्नु ए अंगूठी कड गिन। हुं बोने शख्स ने ओ अंगूठी गिन गिदी ते मशीन दा पहिया वल घुमावन लग पिया। पहले वांगू ही बोने शख्स ने सारे घादे तिनके सोने विच तब्दील कर दिते। लड़की दी सा विच सा आ गया। ओ हुन बहु खुश थी गई। हुने शुक्रिया अदा कीता ते पुछया ओ रहम दिल बोने शख्स तू कौन हई ते तेडा नाम क्या है। बोना शख्स खिलदे खिलदे पहले वांगू गायब थी गया। बादशाह जड़े वेले कमरे विच दाखिल थिया ते हुंदी खुशी दा कोई ठिकाना ना रिया। तू ते साड़ी सल्तनत वास्ते तोहफा है मेडी तारीफ वास्ते मेडे कोल अल्फाज कहे नी। हुन तू आराम कर ते शाम वेले मैं तेकु वल मिलसा। जिवे तिवे शाम थई ते बादशाह लड़की को मिलन आया ते हुके एक बड़े वड्डे कमरे विच घिन गया। उत्था भी घा फू दा बहु वड्डा ढेर है। बादशाह ने आख्या ए काम भी रातो रात मुकम्मल थी वंजना चाहिदा है। जेकर ए काम भी तू पूरा कर दिता ते मैं तेकू अपनी मलिका बना घिनसा क्योंकि तेडे कन्नु बेहतर लड़की मेकू पूरी दुनिया विच नहीं मिल सकदी। हूं रात भी लड़की को कल्ला छोड़ दिता गया। लड़की ने वल रोवना शुरू कर गिदा ते ओ कुछ देर बाद ओ नन्ना आदमी वल नमुदार थिया। बोने ने लड़की कन्नु पुछा ही बारी तू मेकू कै छेड़े से जे मैं सारे तिनके सोने विच तब्दील कर देवा। लड़की रोंदे रोंदे अखेंदी रही हे वारी डेवन वास्ते हुंदे कन्ने कोई शे कहनी। बोने ने लड़की को तसल्ली दित्ती के तू बस कर रोना ते मेडे नाल एक वैदा कर के तू मलिका बनन दे बाद पहले बच्चे को जन्म देसे ते ओ बाल मेकू डे देसे। लड़की कोल हां आखन दे अलावा कोई चेहरा गाना है। बोना शख्स ने आखा के मेकू पूरी पूरी उम्मीद है के तू अपना वैदा कदाए ना भूल से। लड़की ने वैदा कीता ते बोने ने पहले कन्नु जल्दी नाल काम करना शुरू कर दिता। जल्दी जल्दी मशीन घुमावनी शुरू कीती ते जल्दी सारे तिनके सोने विच तब्दील थी वंजने शुरू हो थी गए। जल्दी झटखन विच काम खत्म थी गया। वल खिलदे खिलदे बोना गायब थी गया। अगले सवेर जड़े वेले बादशाह कमरे विच दाखिल किया ते हूं डिठा के सारा काम मुकम्मल थी गया है। बादशाह ने मोहब्बत नाल आखा के मेरी प्यारी तू अपनी काबिलियत दा सबूत दे दिता है ते मैं तेरे नाल कल शामी शादी करन आला हां। अगले दिन बहु धूमधाम नाल शादी थई। महल विच बहु रौनक आई। गरीब आदमी दी धी बादशाह दी मलिका बन गई। एक साल थींदे ही हुने एक बाल को जन्म दिता ते ओ बोने शख्स नाल कीते बए वैदे को भूल गई। एक दिन ओ अपने कमरे विच बिल्कुल ही कल्ली है। अचानक कमरे विच रोशनी दे नाल ओ बोना शख्स नमुदार थिया। मलिका हुक्कू देख के घबरा गई। बोने शख्स ने आखा कि क्या तू अपना वैदा भूल गई है मलिका। मलिका ने दुखी थी के रोंदे वे जवाब दिता नहीं मेकू अपना वैदा पूरी तरह याद है पर मैं अपने बच्चे नाल बहु प्यार करेंदी हां क्या मैं तेरे को

0: होगा। याद रखना, हर रोज सवेरे 6 बजे समाज फरमाओ सूफियाना कलाम, हर रोज शाम 5 बजे स्ट्राइक की प्रोग्राम झोक माही दी, शाम दे ठीक 5:30 बजे हर रोज सुनो इस पंजाब। उन्हें अपने ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड करो न्यूज ऑन AIR, जिसे हर रोज डिजिटल क्वालिटी में आती है इस पंजाब की बहार।
1: आगाज करने हैं।

0: राम जी ने माल को जय राम जी की दिनु। इतनी तेज बारिश हो रही है फिर भी तुसी घरों निकल पे हो, ये करिए दीना नाथ, बारिश तो इतनी रोज ही पैन लग पी है, पर असी तो दफ्तर जाना ही होता है ना, और कोई चारा भी तो नहीं। बारिश तो हो तेज हो गई है माल को, बाहर क्यों खड़ोते हो, अंदर आ जाओ, राता को बारिश मट्टी हो गई चले जाओ दफ्तर भी। ठीक है दीनानाथ, आ जाओ आसपास के बह जाओ।
1: अच्छा
0: ठहरो जरा, मैं जरा इसमें पूछ दिया, बाथर नाल गिल्ला हो गया है, लो बैठो अपनी छतरी मेनू दे दो, दरवाजे नाल टंग दिना मुचड़ जाएगी।
1: मेहरबानी दिनू, दीनानाथ हुण रुके गए हैं ना, तो थोड़ा जहा बूटा की मुरम्मत भी कर दे भाई।
0: लियाओ बूट मेनू दियो, थोड़ी देर च हो सकता है बारिश भी घट जाए।
1: आल फट बूट, इतने चिरापूंजी विच बारिश तो बंद होनी ही नहीं,
0: काफी चिर हो गया थानू चिरापूंजी आया नू, थानू अगे हो जाना चाहिए इथे दी बारिश तो।
1: तू दसिया सी कि तू इथो का जंपल है, असि तो पहला सुनिया ही सी कि चिरा

0: मालको जीना नहीं उसने बचना नहीं उसने
1: ओहो दिनो मैं कदे नहीं सोचा थे कि तू इन्ना भी जालिम हो सकता है। तेनो उस बात में कोई प्यार नहीं सी ओ अपनी कैद में रखना तेरा अहम सी तेरा स्वार्थ सी बदले दी ये भावना अपना अहंकार स्वार्थ का

कथा लोक प्रचलित है, चमन तुसी समाज हमारे सी वीणा तीर दी लिखी कहानी आगे कथा लोक तो बाद देश पंजाब मजलिस अगला सिलसिला थोड़ा मनपसंद प्रोग्राम नजराना। नजराना दी पहली पेशकश थोड़ी नजर ज्योतिका तंगरी दा गाया एक गीत।

0: ये आजो संधु साहब आजो बच्चे वाले आजो
1: आगे जी आगे।
0: जय हिंद जी,
1: रुड़िया राम जी, जय हिंद,
0: जय हिंद जी, जय हिंद जी। संधु साहब बच्चे वाले की हाल चाल है तेरा?
1: बहुत वधिया जी, अपना सुनाओ।
0: हाल चाल तगड़ा। देखो जिदा कहने के बंदे की पहचान मौके के लिहाज नाल हुंदी है, क्योंकि कई वारी ना असीं बंदे नूं बिना परख तो उहदे भरोसा कर लैने आ, उत्थे किते ना किते जाके फिर आपां मार खांदे आ। सो इस करके कोई भी जदों आपां जिंदगी दे विच कार है, विहार है, वर्त है, वर्ता है, उहदे च निरख और परख बड़ी लाज़मी है। क्योंकि बाद दे विच पछतावा करन दा या बाद दे विच पछताउण दा रोण दा कोई फायदा नहीं हुंदा।
1: गल ए भी है ना रुड़िया राम जी के जिंदे तक आप किसी नलबात नहीं करा गे, मिला गे, वरता गे नहीं, अगले दिल च की है नहीं पता लगता,
0: नहीं पता बात पे जानी है, राह पे जानी है।
1: कई बार आप देखदा लगता कि बंदा ठीक नहीं, पर बंदा ठीक हुंदा है जी।
0: ए भी गल सही है ताडी,
1: पर कई बार उल्ट भी हो जांदा।
0: हां दमूहे भी हुंदे कई, जिदा कहंदे बगल में छुरी मुंह में राम राम।
1: हां
0: ओ साहब भी। सो इस करके अज दुनिया दे विच आपां जदों देखदे

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबर तो पहला एक मिनट के लिए रुको, सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो।
4: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
0: आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले शाम दे 7 बज रहे ने। हुण तुसी सुनोगे पंजाबी खबरां।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
6: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
5: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित रहेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति सिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, कौशल विकास और जन जन संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिनों के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरल

में अगस्त्य मलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। बोर्ड ने बताया कि पोर्टल की सेवा में व्यवधान डालने के लिए 2 मिनट के अंदर लगभग 15 लाख आवेदन भेजे गए। बोर्ड ने कहा कि सिस्टम पर उपलब्ध फाइलों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के 1 लाख से अधिक प्रयास हुए। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और हरिहरन अमसा करुणन तथा एमआर अर्जुन की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रस्थ चैनल है। आइए आपको ले चलते हैं एक बार फिर से विशेष फोन इन कार्यक्रम की ओर।
1: आप सुन रहे हैं हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला। आज का विषय है गन्ने फसल में कीट और रोग नियंत्रण। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है इंडियन पोटाश लिमिटेड।

0: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद। IPL की पॉलीहेलाइट।
1: हमारा आज का विषय है गन्ना फसल में कीट और रोग नियंत्रण। तो इस विषय से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो आप विशेषज्ञ से सीधा फोन के जरिए जुड़ सकते हैं और गन्ना फसल से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं।
2: और आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर DS सिरोही, जो कि गन्ना वैज्ञानिक जिला मुजफ्फरनगर से हैं। और जो हमारे दूसरे भी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, जो कि मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं इंडियन पोटास लिमिटेड नई दिल्ली से। तो अब चलते हैं, आपको ले चलते हैं स्टूडियो की तरफ, लेकिन उसके पहले आपको फोन नंबर एक बार बता दें, 2342108 2। दूसरा नंबर है 2342108 3, और जो STD कोड है वो लगाएं 011। तो चलिए, इस समय नरेश पारासर जी हमारे साथी वहां पर मौजूद हैं, संचालन कर रहे हैं कार्यक्रम का, और स्टूडियो की तरफ मुड़ते हैं, आपने प्रश्नों की बौछार कीजिए।
3: डॉक्टर सिरोही जी, एक बार फिर से आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
4: जी, धन्यवाद।
3: डॉक्टर साहब, एक फोन ही आ गया, पहले फोन से ही शुरू करते हैं।
4: जी जी।
3: हेलो।
5: हाँ, नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
5: मैं राम कुमार नाम का किसान, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश।
3: बताए राम कुमार जी, क्या सवाल है?
5: हमारा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब ने अभी कुछ वैरायटी बताई थी 18231 16202।
3: जी,
5: 18231 ठीक है जी, हमने वो रखी। थोड़ा हमने जनरल का जिक्र करा था कि आप अगले कार्यक्रम में हम जनरल की वैरायटी का जिक्र करेंगे।
4: जी जी।
5: तो एक वैरायटी हमने जनरल की वो भी रखी है जी।
4: बताएं कौन सी वैरायटी वो रखी है आपने?
5: 1500।

0: 33
1: जी जी
0: अजीत भी बढ़िया शरीर डॉक्टर साहब आके बहुत ही अच्छी शरीर हमने दोबारा भी बोल दी हो
1: जी जी
0: तो कोई एक आधी और तो हमें जनरल की बता दो हमें जनरल की और बढ़िया लगी।
1: देखिए ऐसा है अभी जो जैसा आपने सवाल किया मैंने बताया था आपने सुना भी होगा CO0 118 वेराइटी का इस साल आप देखेंगे तो बड़ा फेवरेबल इन्वायरमेंट है। फरवरी महीने में से ही जो तापक्रम था ना
0: जी
1: और आपका ध्यान आकर्षित रहता 0238 पे ज्यादा किसान ध्यान देता 0238 पे
0: सारा उसी पे ही था।
1: तो अभी आपका ध्यान आकर्षण जो है 0118 इस साल आप देखेंगे अगर बागपत जिले की बात करें या मुजफ्फरनगर जिले की बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समझ जिलों की हम बात करें तो 118 वेराइटी की जो टिल्लिंग है उसकी फूट है चाहे वो हमारी मूडा फसल है रेटून क्रॉप है चाहे हमारा बोर्ड है तो दोनों फसलों में आपको इस साल रमनक दिखाई देगी। उसमें किसानों ने अपनी एग्रोनॉमी भी चेंज करी है और किसानों ने आपका अपना ध्यान आकर्षण भी किया है। साथ ही जो आपका सवाल है उसके साथ दो वैरायटी आप नोट कर लें दो वैरायटी अभी ट्रायल है रिलीज हो गई है करनाल संस्थान से वैरायटी का नाम है एक वैरायटी का नाम है CO 17018
0: अच्छा जी
1: एक वैरायटी है CO 18022
0: ठीक है
1: तो अभी कम मात्रा में इनका बीज है आप संस्थान से संपर्क करके वहां से बीज प्राप्त कर सकते हैं।
0: एक अर्ली की हमने 82 बेहतर वो रखी है जी।
1: देखिए ऐसा है ये जो वैरायटी है ना इनके वैरायटी में ट्रायल चलते रहते हैं आप जो चीनी मिल जो आपको रिकमेंड करें ना क्षेत्र की जो भी चीनी मिल है उन चीनी मिलों के संरक्षण में आप अपनी वैरायटी का चयन करें। वैरायटी 3000 बाजार में घूम रही है लेकिन
0: वैरायटी बहुत है।
1: हाँ लेकिन हमें बीमारी कीट और उसकी सारी बातों को ध्यान में रखते हैं उसकी इल्ड क्या आएगी उसमें बीमारियों का अटैक ज्यादा तो नहीं है इनका चयन करके आप अपने चीनी मिल से संपर्क करके गन्ना विभाग से संपर्क साध करके उन वैरायटियों का चयन करके अपने खेतों में बोएं। धन्यवाद
2: कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए। और डॉक्टर साहब जैसे मेरा सवाल तो हो ही ना रहा फोन अच्छा है आ रहे हैं फोन किसान भाई रुचि दिखा रहे हैं उनकी समस्याएं हैं
1: जी जी जी
2: तो जो कीट है अनुकूल वातावरण में तो एक तो कौन कौन से कीट हैं जो इस समय परेशान करेंगे।
1: देखिए इस समय मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं जैसे कि जो हमारी एक सबसे बड़ा जो गन्ने में कीट तो कई प्रकार के लगते हैं लेकिन अभी अमूमतः जो हमारे एक तरह से गन्ने में जो सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला कीट है उसको हम टॉप बोरर या चोटी विधेयक के नाम से जानते हैं जो गन्ने में ज्यादा प्रभाव डालता है पैदावार पे
2: जी।
1: और इस वर्ष खुशी की बात यह है कि किसान भाइयों ने भी उसको अवेयर होकर के ध्यान दिया है और जो किसान भाई इस चीज में ध्यान नहीं दे पाए हैं जो इसकी प्रथम पीढ़ी असल में 5 से 6 पीढ़ियां होती हैं
2: अच्छा
1: तो जो प्रथम पीढ़ी है उसका चक्र खत्म हो गया दूसरी पीढ़ी का चल रहा है
2: जी।
1: और दूसरी पीढ़ी में किसान भाइयों ने जो नुकसान न हुआ नुकसान होने से बचाने के लिए किसान भाइयों ने अपनी दवा का इस्तेमाल किया CTPR का इस्तेमाल कर दिया स्प्रे कर लिए तो अब इसकी जो तीसरी पीढ़ी है वो जाकर के जून के तीसरे सप्ताह में अब वो होगी तो अभी जिन किसान भाइयों ने CTPR जब जैसे मान लिया आपका पौधा गन्ना है उसमें कोराजिन की ड्रेंचिंग कर दें 150 ml दवा 400 लीटर पानी और जो ग्रेन्यूल्स हमारा CTPR फटेरा अन्य नामों से भी बाजार में आता है उसको 7.5 किलोग्राम प्रति एकड़ कैसे लगा करके उसे सिंचाई कर दें तो इस रोग से बिल्कुल उसका कीट से रुक हो जाएगा। फिलहाल अभी वातावरण में इस कीट का ज्यादा प्रकोप है नहीं
2: है नहीं है तो आगे भी चर्चा इस पर जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब एक फोन आ गया है। हेलो
3: जी नमस्कार।
2: नमस्कार जी कौन बोल रहे हैं?
3: मैं डीके सिंह फ्रॉम बागपत।
2: सिंह साहब बताएं क्या सवाल है?
3: दो सवाल
1: जी जी
2: सिंह साहब आवाज हाँ जी हाँ बोलिए
3: मेरी आवाज आ रही है?
2: आ रही है।
1: नमस्कार नमस्कार सिंह साहब।
3: नमस्कार मैं अपना परिचय दे दिया मेरा नाम डीके सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत का रहने वाला हूँ।
1: जी जी जी
3: मैं एक इनोवेटिव फार्मर हूँ।
1: राइट सर।
3: तो दवाई कौन सी देनी है लगभग लगभग मेरा सवाल पहले वाले सवाल से ही मिलता जुलता है।
1: जी जी
3: अर्ली सूट बोरर के लिए उसकी रोकथाम के लिए हमें इंसेक्टिसाइड देने की सबसे इफेक्टिव विधि सबसे असरदार तरीका क्या होना चाहिए जो इमीडिएटली उसको रोक दे।
1: बहुत अच्छा सवाल आपने किया सिंह साहब।
3: अगला भी अच्छा ही आएगा।
1: देखिए ऐसा है सबसे पहले जब ये शुष्क वातावरण में अर्ली सूट बोरर आता है तो उसमें हमारा एक जो है बिना दवाई का बिना रासायनिक उपचार करने के लिए हमें यह है कि हमें अपने खेत की सिंचाई भरपूर मात्रा में करके उसको छोड़ देना चाहिए। तो जब अगर आप मेन मिलान करके उसको बढ़िया तरह से उसकी सिंचाई कर देंगे तो उससे कंट्रोल हो जाएगा।
3: दूसरा फिर भी अगर थोड़ा
1: असर है तो उसके लिए आप दवा नोट कर लें। इसमें
3: दवा नहीं पूछ रहा मैं, मेथोडोलॉजी
2: जी पूछ रहा हूँ। कौन सी मेथोडोलॉजी जिसपे असर ज्यादा हो?
3: नहीं, वो मेथोडोलॉजी बताए, वो तरीका बताए।
1: देखिए
3: इमीडिएटली इफेक्ट
1: तो एक तो ये है कि जैसे मान लिया आप अगर मान लिया 1% 2% खेत में आपके इंसेक्ट का अटैक आपको नजर आ रहा है,
3: हाँ बिल्कुल,
1: तो उसको आप रिमूव करा दें,
3: ठीक है,
1: जिससे आगे का संक्रमण जो है वहां पर रुक जाए,
3: ठीक है,
1: एक सिंचाई कर दें,
3: ठीक है। एक तो यहां तक मैं सहमत हूँ, एक सलाह मशवरा करना है
1: जी जी।
3: अगर हम मान लिया जो हमारे कलम्स हैं, मान लिया पूरे खेत में 20 कलम के ऊपर ये मुझे असर दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं उस जो है होल बना के किसी हैक से होल बना करके वहां दवाई इंजेक्ट कर दूं रूट जोन में ही,
1: हाँ।
3: वहां जैसे मेरे पास एक स्प्रे बोतल है, उसमें मेरे पास इंसेक्टिसाइड है और एक हाथ में मेरे एक हैक है, हैक का मतलब है जो रूट जोन में होल बनाएगा पौधे की बराबर में, वही दवाई को वही मार दूं रूट जोन में ही,
1: बिल्कुल कंट्रोल होगा। और दूसरी एक बात और भी
3: नहीं, ये मेथोडोलॉजी कैसी रहेगी?
1: बहुत बढ़िया।
3: एक पौधे के साथ 3-4 होल बनाए और एक हाथ में स्प्रे बोतल है, बस वही इंजेक्ट कर दिया,
1: बिल्कुल इंजेक्ट कर सकते हैं उसे, बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी साथ एक और है सिंह, अगर आप देखेंगे तो मान लिया अगर हमारी संख्या कम है,
3: हाँ,
1: तो उस पौधे को नीचे से हम रूट से भी उसको काट देंगे तो उसमें हमारी फुटेर आ जाएगी,
3: हाँ आ जाएगी, हाँ, वो तो एक मैकेनाइज तरीका है ही, है ना, उसे काटने का वो तो एक कॉमन प्रैक्टिस है ही, लेकिन स्टार्टिंग पे अगर मैं एक जागरूक किसान हूँ, अवेयर किसान हूँ, तो मैं ऐसे भी
2: जी जी। सिंह साहब एक दूसरा सवाल आप कह रहे थे?
3: दूसरा सवाल ये है मेरा तो बोरस से रिलेटेड
1: जी।
3: किसान की भाषा में बोलूंगा, जिसे गन्ने की गोब कहते हैं, इंग्लिश में कैनोपी बोलते हैं,
1: हाँ।
3: कैनोपी से ही बहुत क्लियरिटी नहीं आती, मैं गोब कह देता हूँ,
1: उसका
3: मतलब है कि वो भाग जहाँ से दवाई पौधे के तने में जा सकती है
1: जी जी।
3: अगर अर्ली टॉप बोरर हो या टॉप बोरर को रोकने के लिए अगर वहां भी दवाई इंजेक्ट कर दी जाए, जो हमारी सफेद गिदार है जो तने के ऊपरी भाग पे ही बैठी है, अगर वही दवाई को इंजेक्ट कर दूं मैं गोब में, पत्ती पकड़ के और गोब का मुंह खोले और वही दवाई इंजेक्ट कर दूं, वह सुंडी कितनी जल्दी मर जाएगी?
1: देखिए
3: मेथोडोलॉजी कैसी रहेगी?
1: ऐसा ना, मेथोडोलॉजी तो कोई दिक्कत नहीं है, किसान तो अपना स्प्रे भी कर रहे हैं, लेकिन
3: स्प्रे इतना जल्दी नहीं पहुंचेगा गोब में, मैं सीधा ही गोब में दे रहा, नस में इंजेक्शन लगा रहा, टेबलेट नहीं दे रहा मैं।
1: नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो रिसर्च चल रही है ना, जो CTPR है सिंह साहब, अभी किसान इतना सक्षम है उसमें लगाने में, जो उसका मेथड है और जो उसका इजी गोइंग प्रोग्राम है उसमें CTPR, सुनो मेरी बात, ऐसा अगर आप व्यवसायिक रूप से इस काम को करेंगे ना, तो उसमें CTPR मान लिया आपका प्लांट केन है, रैकून की जो क्रॉप है उसमें थोड़ी दिक्कत आती है किसान को, जो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वो कोई गलत नहीं है, उस पर रिजल्ट आएगा पॉजिटिव, लेकिन व्यावहारिक वो देखना ये पड़ेगा कि कितना व्यावहारिक है सिंह साहब,
3: वाइबल है ये तो, वाइबल
1: वाइबल है, हाँ, तो
3: स्प्रे बोतल है, एक हाथ से पौधे की छोटी पकड़ी और गोब में ही मार दिया।
1: मेरी बात एक मेरे सवाल सुन लीजिए इसका,
3: हाँ।
1: इसके बहुत सारे मेथड है टॉप बोर को कंट्रोल करने के लिए सिंह साहब,
3: यू कैसा है जो मैंने,
1: ये भी आपका बढ़िया है, उसका एक पार्ट है, जमीन टैब हम लगाते हैं उसमें हमारी कितनी पड़ती है सुन लीजिए, और अगर हम सूट कटिंग अगर जमीन से काट के देते थे उससे हमारे पे रिजल्ट आते हैं, तो मैकेनिकल और कहने में रासायनिक जहाँ जैसा वातावरण है, जो आपका भी जो पार्ट है वो भी अच्छा है, कोई उसमें हल नहीं है,
3: दीज आर द इनोवेटिव प्रैक्टिस, ऐसा कर हाँ। कोई मैं करता हूँ ऐसे,
2: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब
1: कर सकते हैं।
3: एक सवाल मेरा तेवतिया जी से है
1: जी।
2: तेवतिया जी अभी 2 मिनट के लिए बाहर हैं जी, फिर आप बताओ सवाल बताओ।
3: मेरा सवाल बोरा मेरा वैसे बहुत प्रैक्टिकल और कीमती है, सवाल ये है मेरा
2: जी
3: कि गन्ने में हमने अर्थिंग अप कर दी, 1-1 फीट मिट्टी चढ़ा दी गन्ने को गिरने से बचाने के लिए
1: जी जी,
3: अच्छी टिलरिंग लेने के लिए, अब गन्ने की हार्वेस्टिंग का समय आया कटाई का,
1: राइट,
3: जब हम गन्ने को काटते हैं तो मेरा सवाल यहाँ से शुरू होता है कि गन्ने का कितने इंच भाग मिट्टी में रह जाता है लगभग?
1: चलो आप डॉक्टर तेवतिया से पूछ रहे हो तो सवाल उसे करना,
2: मैं आने दो उनको,
3: ये सवाल तड़काने का नहीं है, तो डॉक्टर तेवतिया को बुला लो, मुझे इसका उत्तर चाहिए।
1: देखिए ऐसा है,
3: उन्हें आवाज लगा लो या रफली सा आइडिया दे।
1: ऐसा रफली आइडिया ऐसा है।

0: मेरी बात सुन लीजिए, जैसा आपका सवाल है, अगर आप जो है कटाई का मेथड जो है, जैसे मान लिया आपने अर्थिंग कर दी गन्ने में, आपका सवाल दोबारा थोड़ा दोहराए, आप गन्ने की हार्वेस्टिंग के नीचे का पार्ट पूछना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं?
1: नीचे का पार्ट ही पूछ रहे थे जी, कितना हिस्सा बच जाएगा।
0: देखिए, अगर आप इसके जो मैकेनिकल जो वो है आपकी बलकटी काटने वाली, इसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आपका हथियार बलकटी जिसे हम बोल देते हैं काटने वाला
1: जी,
0: वो जमीन से काट के चलता है, तो उसमें तो बहुत 3-4 इंच नीचे का पार्ट रह जाता है, लेकिन अगर आप अगर सेंट्रल यूपी में इधर जाएंगे तो वो पार्ट उसका काटने वाला जो है वो तिरछा नहीं होता, उसमें पार्ट ऊपर काफी छोड़ देते हैं, ऊंची कटाई करते हैं
1: जी
0: सिंह साहब।
1: तो धन्यवाद डीपी सिंह जी आपका फोन करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, एक हम कीट की बात कर रहे थे और सिंह साहब भी कीट पे ही बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि जो है एक कीट तो ये बताया आपने, और कौन कौन से हैं जो प्रभावित करते हैं?
0: देखिए, अभी एक कीट जो है जो प्रैक्टिकली जैसे मौसम शुष्क होता है तो एक कीट होता है हमारा, उसको कहते हैं ब्लैक बग, काला चिट्टा
1: जी।
0: वो क्या होता है, गन्ने की पेड़ी की फसल में उसके लक्षण आप देखेंगे तो गन्ना के अंदर ऊपर से गोभ में घुस जाता है वो, और गन्ना जो है पीला पीला पूरा खेत में पीले पत्तियां जो है उसकी पीली हो जाती हैं। तो उसके नियंत्रण के लिए उसके दो तरीके हैं, एक तो नेचुरल तरीका है कि अगर मान लिया हैवी रेन हो जाती है तो वो गन्ने का कीट स्वतः खत्म हो जाता है, अगर बारिश नहीं होती है तो उसके लिए 2-3 तरह की दवा है, क्लोरोपाइरोफॉस 20% ईसी आप 500 ml दवा और 150 से 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ उसका स्प्रे कर देते हैं, उससे खत्म हो जाता है
1: जी।
0: इसके अलावा वो दवा उपलब्ध ना हो तो प्रोफेनोकोस साइपरमेथ्रिन, वो 400 से 500 ml दवा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे खत्म हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने एक पहचान बताई कि पीड़े पीड़े हो जाते हैं
0: जी जी जी,
1: तो पीले पीले तो मेरे ख्याल से बाकी रोग वगैरह उसी
0: नहीं, देखिए ऐसा है वो रस चूसता है कीट, सकिंग पेस्ट है, तो जब रस चूसता है तो उसमें लक्षण अगर दिखाते उसकी गोब में थोड़ा सा देख लें वो नजर आ जाता है,
1: नजर आ जाता है। तो जैसे अगर लक्षण दिखाई दे तो गोब में देख लें, अगर कीट है तो फिर वो कीट वाली दवा
0: उसका
1: आपने बताई।
0: हाँ जी
1: जी जी जी। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो है रोग भी गन्ने की फसल में आते हैं, तो कौन कौन से रोग इस समय?
0: देखिए, सबसे बड़ा जैसे अभी अमरोहा से और मुरादाबाद की साइड से फोन आया था एक किसान भाई का, तो अभी जो हमारे पास एक बहुत सारे
1: एक फोन आ गया। डॉक्टर साहब पहले फोन लेते हैं फिर इस पर चर्चा करेंगे। हेलो हेलो
2: जी, डॉक्टर सिरोही
0: जी सर,
2: फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़े से पत्ते खोल देता हूँ अपने।
0: खोलो जी खोलो।
2: मैं
0: जी जी
2: सभी इनोवेशन सभी नवाचार किए हैं
1: जी, बताएं
2: जो भी आप मुंह से निकालेंगे वो सब मशीनों का विकास इनोवेशन नवाचार मैंने कर दिया है
0: जी जी जी।
2: गन्ने की हार्वेस्टिंग हो, गन्ने की लोडिंग हो, गन्ने की बंधाई हो, सब मशीनें मैंने 35 नवाचार गन्ने की खेती में है
1: जी।
2: मतलब इंटर कल्चरल ऑपरेशन और फील्ड प्रैक्टिस के लिए जो मैकेनाइजेशन चाहिए, आई हैव इनोवेटेड ईच एंड एवरीथिंग
1: जी। गुड,
0: यस, बहुत बढ़िया
2: है ना जी। आप है ना, वो सब मैंने कर दिया है और आई एम द ओनली पर्सन इन इंडिया, ये भी बता देता हूँ कि भारत में अकेला व्यक्ति हूँ
0: जी जी।
2: और मशीनें भी ऐसी हैं कि जिनके चलाने का कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है, जिसमें कोई फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है।
1: बहुत बढ़िया।
2: मान लिया मेरी मशीन 1 घंटे में 50 क्विंटल गन्ना छील के दे दे, गन्ना भी काटे, गोला भी काटे, पत्ती भी उतारे, और जिसमें कोई डीजल और पेट्रोल का खर्चा ना हो, तो कैसी
1: सिंह साहब, बहुत ही बढ़िया
0: बढ़िया।
2: इन चीजों का मैं आपकी नॉलेज के लिए डाल रहा हूँ, क्योंकि आप गन्ने की बेल्ट में बैठे हैं, चारों तरफ 100% गन्ने का किसान है
0: जी जी जी।
2: और गन्ने में जो बर्निंग इशू है किसानों के सामने इस समय ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको मैंने एड्रेस किया है।
0: नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका,
2: ठीक है
0: जी जी।
2: जो कहीं नहीं हुए सभी जगह सबको मैंने एड्रेस किया है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये सारी बात आपकी जो है सीधे किसानों तक पहुंच रही है, और हम चाहते हैं कि किसान ज्यादा से ज्यादा आपसे जुड़े, इसका लाभ उठाएं, और इस तरह के किसानों की जरूरत है देश को।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जो इस तरह के नवाचार
0: इनोवेटिव
1: किसानों की जरूरत है। तो सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए, क्योंकि एक और हमारे किसान लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं जी। तो फोन शायद कट गया डॉक्टर साहब, तो हम बात कर रहे थे रोगों की।
0: हाँ, रोगों में जैसा परासर जी आपने सवाल किया और बहुत अच्छा सवाल है, इसमें खास तौर से एक जो सबसे खतरनाक रोग गन्ने में आता है रेड रॉट
1: जी,
0: फंगल डिजीज है।

0: से आता है,
1: जी
0: और जो हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में दो तीन स्टेटों में हमारी पेटेंट वैरायटी CO0238 थी।
1: जी
0: इस वैरायटी में से इसकी शुरुआत
1: हुई है।
0: बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से हुई,
1: जी
0: वाटर
1: जी
0: लॉगिंग एरिया से,
1: जी
0: और
1: जी
0: धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जा रहा है। अभी पश्चिम के कुछ जिले बचे हैं जहां पर इसका संक्रमण कम है। तो इसके लिए सबसे मैं किसान भाइयों को अवगत कराऊंगा कि आज के समय में अपने इस रेड रोट को दूसरी भी किसी किस्मों में ना आए, सबसे पहले अपने बीज का उपचार करें,
1: जी
0: और बीज के उपचार के साथ साथ जो है वो अपना भूमि का भी उपचार करें।
1: जी
0: तो बीज जैसे आप थायपोटिन मिथाइल होती है 1 से 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, 100 ग्राम दवा, 100 से 150 ग्राम दवा और 100 लीटर पानी में आप
1: पानी
0: अपने गन्ने के सेटों को डुबाएं
1: जी
0: और उससे उपचारित करके उसे बोएं। साथ ही साथ जो हमारा ट्राइकोडर्मा होता है उसकी दो तरह का आता है वो, एक आता है आपका पाउडर फॉर्म में और एक आता है लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में वो 1 एकड़ में 2 लीटर आपका लगेगा और वो 4 से 5 kg। उसको गोबर की खाद में 1 हफ्ता पहले, बुआई से पहले 2 कुंटल या 1.5 कुंटल गोबर की खाद में सड़ा के रख दें 1 हफ्ते के लिए, पानी छिड़क दे छाया में,
1: जी
0: और खेत की अंतिम जुताई के टाइम अपने
1: छिड़क
0: खेत
1: देते
0: में
1: हैं तो
0: उसको
1: मिला
0: छिड़क
1: दें
0: दें।
1: इसका जो।
0: तो उसके उपचार करने से इस रोग में काफी सफलता मिलती है।
1: एक फोन आ गया डॉक्टर साहब। हेलो हेलो
2: हेलो,
1: नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी। नरेश जी ठीक है?
1: बहुत बढ़िया जी, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं ठाकुर अवल सिंह आर्य शामली से बोल रहा जी।
1: जी डॉक्टर साहब बताएं क्या सवाल है।
2: जी हमारे डॉक्टर साहब को भी नमस्ते।
0: नमस्कार जी, नमस्कार सिंह साहब,
2: हाँ जी,
0: कैसे हैं साहब?
2: मेरा सवाल ये जी, मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक है?
0: हाँ बहुत बढ़िया साहब, बताएं साहब।
2: हाँ जी, मेरा सवाल ये है, अभी वो उसमें वो तो लेट वो बात, हमने जो गन्ना बोया था उसमें पहले से जो डॉक्टर लोग बताते आए थे कि उसमें दो तरीके थे खाद डालने के, एक तो ये था कि उसको हम बुआई के समय गन्ना बिजाई से पहले डाल दें, लेकिन हमने वो डाल दिया जब हमने कोड बनाए और हमने कांची डाल ली उस पर डाल दिया, तो उसके अंदर जमाव कम हुआ।
0: बिल्कुल ठीक सवाल आपने किया है, बहुत मैं इसके ऊपर प्रकाश डालूंगा, आप अपना और सवाल आगे करें।
2: जी मेरा दूसरा ये है कि हम लोग जो गन्ने के अंदर खाद डालते हैं ये ऐसा समझ लीजिए कि मार्च के बाद, तो यहाँ किसान लोग 70% ऐसे हैं जो गन्ने के अंदर खाद जून में जाकर डालते हैं, वो पहले डालते नहीं, उसकी व्यवस्था पर आप बताएं।
0: देखिए आपके दोनों सवाल बहुत ही अच्छे हैं। पहले सवाल का तो यह है कि आपने खुद ही उसका रिजल्ट भी बता दिया। हम किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, आप अपनी खेती गन्ने के अलावा आपने अपनी गेहूं की भी खेती करी होगी, दूसरी भी फसलें आपने लगाई होंगी। सिद्धांत ये था कि हमेशा खाद जो है हमारा नीचे होना चाहिए, बीज ऊपर होना चाहिए। और एक सिस्टम अब से 30 से 35 साल पुराना था, जब हमारे हलों से खेती होती थी तो खाद डालने वाला आदमी आगे खाद डालता था और पीछे से बीज डालता था। उसी प्रकार इसमें जैसा आपने अपने उत्तर में ही खुद उसका जवाब दे दिया, अगर हम कोई फर्टिलाइजर, अगर बर्ड जो हमारी आंख है ना गन्ने की, अगर हम पेड़ा पहले डाल देंगे उसके ऊपर खाद डालेंगे तो उसके पेड़े पर उसके जर्मिनेशन को साइड इफेक्ट करेगी। तो उसका कायदा ये है सिंह साहब कि पहले हम उसमें खूंड में जो है खाद डाल लें, खासतौर से जैसे DAP या NPK हम लगा रहे हैं या पोटास खाद बुआई के समय नीचे लगा रहे हैं, और उसके बाद जो है हम अपना पेंडा उपचारित करके बुआ में बोना चाहिए।
1: जी तो ये
0: पहला सवाल तो आपने ये बहुत अच्छा किया है और ये सभी किसान भाई जो भी सुन रहे हैं। दूसरा एक सवाल साथ साथ ही आता है कि पहले क्वेश्चन भी किसी किसान भाई ने कहा कि यूरिया का तो इस्तेमाल है, वो सिंचाई के बाद यूरिया लगाए तो उसकी मात्रा का उपयोग जो है पौधे को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा।
1: तो ठाकुर साहब ये जो डॉक्टर साहब ने बताया आपको, तो आप इसी तरह से जो है आप करें ताकि आपको गन्ने की फसल से अधिक पैदावार मिल सके। डॉक्टर साहब और भी चर्चा करने का मन था, हमारे बहुत सारे किसान भाई भी लाइन में थे अभी, लेकिन हम उनसे माफी चाहते हैं, अगले कार्यक्रम में हम उनसे फिर जुड़ेंगे। आप कार्यक्रम में आए, बहुत सारे किसानों की जो जिज्ञासाएं थी उनको शांत किया, परेशानियों को दूर किया, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: धन्यवाद।
3: किसान भाइयों

दे आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद। मुख्यों सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ।

0: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।
1: आप सुन रहे थे हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम, जिसका विषय था गन्ना फसल में कीट और रोग नियंत्रण।
2: और आज के हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर DS सिरोही और डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया। और इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होता है। और सबसे पहले भी बता दें कि हमारे कार्यक्रम के जो प्रस्तुतकर्ता है वो है तुषार पारा साहब, और जो हमारे कार्यक्रम संयोजक है शिव नंदन लाल। तो इसी के साथ आज कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर सम्पन्न होता है। सभी सुनने वाले हमारे किसान भाइयों बहनों को हमारा राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर।

काल ये गजल जा रही है दूर तलक, जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं इस वक्त ये कार्यक्रम। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।

मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। एक खूबसूरत सी गजल के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, लेकिन आपको जाना कहीं नहीं है, जो रहना हमारे साथ, यानी आकाशवाणी दिल्ली के प्रेस चैनल के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे गजलों का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के सेवाओं की खरीद से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ाई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुराड़ी स्थित परिवहन विभाग के विभिन्न केंद्रों का औचक निरीक्षण कर बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया 6 मई से राजधानी में संचालित मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट के माध्यम से अब तक 4 लाख से अधिक लोगों को राहत पहुंचाई गई। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली के सेवाओं की खरीद से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति की अध्यक्ष आवश्यकतानुसार अन्य कार्यालयों के अधिकारियों की सहायता ले सकती हैं। समिति को सचिवालय सहायता क्षमता निर्माण आयोग द्वारा प्रदान की जाएगी। सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। सीबीएसई ने कहा है कि विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया के आधार पर प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाया गया है। साथ ही सत्र की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है ताकि विद्यार्थियों के लिए प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और सुगम हो सके। बोर्ड ने बताया कि पोर्टल की सेवा में व्यवधान डालने के लिए 2 मिनट के अंदर लगभग 15 लाख आवेदन भेजे गए। बोर्ड ने बताया कि सिस्टम पर उपलब्ध फाइलों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। सीबीएसई ने घोषणा की है कि 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई प्रति में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन करने का पोर्टल शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। विद्यार्थियों को अपने आधार नंबर का उपयोग करके सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। बोर्ड ने कहा कि शुल्क भुगतान सहित पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से सम्पन्न की जाएगी। उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन का शुल्क प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रूपए है, जबकि उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का शुल्क प्रति प्रश्न 25 रूपए होगा। प्रादेशिक समाचार के लिए प्रियंका अरोड़ा। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत

0: तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। कल भौतिकी व्याख्याता मनीषा संजय हवलदार, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ मनोज शिरूरे और भौतिकी के शिक्षक तेजस हर्षद कुमार शाह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। सीबीआई ने अब तक इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले महीने नीट परीक्षा के पेपर लीक होने के आरोपों के बीच एनटीए ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री शोध पीठ योजना 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस प्रमुख राष्ट्रीय पहल का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों से भारतीय मूल के प्रतिभाशाली अनुसंधानकर्ताओं, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और पेशेवरों को देशभर के प्रमुख सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान केंद्रों की ओर आकर्षित करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज बुराड़ी स्थित परिवहन विभाग के विभिन्न केंद्रों का व्यापक निरीक्षण कर नागरिक सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और सेवा गुणवत्ता का जायजा लिया। इस दौरान श्रीमती रेखा गुप्ता ने निर्माणाधीन स्वचालित परीक्षण स्टेशन, जिला परिवहन कार्यालय, वाहन निरीक्षण इकाई और वाहन प्रशिक्षण संस्थान का दौरा किया।
1: मुख्यमंत्री ने सबसे पहले निर्माणाधीन स्वचालित परीक्षण स्टेशन परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजना के डिजाइन, क्षमता, जल निकासी व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा कर अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। वहीं डीटीओ कार्यालय के निरीक्षण के दौरान श्रीमती गुप्ता ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी नागरिक को अनावश्यक रूप से भवन के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य न किया जाए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त क्षमता वाला आधुनिक प्रतीक्षालय विकसित किया जाए जहां समुचित सुविधा उपलब्ध हो। उन्होंने परिवहन क्षेत्र में व्यापक सुधारों के लिए दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि पिछले महीने की 6 तारीख से राजधानी में संचालित मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट के माध्यम से अब तक 4 लाख से अधिक लोगों को राहत पहुंचाई गई है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया कि इस दौरान 1 लाख से अधिक लीटर पेयजल वितरित किया गया, साथ ही 2 लाख से अधिक ओआरएस पैकेट, 67 से अधिक गमछे और 49 से अधिक कैप लोगों को उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लोगों को तेज धूप से बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन और प्रमुख बाजारों में अस्थायी शेड स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मध्य जिले में इन शेड के माध्यम से अब तक 5000 से अधिक लोगों को लाभ मिला है। पश्चिम जिले में 920 लोगों को लाभ मिला। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की है कि वे हीट वेव से बचाव संबंधी सभी सावधानियों का पालन करें। दिल्ली नगर निगम ने आज ड्रोन आधारित भूस्थानिक सर्वेक्षण और डिजिटल ट्विन पहल के पायलट प्रोजेक्ट के लिए 4 एजेंसियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। निगम ने बताया कि इन पायलट परियोजनाओं के अंतर्गत ड्रोन आधारित हवाई सर्वेक्षण, लिडार मैपिंग, 3D सिटी मॉडलिंग और आधुनिक डेटा विश्लेषण का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पहल से निगम को संपत्ति कर प्रशासन को मजबूत करने, शहरी नियोजन को बेहतर बनाने और निगम प्रशासन के लिए एक मजबूत भूस्थानिक डेटाबेस तैयार करने में मदद मिलेगी। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खेवार ने आज सिटी एसपी जोन के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर जल भराव की रोकथाम और चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान श्री खेवार ने किशनगंज स्थित रेलवे अंडरब्रिज का दौरा कर जल भराव की संभावित समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे प्रबंधों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एहतियातन पंपों की पर्याप्त व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित की जाए और मॉनसून प्रारंभ होने से पूर्व उन्हें परिचालन योग्य बनाया जाए। इससे वर्षा के दौरान जल निकासी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने राजधानी के जल भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए जल वितरण व्यवस्था में व्यापक सुधारों की शुरुआत की है। राजधानी में आयोजित

0: एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि ये सुधार जल के समान वितरण, जल हानि में कमी, पुरानी जल अवसंरचना के आधुनिकीकरण और शोधित जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं। श्री सिंह ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व, जल मांग, उपलब्ध आपूर्ति और मौजूदा अवसंरचना का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा, जिससे किसी भी क्षेत्र को पानी की कमी का सामना न करना पड़े और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग हो। श्री सिंह ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड की 30 वर्ष से अधिक पुरानी पाइपलाइन को बदलने और पूरे वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।
1: ये जो पुरानी लाइनें होती हैं, इनमें लीकेज बहुत होती है। जितना पानी हम अपने WTP से छोड़ते हैं लोगों के लिए, वो पुरानी लाइनें होने की वजह से लीकेज में पानी खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। उन सारी लाइनों को चेंज करने के लिए हमारी योजना बन चुकी है, बहुत सारे हमारे टेंडर हो चुके हैं और बहुत सारे होने वाले हैं।
0: श्री सिंह ने कहा कि सरकार दिल्ली सब ब्रांच नहर को खुली नहर प्रणाली से बंद पाइपलाइन आधारित प्रणाली में बदलने की संभावना पर भी काम कर रही है। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाओ ईंधन बचाओ संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र का निरीक्षण DTC की देवी इलेक्ट्रिक बस से किया। श्री सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान नागरिकों ने सड़क, जलापूर्ति, जल निकासी, स्वच्छता और अन्य विकास कार्यों से संबंधित समस्याएं और सुझाव रखे। श्री सिंह ने सभी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
2: अधिकारी हमारे साथ हैं, सारे कार्यों को नोट कर रहे हैं और कोई भी पैसे की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, खूब हमको पैसा मिल रहा है। हमारे अधिकारी एस्टिमेट बना रहे हैं, कामों को जितना जल्दी हो सके तेजी से करने की कोशिश।
0: दिल्ली कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और रविंदर इंदराज सिंह ने आज बवाना क्षेत्र का दौरा कर क्षेत्र की आधारभूत संरचना और नागरिक सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्र में सड़क, स्वच्छता, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, यातायात प्रबंधन तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की गई। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज रोहिणी क्षेत्र स्थित प्रिंटर अपार्टमेंट हाउसिंग सोसाइटी में एरोबिन का लोकार्पण किया। श्री वाही ने बताया कि एरोबिन की सहायता से एक दिन में 10 किलो गीले कूड़े को बायोकल्चर की सहायता से कंपोस्ट खाद में बदल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस तकनीक के माध्यम से स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण और निस्तारण करने में सहायता मिलेगी। श्री वाही ने हाउसिंग सोसाइटी से अपने प्रांगण में एरोबिन स्थापित करने की मुहिम से जुड़ने का अनुरोध किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसी श्रेणियों में उत्कृष्टता प्रदर्शित की है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि नामांकन केवल awards.gov.in पर स्थित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देशभर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। समारोह के दौरान 34 ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के तहत और 8 पंचायतों को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार श्रेणी के तहत पुरस्कार दिए जाएंगे। विश्व मौसम संगठन ने अल नीनो के बनने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष जून और अगस्त के बीच अल नीनो के प्रभाव की 80% संभावना है और ये नवंबर तक जारी रह सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इसका प्रभाव और भी गंभीर होगा। दिल्ली में आज के सुबह के समय हल्की धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के

और कल राजधानी में बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेनदेन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्त सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के सेवाओं की खरीद से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ाई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुराड़ी स्थित परिवहन विभाग के विभिन्न केंद्रों का औचक निरीक्षण कर बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं की समीक्षा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

कुड़ी मतलब आपकी दोस्त जो आज आई है आपके साथ इस खूबसूरत से सफर में, वो है ज्योति शर्मा। और आप सभी का करती है तहे दिल से स्वागत और खूब सारे प्यारे प्यारे नगमे आकर लेकर आई है। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए।

अनजाने हैं ना आप अनजाने हैं, क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं और हम आपके दोस्त हैं। और शाम कहूं या रात कहूं, ये पहर आ चुका है जब हम अपने तन को भी थोड़ा आराम देना चाहते हैं और मन को भी थोड़ा आराम देना चाहते हैं, और उसमें अगर गीत अच्छे अच्छे प्ले होना तो मजा आ जाता है। अच्छा, कुछ लोग जो है वो जैसे कहते हैं ना आरामदायक संगीत सुनना पसंद करते हैं, और कुछ कहते हैं कि हमारे लिए संगीत होना चाहिए, गीत होना चाहिए कोई भी हो, और अगर वो कहीं अपनी पसंद का गीत निकल आए तो फिर वाह भाई वाह, है ना। चलिए, मुझे लगता है कि जो गीत मैं आपके लेकर आई हूँ उसमें आपकी पसंद का भी कोई गीत निकल आए और आप कहीं वाह भाई वाह। फिलहाल एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत है, और मैं आपको कहूंगी कि हाँ, अपने शरीर अपने मन को थोड़ा विराम दीजिए, क्योंकि अब जो है वो समय आ रहा है कि आप रात्रि की तरफ बढ़ रहे हैं और नींद की आगोश में जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जो कहते हैं ना, मन पे या दिमाग पे जो आपने एक बोझ डाला हुआ है, जो दिन भर की थकान है, उसे उतारना है, तो हमारे साथ आपको यूं ही बने रहना है और ये खूबसूरत से गीत जो है वो सुनते रहना है।

कमाल का गीत और सुपर हिट गीत। और बात करें तो इसमें ना डांस करने का भी बहुत मन करता है। मुझे लगता है किसी ने तो डांस जरूर किया होगा जब सुन रहे होंगे तो मजा आ रहा होगा, और फिर जब मजा आता है ना तो डांस जो है वो अपने आप हो जाता है। फिलहाल और भी बहुत सारे खूबसूरत से गीत हमारे पास है। आप हमारे साथ सुन रहे फिल्म संगीत कार्यक्रम, मैं आज आपके साथ हूँ आपकी दोस्त ज्योति शर्मा, और आपसे ये कहूंगी कि भाग दौड़ वाली जिंदगी में ना कुछ पल अपने लिए और अपने अपनों के लिए जरूर निकालिए, क्योंकि वक्त जो है ना वो बहुत कीमती होता है। ये पल पल के हिसाब से आता है और यूं पल पल के हिसाब से निकल जाता है। अभी लगता है कि अभी बहुत वक्त है, अभी बहुत वक्त है, और धीरे धीरे करके आप देखिए ना जिंदगी के कितने साल जो है वो गुजर गए हैं और कितने बाकी हैं ये तो रब जानता है। लेकिन हाँ, हर पल को ना खुशनुमा बनाने के लिए कोशिश जो है वो ना हमारी ही होनी चाहिए, और हमारी भी कोशिश है कि हम आपके इस खूबसूरत सफर को खुशनुमा बनाएं। और अगला गीत जो है वो हम आपके लिए प्ले करने वाले हैं और वो ये रहा।

काली काली आंखें और गोरे गोरे गाल, वाह क्या तारीफ की है। वैसे दिल खूबसूरत होना तो फिर आंखें चाहे काली हो, नीली हो या भूरी हो, बस दिल खुश हो जाता है सामने वालों की आंखों में आंखें मिलाकर या कहीं नजरें मिलाकर। क्योंकि पहले जब हम किसी से मिलते हैं ना, तो सबसे पहले नजर ही जो है ना वो नजरों से मिलती है, यानी कि हम किसी की आंखों में आंखें डाल कर देखते हैं और फिर हम करते हैं बात शुरू। और वैसे आपको एक पते की बात बता दूं कि अगर आपको ये जज करना है या ये देखना है कि सामने वाला इंसान कितना कॉन्फिडेंट है, कितना उसके दिमाग में कुछ और कुछ नहीं चल रहा है, तो आप उसकी आंखों में देखिए। अगर उसकी आंखें इधर उधर डगमगा रही हैं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, या तो वो शर्माते हैं या फिर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। और जो आपसे नजरों में नजरें डालकर मिला के बात करेगा ना, तो समझिए कि उसकी शख्सियत में ये कहूं कि कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। तो आंखों में आंखें डालकर बात करना ना आपका कॉन्फिडेंस सिखाता है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कोशिश कीजिए और देखिए फिर उसके बाद जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो कितना खूबसूरत होगा। और वैसे अगर आप ये कहें कि कुछ लोग होते हैं ना जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है और कुछ लोगों में नहीं होता है, तो जिन लोगों में नहीं होता है ना उनके लिए मैं एक बात कहूं, हम जब आईने के आगे खड़े होकर अपने आप को देखते हैं ना और थोड़ी सी बात करते हैं खुद से जरा चुपके, ताकि कोई आपको पागल ना करार कर दे। क्यों? क्योंकि आपको अपने लिए खुद से ही कहते हैं ना स्टेप उठाना पड़ता है, खुद से ही कोशिश करनी पड़ती है कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सके, आप अपने अंदर वो एक बात ला सके जो आपको सबसे अलग करती हो, क्योंकि आप सबसे अलग हैं। लेकिन हाँ, कई बार हम कॉन्फिडेंस की कमी से अपने आप को कम महसूस करते हैं, तो उस कमी को दूर करने के लिए आपको आईने के सामने खड़े होकर कुछ देर बात करनी चाहिए और फिर देखिए उसका असर आप की जो पर्सनालिटी है वो कैसे चेंज होती है। चलिए आप कोशिश कीजिएगा, फिलहाल मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सुनाऊं ये अगला गीत।

मस्त मस्त गाने सुन रहे हैं आप आज फिल्म संगीत कार्यक्रम में। आज आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति शर्मा और हम बात कर रहे थे कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की बात। तो वो हमें कहीं से अगर कुछ सीखने को मिलता है तो जरूर सीखना चाहिए, लेकिन हाँ कोशिश जो है वो ज्यादा खुद से करनी है और ये कोशिश जरूर करनी है कि कुछ भी जो कमियां हमें खुद से नजर आती है उनको हमें सबसे पहले दूर करना है। और अगर आपका कोई साथी आपको बताता है कि यहाँ ये बदलाव किया जाए या यहाँ ऐसा हो सकता है तो वो कोशिश भी जरूर करनी है, क्योंकि कोशिश करते करते ना आप अपने आप को एक चमकता सितारा बना सकते हैं, क्योंकि काबिलियत तो हर किसी में होती है, लेकिन हाँ अपनी काबिलियत को पहचानना और उसको तराशना वो सीखने वाली बात होती है। तो चलिए सीखते रहिए, क्योंकि जिंदगी जो है वो सिखाती है, हर पल सिखाती है, और सीखना जो है ना वो एक बहुत अच्छी बात है। अब ये सीखना चाहे आपको किसी बड़े से सीखना हो या किसी छोटे से, क्योंकि छोटे से सीखना भी ना कुछ गलत नहीं होता, क्योंकि कभी कभी कुछ छोटे भी, ये कहूँ हमसे जो उम्र में छोटे हैं, वो भी कुछ ऐसी बात सिखा जाते हैं जो शायद बहुत बड़े या दिग्गज या जो कहें कि जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है वो नहीं सिखा पाते, जो छोटे सिखा पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सीखना आपको कहीं से भी मिलता है तो जरूर सीखिए, क्योंकि जिंदगी को खूबसूरत आपने बनाना है, क्योंकि जिंदगी जो है वो आपकी है, आपको मिली है, तो अपनी जिंदगी को सवारिए, खूबसूरत बनाइए और हमारे साथ खूबसूरत गीतों का आनंद भी लेते रहिए।

घड़ी की सुई जो है वो इशारा कर रही है कि हमें इस कार्यक्रम को यही खत्म करना होगा, लेकिन आपको कहीं जाना नहीं है, जुड़े रहना है हमारे साथ। और मैं ये कहूंगी जाते जाते इस कार्यक्रम को संपन्न करते करते कि आपको हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, कोशिश करते रहना है, क्योंकि कोशिश जो है ना वो रंग जरूर लाती है। और कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने की, साथ ही साथ अपने अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाने की, तो हंसते मुस्कुराते रहिए और इस खूबसूरत गीत को एंजॉय करिए। तन्हा तन्हा आपको नहीं जीना है, आपको सबके साथ जीना है, खुशी और मुस्कुराते हुए जीना है।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसके ठीक बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी व उर्दू में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गई और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश

0: मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉप दिल्ली नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाले सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी

0: डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2 to 3 ब्रांचेस ऑल्सो।
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
4: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमरीका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टोंटन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाबर्स, ये आकाशवाणी है। उर्दू सर्विस की आज की तीसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है। हमारी नशरियात मीडियम वेव से 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर सुन रहे हैं।

एडमिन जी पेश है आज रात 1 बजे तक नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। आपसे कुछ देर बाद 9:20 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी हौसलों पर मबनी प्रोग्राम एक फनकार। आज फनकार है पीनाज मसानी। उसमें मामूल खबरें नशर की जाएंगी 9:45 पर। 9:55 पर आप सुनेंगे हेल्थ टिप्स। रात 10 बजे सिराज जानवर का लिखा ड्रामा कोई बात नहीं पेशकश अनवार खान की है आप सुनेंगे। 10:30 पर फरमाइशी फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम होगा तामले इरशाद। ये प्रोग्राम 11:30 तक जारी रहेगा। दौरान प्रोग्राम रात 11 बजे आप सुनेंगे खबरें बर्री सर्विस से। बजकर 30 मिनट पर सुर्खियों में प्रोग्राम पेश किया जाएगा। 11:45 पर बज में मौसीकी प्रोग्राम होगा। आज बज में मौसीकी प्रोग्राम में आप सुनेंगे अजीत सिंह पिंटाल का गया राग जोग में ख्याल। सुबह 12 बजे आलमी खबरें पेश की जाएंगी।

नमस्कार। दसवें पर क्लासिकी मौसीकी प्रोग्राम के तहत पंडित भजन सपोरी का संतूर पर बजाया राग किरवानी आप सुनेंगे और सदाबहार फिल्मी नगमों का प्रोग्राम आखिर शब 12:30 पर नशर किया जाएगा। 12:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और रात 1 उर्दू सर्विस की आज की तीसरी मजलिस की नशरियात का इख्तिताम होगा। ये था हमारे यहाँ से आज रात 1 तक नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की अशरियात। 9:20 हुई है। जी सामने पेश है अपनी प्रोग्राम एक फनकार। आज की फनकार है पीनास मसानी। इनकी गाई गजलें आप समाप्त करेंगे मुख्तलिफ शराय कराम की।

0: एलसी रोडरेग कल से भारत के चार रोजा दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि उनके हमरा खारजी उमूर, इकतसादी व मालियात, साइंस व टेक्नोलॉजी, मवासलात व इत्तलात और नकल व हमल के महकमों के वजरा भी होंगे। जनाब जायसवाल ने कहा कि मोहतरमा रोडरिग्स अपने दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दोतरफा बातचीत करेंगी। इस बातचीत में तवानाई, तजारत, सरमायाकारी, सेहत की देखभाल, अद्वियात और काबिल तजदीद तवानाई जैसे शोबों में इश्तराक के इम्कान तलाश करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। मरकज ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक जाब्तों में तरमीमात को नोटिफाई कर दिया है। ये तरमीमात 180 दिन तक भारत आ रहे गैर मुल्की अफराद को मुल्क में अपने क्याम में तौसी की ख्वाहिश की सूरत में उन अफराद के वीजा की मुद्दत खत्म होने से पहले रजिस्टर करने को मुमकिन बनाती हैं। वजारत दाखिला ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक तरमीमी जाब्तों 2026 को नोटिफाई किया है, जिसमें इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक जवाबित 2025 के तहत रजिस्ट्रेशन की मुद्दत और अपील मेकानिज्म में अहम तब्दीलियां मुतारफ कराई गई हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने फजा से जमीन पर वार करने वाले अंदरूनी मुल्क तैयार करदा रुद्रम 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम DRDO और भारतीय फजाइया की जानिब से सभी अहम निजाम की सलाहियत को कायम रखते हुए यह आजमाइशी तजुर्बा किया गया। विभाग दिफा ने कहा है कि इन मिसाइल को पहले से तयशुदा निशाने की जानिब दागा गया। चांदीपुर में मरबूत 30 स्टूडेंट पर नस्बशुदा मुख्तलिफ आलात की जानिब से परवाज से मुतालिक डेटा में इस बात की तस्दीक की गई है कि इस आजमाइशी तजुर्बे के सभी मकासद हासिल कर लिए गए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO, भारतीय फजाइया, दिफा से मुतालिक सरकारी कंपनियों, शराकतदारों और सनतकारों को इस उसूलियाबी के लिए मुबारकबाद दी है। प्रसार भारती के डिजिटल प्लेटफार्म वेव्स OTT ने नवंबर 2024 में अपने आगाज के बाद से 2 साल से भी कम वक्त के अंदर 1 करोड़ रजिस्टर्ड सार्फिन से तजावज कर लिया है। इत्तलात नशरियात की वजारत ने कहा है कि संग मील से अंदरूनी मुल्क डिजिटल प्लेटफार्म को ज्यादा से ज्यादा अख्तियार किए जाने की अक्कासी होती है, जो नाजरीन को काबिल भरोसा और मुख्तलिफ तरह का कंटेंट फराहम करता है। 1,40,00,000 से ज्यादा डाउनलोड के साथ अब वेव्स OTT कंटेंट के सिलसिले में शराकतदारी को वसत देने, इलाकाई और तालीमी मवाद को मुस्तहकम करने और मार्च 2027 तक 2 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स के निशाने को हासिल करने पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। यकसा अदायगी के निजाम UPI ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ मालियत के माशी लेन देन का इंदराज किया है। मालियाती खिदमात के महकमे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में डिजिटल अदायगियों को अपनाने पर शहरियों का शुक्रिया अदा किया है। रूस की जानिब से यूक्रेन की राजधानी कीव और दिगर यूक्रेनी शहरों पर रात भर किए गए ड्रोन और मिजाइली हमलों में कम से कम 21 शहरियों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इन हमलों में शहरी बुनियादी ढांचे और तवानाई के मराकज को निशाना बनाया गया है। जनाब ज़ेलेंस्की ने अमरीका से मजीद पैट्रियट फजाई दिफाई मिजाइलें फराहम करने की दरख्वास्त की है। इस दौरान रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि ये हमले यूक्रेन की जानिब से किए गए हमलों के जवाब में किए गए। रूसी वजारत दिफा ने दावा किया कि सभी तयशुदा ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। हुकूमत ने फैसला किया है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI को मरहलावार तरीके से खत्म करके उसकी जगह प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स PPI का जामे निजाम मुतारफ कराया जाए। यह फैसला मुल्क के अफरात जर और कीमतों से मुतालिक इरादोशुमार के निजाम को जदीद बनाने और इसे आलमी बेहतरीन तरीकों से हम आहंग करने के लिए किया गया है। खवातीन क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 बैन अवी मैच आज रात इंग्लैंड के टोंटोन में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरें एक बार और। हुकूमत ने CBSE की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए खिदमात की दस्तियाबी की जांच के सिलसिले में पैनल तश्कील दिया है। उसने लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। भारत ने नेपाल के साथ बाहमी मामलात के हल के लिए किसी तीसरे फरीक की शमूलियत को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने फजा से जमीन पर वार करने वाले अंदरूनी मुल्क तैयार करदा रुद्रम 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफार्म ने अपने आगाज के 2 साल के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा सार्फिन का संग मील पार कर लिया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। ये सामीन, अब हेल्थ टिप्स प्रोग्राम के तहत कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से। आज हम बात करने जा रहे हैं जामुन खाने के फायदे के बारे में। जामुन मैदा, हाथों की जलन, खराश और कमजोरी दूर करने वाली बेमिसाल गजा है। जामुन स्टार्च को एनर्जी में तब्दील करके ब्लड शुगर की सतह को नॉर्मल रखने में मदद करता है। शुगर के मरीजों को रोजाना जामुन खाना चाहिए। भूख बढ़ाता है और सफर अगर जोर तोड़कर मेवे को ताकत देता है और खाने को हजम करता है। जामुन में प्यास की शिद्दत और खून की गर्मी कम करने की भी तासीर होती है। डायबिटीज यानी डायबिटिक के मरीजों के लिए जामुन का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। ये खून में शक्कर की मकदार को बढ़ने नहीं देता। बढ़ी हुई तिल्ली को कम करने और जिगर की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। नया खून भी पैदा करता है जामुन। गर्मी से निजात का बेहतरीन जरिया है, लेकिन जामुन खाने के बाद पानी पीने से बचना चाहिए, उसका परहेज करना चाहिए और पेशाब की जाती को कम करता है। मसाने की कमजोरी को भी दूर करता है। दांतों की सेहत के लिए भी मुफीद फल है। जामुन की गुठलियां सुखाकर अगर पीस कर रख लिया जाए और रोजाना 30 माशा पानी से खा लिया जाए तो तकरीबन शुगर का खात्मा हो जाएगा। कमर और पैरों के दर्द से निजात के लिए जामुन गुठली समेत पेस्ट बनाकर खाने की कोशिश की जाए। गिरते हुए बालों को रोकने में काफी मददगार साबित होता है। बढ़ी हुई तिल्ली के लिए खाली जामुन का सिरका या जामुन का शरबत बनाकर पीना भी बेहद मुफीद है। जामुन की छाल का जोशादा साल और पेशिश में फायदा देता है। जामुन की छाल को पानी में पकाकर गरारे और कुल्लियां करने से फूले हुए मसूड़ों और गले में जो उसका मसला है वो हल हो जाता है। जिनका मैदा कमजोर हो उनके लिए जामुन और जामुन का सिरका बेहतरीन दवा का काम करते हैं। आंखों से पानी निकलता हो या मोतिया हो रहा हो तो जामुन की गुठली सुखाकर बारीक पीस लें और सुबह शाम 3-3 माशा सादा पानी के साथ लें। जिन लोगों को रात में बुरे ख्वाब आते हैं उनको जामुन की गुठली का पाउडर सुबह शाम खाना चाहिए। बैठे हुए गले और आवाज के लिए जामुन की गुठलियों को पीसकर छोटी छोटी गुलियां बनाकर रख लें और शहद लगाकर चूस लिया करें। कैसे भी दस्त हो जामुन के दरख्त के ढाई पत्ते जो न ज्यादा सख्त हो न ज्यादा नरम पीसकर थोड़ा सा नमक मिलाकर उसकी गोलियां बना लें और एक गोली सुबह और एक गोली शाम लेने से दस्त में इफाका हो जाता है। जामुन के पत्ते अल्सर में बेहद मुफीद है। जामुन का जूस मुदाफियाती निजाम को फरोग देता है। एनीमिया के शिकार अफराद जामुन जरूर खाया करें। 100 ग्राम जामुन में 55 मिलीग्राम पोटेशियम होता है जो दिल के मरीजों के लिए काफी अच्छा है। जामुन के रोजाना इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक के खतरे से बचा जा सकता है। जामुन में मौजूद विटामिन सी जिल्द के लिए बेहतरीन है। एक्ने के लिए रोजाना रात को जामुन की गुठली पीसकर दूध में मिलाकर लगाने से एक्ने खत्म हो जाती है। दाग धब्बों से निजात के लिए जामुन की गुठली का पाउडर, लेमू का रस, बेसन, बादाम का तेल और अरके गुलाब चंद कतरे मिलाकर चेहरे पर लगाएं, आराम मिलेगा। और उसको सूखने के बाद धोलिया भी करें। ऑयली स्किन के लिए जामुन का पल्प जो जौ का आटा और अरके गुलाब मिलाकर

0: हाय हाय, अरे भाई आखिर कब तक आएंगे हकीम साहब? यहाँ तो जान पे बनी हुई है।
1: आते हैं, जरा सोचिए, समझिए, गौर कीजिए कि इतनी घबराहट अच्छी नहीं।
0: घबराहट का ही तो मर्ज है भैया, इख्तलाजे कल की मरीजा हूँ।
1: ठीक है, मगर इतनी घबराहट दिखाकर तो आप मुझे भी दिल का मरीज बना देंगी। सोचिए, समझिए, गौर कीजिए।
0: अजी बाहर में गया सोचना समझना और गौर करना। मैं पूछती हूँ वो आएंगे भी या नहीं।
2: अम्मा हाँ यार, मुंशी मुनक्का बुलवाओ ना यार।
1: वो सनान खाने में है, सनान खाने में।
2: तो मियाँ वहाँ से मर्द बनकर कब आप बरामद होंगे?
3: आए, मेरा नुस्खा भी निकलवा लो मुंशी जी, पेट के दर्द से दम निकला जा रहा है।
1: सोचिए, समझिए और गौर कीजिए कि हकीम साहब अभी तक जनाने में आने ही वाले हैं, सबसे काम लीजिए।
4: आएगा आने वाला।
1: ए भैया, कहीं तुम शायर तो नहीं हो? बता देता हूँ, हकीम साहब शायरों को करीब भी फटकने नहीं देते, वो बड़ी नफरत करते हैं।
3: भाई कहीं ऐसा ना हो कि इंतजार ही इंतजार में मेरे सर के बाल सफेद हो जाएं।
1: फिक्र की जरूरत नहीं भैया, उनके पास बहुत ही उम्दा खिजा मौजूद है जो बालों ही को नहीं खाल को भी स्याह कर देता है।
3: चलो ठीक है, मरूफ मर गया। अमा यार बुलवा लो ना।
2: बुलवाओ, इनका चेहरा तो तकलीफ से उन्नाव हुआ जा रहा है मुंशी मुनक्का।
1: जबान संभाल के जनाब, सोचिए समझिए और गौर कीजिए कि आपकी गुफ्तगू दर्जाए तहजीब और पाए शिकाहत से यक्सर गिरी हुई है। वल्ला मुफ्त में आपको मुनक्का नजर आता हूँ, जरा सोचिए।
2: क्या अर्ज करूँ मुंशी जी, आपने मुनक्का देखी है? बिल्कुल काले रंग की और जिसके जिस्म पर लातादा जुर्रियाँ पड़ी होती है। अगर आप आईने में अपना चौकटा देखे है तो बाखुदा जरा सा भी फर्क ना पाए।
1: होने वाला कुफत, आप मरीज हैं या मस्करे?
5: अरे खामोश दोस्तों, देखो शेर याद आ रहा है किसी का, अर्ज किया है।

0: आई है। वाह वाह वाह वाह
1: वाह भैया खामोश, मैंने तुमसे कहा नहीं कि यहाँ शेर मत पढ़ना, हकीम साहब शायरों को पसंद नहीं करते।
0: चलिए थोड़ी दिन लगी ही सही।
2: ज़हर नसीब, हकीम साहब तशरीफ ले आए।
3: वो कौन मुकदमा है जिनका दम निकलने वाला था, वो आ जाए पहले।
4: मैं हूँ हकीम साहब, मैं हूँ। बस क्या बताऊँ, दिल सीने में नहीं समाता, ढोल की तरह बज रहा है, ढोल की तरह।
0: ढोल की तरह से बज रहा है। भाई वाह, क्या बात कही है। इसी पर बाखुदा किसी का एक शेर याद आ गया, खूब कहा है, अर्ज किया है कि

0: दूर तलक दिल की सदा आती है। क्यों हजरत, क्या मैं दरियाफ्त कर सकता हूँ कि आप क्या चीज है?
1: हुजूर, वैसे तो मैं ना चीज हूँ, मगर आज इसको बेदिल मुरादाबादी कहते हैं।

कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मैं जरा आपको नरमी से बता देना चाहता हूँ कि मैं शायरों को पसंद नहीं करता।

0: वाह मेरे बाबा, क्या बात कही है। वाह
1: में तुम बंदी को पसंद नहीं करता। अगर तुम्हें केस पढ़ना है तो कहीं और जाओ, और अगर खुद को दिखाना है तो खामोश बैठ कर अपनी बारी का इंतजार करो।
2: माफी चाहता हूँ हकीम साहब, मैं आखिर में दिखाऊंगा खुद को। आपको अशार पसंद नहीं है तो दिल पर जबर करके बैठा रहूंगा।
1: कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम मुझे अभी दिखा देते तो और बता देते कि तुम्हें क्या मर्ज है तो मेरा काम आसान हो जाता।
3: हाय हाय, अरे मेरे ख्याल से तो इसे बोलने का मर्ज है, मुँह फूले जाता है।
1: कोई बात नहीं, ये मर्ज भी दूर हो जाएगा।
3: मुई जुबान है या रेलगाड़ी फर फर फर फर चले जाती है।
2: देखिए हकीम साहब, आप जो चाहे कहें मगर कोई और।
3: अरे चुप रहो। हाय हाय, मैं मरी जा रही हूँ और तुम लोगों को बहस की पड़ी हुई है।
1: कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बड़ी नहीं, मैं अभी दवा देता हूँ। बच्चा आप घबराए नहीं, आपको कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हैं।
3: वाह हकीम साहब, अगर मैं ठीक होती तो यहाँ आती ही क्यों?
1: बोलिए क्या तकलीफ है आपको?
3: तकलीफ ये है भैया कि मुझे रात को नींद नहीं आती और मैं
2: नुस्खे में एक अलग डोरी जरूर लिख दीजिएगा हकीम साहब।
1: अब तो फिर बोले बाबूदा, तुम जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। लाहौल वाला कुत, अब खामोश रहना समझे।
2: माफी चाहता हूँ, समझ गया।
1: हाँ तो मोहतरमा, आप रातों को जागती रहती हैं, नींद नहीं आती।
3: हाँ मैं शाम से लेकर सुबह तक जागती ही रहती हूँ, आँख ही नहीं लगती।
1: और सुबह होने के बाद आप क्या करती हैं?
3: सुबह होने के बाद तो मैं सो जाती हूँ, शाम तक सोती ही रहती हूँ, और शाम होते ही भैया उठकर बैठ जाती हूँ।
1: कोई बात नहीं, मैं अभी।
2: अजी बात कैसे बने, रात की कसम तो ये दिन में पूरी कर लेती हैं और रात भर मिसले बूम आप तश्वारी करती रहती हैं।
1: मगर नहीं बोले बहुदा, मैंने
2: खांस लीजिए, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा।
1: बोलिए, क्या भी बोलिए।
2: यही कि काश ये मर्ज मुझे लाहक हो जाता, मैं भी अख्तर शुमारी करता, 1000 तारे गिनकर 1 गजल कह डालता। आज करता हूँ।

0: मुझे भी एक नुस्खा सूझ गया है, मैं अब तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दूंगा। कर लो खूब बकवास।
1: और मैं हकीम साहब, मैं क्या करूँ?
0: आप घर जाओ बड़ी दी, दिन भर बाजारों के चक्कर।

0: 太太，你把俺背过，你把俺背过背过。
1: 哎，见了面见了。你还是打麻将了
2: 啊啊啊！都是还不给你的，没有地方给你干活。
1: 哎，吃了我家
2: 的，
1: 哎哎
2: 哎哎哎哎！你干干的，我那眼里瞎了，你眼神都花
1: 了。
2: 哎，
1: 干嘛干活？我这边打一鞋子板了。
0: 哎呀，妈呀，去干干去！
2: 哎，我这个朋友看了把那给他拉好了，我拉好了。
1: 啊，今天我怎么睡觉？
2: 我哎，还得我这个呀？哎，
1: 今天晚上，奶奶刚给你下地。मैं कहता हूँ कि मैं खुद चला जाऊंगा। दो टके के आदमी से धक्का देकर निकलवा रहे हैं।
0: अमान निकला, चलो क्या नाश करके रख दिया।
1: देखिए हकीम साहब, ये शराफा का शेवा नहीं, पछताएंगे आप।
2: तो जाओ ना भाई, चले जाओ। अरे भाई छोड़ दो इन्हें, ये खुद चले जाएंगे।
1: देखिए ना, ये बात हुई। मैं जानता हूँ कि आपका गुस्सा दरअसल मोहब्बत की फरावानी से पैदा हुआ है। आप मुझसे नाराज नहीं है, आपका अंदाज बताता है। देखिए जाते जाते एक विदाई शेर अर्ज करता।

0: Ay,
1: na ingrata, mas angkata ho mai padal ho jaunga.
0: Ay, ay meri nan.
2: देखिए हजरते बेदिलो बेदबा, अगर तुम्हें खुद को दिखाना है तो आराम से बैठो और अपना नंबर आने के बाद दिखाओ। यहाँ और भी मरीज बैठे हुए हैं, वरना कसम है पैदा करने वाले की ना जाने मैं क्या कर बैठूंगा। जरा सोचो, समझो, गौर करो भाई।
0: आप कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय पुड़िया बांधने के, समझे आप। वैसे आपकी धमकी से असर लेते हुए खामोश बैठ जाता हूँ, आप लोग काम जारी रखें।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश करें।
1: आप माकूल आदमी हो कर न जाने शायर कैसे बन गए। बरकुदार बेदनिया बड़ा उमदा नुस्खा जहन में आता है, मगर आपकी बकवास मेरा मतलब है कि बातों भी न सो जाता है। अब अगर इजाजत हो तो मैं अपने मरीज को देख दूं।
0: शौक से बिस्मिल्लाह कीजिए।
1: हाँ मियाँ, आपको क्या तकलीफ है। मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ कि आप जीजीज हो रहे हैं और आपके चेहरे से तकलीफ के आसार नुमाया।
3: जी हाँ, सब तकलीफ है पेट में। आपको याद होगा कि मैं आपका बहुत पुराना मरीज हूँ, कई बार आपको दिखा चुका हूँ।
1: कोई बात नहीं, मुझे याद तो आ गया, मगर ये याद नहीं आ रहा क्या आपको तकलीफ क्या थी।
3: मेरे पेट में पहले भी दर्द होता था और अब भी होता है। मैं मिसल माहिए बेआब करता हूँ।
0: बड़ी शायराना तशबीह दी है भाई, कहीं आप भी तो शायर नहीं है।
3: नहीं, मैं तो पेट के दर्द का शिकार हूँ।
1: कोई बात नहीं।
3: हाँ तो फिर आपने मशवरा दिया था कि मैं अस्पताल में खुद को दिखाऊं।
1: ठीक है।
3: मैंने दिखाया और वहाँ डॉक्टरों ने मेरे पेट का ऑपरेशन कर डाला।
1: कोई बात नहीं, मुझे खूब याद है।
3: आपको ये भी याद होगा कि मेरे पेट में दर्द फिर उठा था, मैं फिर अस्पताल गया था। सर्जन ने मुझे बताया था कि शायद वो अपनी छोटी कैंची मेरे पेट में रखकर भूल गए थे।
0: हकीम साहब, मैं तो खामोश हूँ ना।
1: कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ तो फिर
3: सर्जन ने दोबारा पेट का ऑपरेशन कर डाला था।
0: भाई शाबाश है, आप ही की हिम्मत।
1: अच्छा फिर
3: उसने मेरे पेट का दोबारा ऑपरेशन करके कैंची निकाल ली और टांके लगा दी।
0: अल्हम्दुलिल्लाह,
3: 3 महीने बाद फिर दर्द हुआ।
0: अस्तग़फ़िरुल्लाह,
1: मेरे दिन खराब हो, तुम वादा कर चुके हो।
0: कोई बात नहीं।
3: मैं फिर अस्पताल गया। सदन साहब ने तीसरी मरतबा ऑपरेशन करके मेरे पेट में से अपनी हीरे की अंगूठी निकाल ली और फिर टांके लगा लिए।
0: माशाल्लाह,
1: मुझे याद है, सब याद है। हाँ तो बोलिए, अब क्या बात है।
3: अब तो हकीम साहब, मेरे पेट में से टिक टिक टिक टिक
0: अल्लाह भी बचता है अंदर या नहीं।
1: यार तुम खामोश नहीं रहोगे।
0: लीजिए, बिल्कुल खामोश। मैं मुंह पर हाथ रख लेता।
1: टिक टिक की आवाजें, इसका मतलब तो ये हुआ कि सर्जन इस बार अपनी घड़ी पेट में रखकर भूल गए।
3: जी हाँ, सर्जन यही कहता है। वो कहता है कि मेरी घड़ी कीमती है, चौथी मरतबा ऑपरेशन फिर करना पड़ेगा।
0: तो तुम्हें भी आदत सी हो गई होगी।
1: ठीक है, ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा, अब इसके सिवा चारा ही क्या है।
3: मगर हकीम साहब, आखिर कब तक ये दे सर अपने पेट को चाक करवाता रहूंगा।
1: बात तो ठीक है, मगर कोई बात नहीं, मैं सोच कर बताऊंगा।
3: मगर इतने अर्से में तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। मैं तो चाह रहा था कि आप कोई नुस्खा तजवीज कर दे ताकि घड़ी अंदर ही अंदर घर जाए।
0: अगर आप कोई ऐतराज ना हो तो नुस्खा मैं तजवीज कर दूँ।
1: अमर तुम फिर बोले जाओगे क्या? आदमी हो क्या बकरे, क्या हर दम मैं बकते रहते हो? तुम्हारी इन्हीं बातों से मेरा दौरा में खून शरीर होने लगा है।
0: हकीम साहब, आप नाहक नाराज हो रहे हैं। जनाब, हर इंसान का फर्ज है कि वो दूसरे के काम आए। अपने इसी जज्बे से मजबूर होकर मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ।
3: सुन लीजिए, क्या मशवरा है अंजाम?
2: ये शख्स मशवरा नहीं देगा, वो तो शेर पड़ जाएगा।
0: शेर यार, मुंशी मुनक्का बड़े मौके पर याद दिलाया। अर्ज है कि मशवरा

0: My friend is a medium.
1: चलो मुन्ना चीज और अकीर कमतर का अदना सा मशवरा है हकीम साहब कि आप जब के ये साहब ऑपरेशन के लिए जाएं तो सर्जन से सिर्फ एक बात कहते हैं।
0: कौन सी बात?
1: कि जनाब इस बार ऑपरेशन करके आप पेट में टांके ना लगाएं।
0: तो टांके ना लगा तो
1: फिर उनसे कहना कि इस बार पेट में बटन लगा दे। बटन
0: बटन क्या कह रहे आप?
1: हाँ न जाने फिर कब पेट खोलने की जरूरत पड़ जाए।
2: ये क्या बदतमीजी जी है?
0: आप लोग तो मजाक करते हैं, मैं तो चलता हूँ।
2: अच्छा तो अच्छा चाहे तुमने मेरे कई मरीजों को नाराज करके दे दिया, खुदा के वास्ते तुम बता दोगे क्या चाहते?
1: क्या चाहता हूँ? अजी हुजूर खुद को दिखाना चाहता हूँ।

0: रहा हूँ कि मुझे गुस्सा ना आए और तुम कोशिश कर रहे हो कि शेर पर शेर पकते जाओ। भाई शेर मत पो और अपना हाल बयान करो।
1: हाल यानी हाल दिल। हाल दिल मुझसे न पूछो मेरी नजरें देखो, राज दिल के तो निगाहों से आया होते हैं। राज दिल के तो
0: बस बस भैया जरा सोचिए समझिए गौर कीजिए।
1: अजी राज दिल के तो निगाहों से आया होते हैं।
0: किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गया? देखो भाई चीजी तरह बता दो कि क्या उलझन है, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है?
1: उलझन परेशानी तकलीफ हाय हाय।

0: ay, mi papá. ¿Qué sabrán la salió? De cómo llama aquí en ese mundo. De quién sabe incendio. No jodí ni más, no se fue. इससे पहले कि मुझे अपना ये कल का दौरा पड़े तुम खुदा के वास्ते यहाँ से चले जाओ।
1: देखिए सोचिए समझिए और बात कीजिए कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है, जाइए जाइए अपना काम कीजिए।
2: मुझे यानी बेदिन मुरादाबादी को कोई तकलीफ नहीं है? क्या ये तकलीफ कम है कि मेरे अशआर कोई नहीं सुनता, मेरी गजलें नज़्में और मर्सिये किसी को पसंद नहीं? हाय, अगर कोई मेरा कलाम सुन लेता तो ये नौबत ही क्यों आती? यही है मेरी बीमारी और अपनी इस बीमारी का इलाज मैं अपना कलाम सुनाकर खुद कर रहा हूँ।
1: अरे यार जाओ, तुम्हारी बकबक से हकीम साहब खुद बीमार होने लगे हैं।
2: नहीं जाता, जब मैं बीमार हूँ तो सबको बीमार करके छोड़ूंगा।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बताओ कि तुमने कोई दवा नहीं की थी कभी? गजलें सुनाने से इलाज नहीं होगा, दवा भी करनी पड़ेगी।
2: क्यों नहीं की दवा? एक नहीं सैकड़ों दवाएं की थी। अब किया है शायर ने,

0: ये बकवास नहीं हकीम साहब, इसे शेर कहते हैं शेर।
1: बेगुल मुरादाबादी, मैं पूछता हूँ कि आप अपने होश में तो हैं?
0: होश में? यार मुरादा सुनो,

0: aqui.
1: Ai, safado. Ai, mas é. Mas xixi. Ai, é. Não pode chorar. Não pode chorar. Não pode combinar. Ai, e agora mas a minha mãe tem que cagar. A minha mãe tem que se tornar. Ai, eu não tenho nada.
2: नहीं जाओ आगे वास्ते जाओ क्या जान लेकर ही जाओगे
1: अरे मेरा दिल गया इस बात पर आपने मुझे मार डाला मुझे ये मर
2: गया जाओ इन्हें शायरों से मिल नहीं बोझ है जाओ भाई जाओ
1: निकालो निकालो मुझे ये
0: अरे अरे जाओगे हकीम साहब को पकड़ो मुंशी मुलाकात देखो वो नीचे कर रहे हैं अरे संभालो किसी दूसरे हकीम साहब को मुलाकात दिखाओ
2: के बच्चे तेरे सत्यानाश हकीम साहब बेहोश हो गए वो इस तरह या कल के पहले ही मरीज थे ऊपर से तेरा मुशायरा
0: मगर यार मुलाकात मैंने क्या किया है
2: बखुदा अब मैं छोड़ बैठूंगा निकल यहाँ से निकल
0: अरे भाई धक्के क्यों दे रहे हो जा रहा हूँ
2: अरे अरे कुछ हकीम साहब बेहोश हो गए मोहल्ले वालों अरे कोई है

0: 喂喂喂喂喂
1: 喂喂喂。
2: Samim, Tarım Geçkar Muhammed Rafiki आवाज़ों में सबक फिल्म का गीतों का नाम सुन रहे थे और फरमाइश आप सबकी थी, इस नगमे को कलमबंद किया था प्रेम धवन ने और मौसीकी तरतीब दी थी चित्र गुप्त ने। फरमाइश आप सबकी थी। शास्त्री नगर बीच शहर से किशन सबकाल, आशा सबकाल और विशाल सबकाल ने इस नगमे को सुनना चाहा था। ये फरमाइश अटल बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, गव्य मल्होत्रा और यवतमाल से अनिल उषा ब्रांडे, अनुश्री धनुश्री ब्रांडे, नगर दिल्ली से फरमाइश हमें मौसूल हुई। दिलावर खान हसीना बानो एलिजा नाया आपकी वाणी खाम गांव से अनंत वाड़े, रामेश्वर वाड़े, शुभम साक्षी और अहले खाना, मंगल जनागल राही, रोशनी जनागल, अंकुर जनागल और घर के कुछ और फर्द, चक 5 एमडी पत्रोड़ा से ये फरमाइश हमें इन्होंने इस्तेमाल की थी। और ये फरमाइश और भी है, कुछ हम ही करते हैं और फिर आप कोई और नगमा सुनवाएंगे। समीर ये फरमाइश हमें इस्तेमाल की है सिटी सेंटर अहमदाबाद से कंचन सुनार, कुसुम और सरोज सुनार ने, सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, गांव कुमारेड़ा, सहारनपुर से फरमाइश इस्तेमाल करते हैं। गुजरेंगी भाटापारा से यानी छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और के एक और साथी। फरमाइश कृष्ण पार्क दिल्ली से हमें मौसूल हुई है सुखविंदर सिंह जावड़ा, सिटी दीवाना की, गांव हिपरसोगा, तहसील जिला लातूर से उस्मान शेख, फौजी साहर बानो शेख, करिश्मा शेख, चेवरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह और गणेशपुर एटा उत्तर प्रदेश से शेख शर्मा, परवीन एम फारूक, शेख बेबी मुस्कान और इसके अलावा फरमाइश हमें इरसाल करते हैं किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी, वर्षा सुमन, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रीति मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा की फरमाइश इरसाल हुई। कालका से शिवचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज भी इस नगमे को सुनना चाह रहे थे। अमीर खुसरो रोड गंजड़वा से शमना अनवार, डॉक्टर दबीर हसन, भुवन प्रकाश गौतम भी फरमाइश लेकर हाजिर हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं विजय पाटिल, पद्मा भाई पाटिल, चिरंजीव ज्ञानेश्वर पाटिल और घर के तमाम अफराद हैं। आठगांव तालुका भोकरदन जिला जालना से फरमाइश इरसाल की है इन्होंने और सुनना चाहा है श्री 420 फिल्म का नगमा मनाडे और साथियों का गाया हुआ। इस नगमे को कलमबंद किया शैलेंद्र ने और मौसीकी तरतीब दी है शंकर जयकिशन ने। फरमाइश जालना वालों की थी और इसके अलावा और भी मजीद फरमाइशें हैं तो नाम इस तरह। आनंदराज सागर, तरुलता सागर, चांद्र खेड़ा अहमदाबाद से ये फरमाइश हमें موصول ہوئی ہے. آصف علی خان مسکان آصف صادق علی خان قصبہ اگروال منڈی کٹیری باغپت سے فرمائش ارسال کرتے ہیں. روڈ گنج دوارہ سے نجمہ بیگم ناز، محمد کلیم زخمی، بی بی فاطمہ غازی اور یہ فرمائش ارسال کی ہے ہمیں. استعمال کرتے ہیں ڈیڑھوارہ اتر پردیش کے ماسٹر کلو پرویز بیگم رانا ناز، نواز شیخ اور گھر کے کچھ اور افراد. علی گڑھ ابوالی سے بسنت سنگھ چند، راج کمار، کلدیپ گاندھی، ملا پور داخا سے راجیش جین، بٹو جین، سنجیو جین، گاؤں ڈاگر، نمن آباد، ضلع جیند، ہریانہ سے جسبیر سنگھ، ہروڑا، جتندر کور، گرپریت سنگھ اور دیگر دوست احباب. گرمی سنگھ میتا ساؤتھ ایکسٹینشن سے فرمائش استعمال کرتے ہیں اور یہ فرمائش ہمیں بھیجی ہے

फर्रुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा उत्तर प्रदेश से सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया और शिवा चौरसिया ने फरमाइश भेजने वालों के नाम राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग बठिंडा रोड मंडी डबुवाली से मौसूल हुई है, बूंदी चक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी भी इस नगमे को सुनना चाहते हैं, पूरा जो मस्तानपुरा से अनंत भगत, धर्मा भगत, सुलक्षणा भगत और इनके घर के एक और फर्द, तो ये शामिल आप सबकी पसंद पर यह नगमा आप सबकी खिदमत में।

करना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

आई मीन दूसरा फिल्म का ये दो गाना आप सुन रहे थे गीत हजरत मोहम्मद रफी की आवाजों में। भूमिका साहिर लुधियानवी और मौसीकी तरतीब दी थी सचिन देव बर्मन ने। फरमाइश आप सबकी हमें मौसूल हुई थी। ये फरमाइश टेरो गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा की हमें मौसूल हुई। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर अनिल शर्मा और फरमाइश साल की है गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह, गिल दलजीत सिंह, राजदीप सिंह और दीगर दोस्त अहबाब। फरमाइश साल करते हैं हमें चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। कोलकाता से सुब्रत चौधरी की फरमाइश शामिल हुई है। ये फरमाइश गांव कल्याण मलका जिला बठिंडा से अमृतपाल सिंह, रामगढ़िया, परमिंदर और मनिंदर साथ में एक साथी और हिंद के उन्होंने हमें फरमाइश भेजी है। ये फरमाइश डब्बा बाजार सूरत गुजरात से मोहम्मद बदमिया मुल्ला जी, याकूब मुल्ला जी, जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई भारती देवी, ग्राम उपोष हरपुर मटकली जिला बरेली से शाहर नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद ब्रीसी और दीगर दोस्त अहबाब, आक्रोश नायक भेंडे, मोया भेंडे, शुभम भेंडे, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, निमित आहूजा और ये फरमाइश साल करते हैं गरुड़ जावलका से महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे और मिलिंद सरकटे। फरमाइश साल की है हनुमानगढ़ राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, इमरान खान, इरफान खान ने, मीना राजेश सिंह की रघू गुलाब कॉलोनी सागर मध्य प्रदेश से, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत की शुताशु। ये फरमाइश मोटारा महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, दमाला सुरलकर और ओम कुमार सुरलकर की हमें मौसूल हुई। उत्तर मध्य दिल्ली से कमला रानी गीति का खोरवाल और बोधराज खोरवाल भी फरमाइश लेकर आए हैं। ऐसा मेरा आपको सुनवाते हैं चोरी चोरी फिल्म का दो गाना, आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की, मणिकार हजरत जयपुरी और मौसीकार शंकर जयकिशन। फरमाइश कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, राजू मिखिलानी, बब्बू और डब्बू। फरमाइश उन्होंने हमें भेजी है और सुनना चाह है इस फिल्म का नगमा। ये फरमाइश सहेली रेडियो स्टेशन क्लब खंडवा मध्य प्रदेश से हमीदा बानो, आशा भदौरिया और सईदा बानो। भगत बिल हुबली कर्नाटक से सफी मुल्ला जी, दिस मुल्ला जी और रफीक मुल्ला जी। फिल्म सिटी मुंबई से इकबाल मोगा, अफसरी ए मोगा और अहमद के साथ हैं। ये फरमाइश कहां से आई है? आवास विकास कॉलोनी कासगंज से पवन गौर, तन्मय पूर्वी गौर, सोयश आशीष गौर की। धनौली तेलीवाला से निशा सलमानी, नुशा सलमानी, बीबी आलिया और अयान बाबू के साथ हैं। ये फरमाइश इस साल की है नागचुनोट संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर साथ में कुछ और साथी हैं। भटापार छत्तीसगढ़ से सुमन जोशी और पायल जोशी भी पर फरमाइश इस साल करते हैं। अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले, दिव्यानी और गणेश कामले। फरमाइश महालिंगापुर कर्नाटका से सलमान बरहट्टी, इरफान जुनैद और साथ ही एक और हिंद के जो फरमाइश साल करते हैं। ये फरमाइश हमें भेजते हैं

आप किशोर कुमार को सुन रहे थे, फिल्म थी झुमरू और इस नगमे को कलमबंद किया था मजरूह सुल्तानपुरी ने, मौसीकी तरतीब भी थी किशोर कुमार ने खुद। फरमाइश आप सबकी हमें मौसूल हुई थी। ये ईश्वर कॉलोनी नंगली डेरी ने जब से मैथिली कुमारी, लड्डू कुमारी और टुक टुक ने इस नगमे को सुना चाहा था और इसके अलावा ये फरमाइश हमें इस साल की थी शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा, हर्ष आहूजा ने जिला दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ से फरमाइश इस साल करते हैं। और सामीन छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, फैल शेगांव महाराष्ट्र से मोहम्मद अनीस मोहाल, मोहम्मद दानिश मोहाल, मोहम्मद रिजवान मोहाल की भी फरमाइश शामिल हुई। रुद्र प्रताप गुप्ता और दादा ठाकुर कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता के साथ हैं। राजनगर से ओल्ड लिसनर्स इस फरमाइश को इस साल करते हैं। और सामीन ये फरमाइश है लालगिरी गोस्वामी, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, इनके साथ हेमलता हैं और खुशी गोस्वामी, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, निवान शर्मा, प्रभुदास कोटेजा, जबेन कोटेजा, आशीष कोटेजा इनके साथ हैं। जोशन प्लोट राजकोट से इस नंबर को सुनना चाहते हैं। आनंद जोशी, तनुज जोशी, ध्रुवी जोशी, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा से, भिलाई पुरानी भिलाई 3-14 छत्तीसगढ़ से डॉक्टर मुशारा सिद्दीकी, बेगम हमीदुर सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी, सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, जनेश गुजराती और लड्डू कुमारी, हरियाणा रोहतक से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, सोहिल कांगड़ा। और ये फरमाइश है कल्पना मदन झा, मानव और मयंक की, 27 निर्मला अपार्टमेंट भिलाड़ वापी कुंजी रात से, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, वंश बत्ता साथ में एक और साथी है, मोताला बाजार से बबू ठेकेदार, शेख वजीर, सुहेल शेख। और ये फरमाइश हमें इरसाल करते हैं आतिश रेडियो लिसनर्स क्लब भीषणपुर गिरडी, झारखंड से इम्तियाज इमाम, आतिश ताहिरा परवीन, आतिश डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा, संजीव डाबेराव, डॉक्टर रसिका डाबेराव, डॉक्टर कौस्तुभ डाबेराव विदर्भ आकोट से फरमाइश हमें मौसूल हुई है। फरमाइश साल की है हमें वर्ल्ड टाउन करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा। और फरमाइश साल करते हैं दादाजी धोनी वाले मार खंडवा मध्य प्रदेश से, हसू बाबा मुदफी पवार, सफिया अरहान खोकर ने। तो ये सारे नवाब को सुनवाते हैं। पहचान फिल्म का नवा पहचान फिल्म का नगमा सुनवाते हैं समीन, मुकेश का गाया हुआ, नीरज नगमा निगार है, मौसीकार शंकर जयकिशन। और फरमाइश आप सब की हमें मिली है, नाम इस तरह है, मंचा रेडियो क्लब अकोला से केशव पासपोर, शोभा पासपोर और बेबी वेदही, साथ में और भी कुछ दोस्त है बाबू घर के साथ ही। और इसके अलावा ये फरमाइश हमें इस साल की है
ऊपर कोट मोहल्ला चौखंटी बुलंद शहर से मुसैद अब्बासी ने पुनर्वासी शहनवाज सरफराज अब्बासी ने फरमाइश इस साल करने वालों के नाम और भी हैं जी रजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एम पी शाहजहांपुर से मनमोहन रजावत राज मधु रजावत और राशि रक्षित हैं। कर्नाटक गुलबर्गा से मोहम्मद अबुनुद्दीन मंसार शबीब भट्टी आसिफ इकबाल भी फरमाइश लेकर शामिल हुए हैं। ये फरमाइश हमें

सलाम, क्या मैं आपको सुनाते हैं छाया फिल्म का दो गाना तलत महमूद और लता मंगेशकर का गाया हुआ, नवबनिगार राजेंद्र कृष्ण मौसीकी तरतीब दी है सरिल चौधरी ने और फरमाइश मिली है गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दूती, प्रमोद कुमार दूती, पुष्पेंद्र कुमार दूती की, जॉइंट ऑर्केस्ट्रा रोजेट ऑर्केस्ट्रा विलनेस ऑर्केस्ट्रा जनकपुरी सहारनपुर से, चमनपुरा उदयपुर से सबिया खानम फैलाबानो ऐसा खातून फरमाइश स्वागत है सेक्टर 24 कुंडेश्वर खंडवा से, ये फरमाइश हमें मौसूल हुई है, नाम तो उनके नहीं हमें, योगेश गुजराती जी है और ताजमहल सारी गुलाम साबिर राही मेरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, जयमंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, राशिद असन अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी इनके साथ है और ये फरमाइश संतोष नामदेव सार्थक नामदेव और बघेरा दुर्ग से फरमाइश स्टार करते हैं, इनके साथ हैं समर्थ नामदेव, शाहजी बोर्ड के रंदा बोर्ड के उत्तम जमदाड़े हिंगोली महाराष्ट्र से फरमाइश इन्होंने हमें स्टार की है। अहमद चौक दिल्ली से अजीम उखार महर अजीम निशा अजीम और नासिर शेख नाजिर नासिर साजिद शाहिद फातमा मौलानी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से अस्तुपुरा जिला मऊ से मदर अली अंसारी रजिया बेगम अंसारी मोहम्मद सादिक अंसारी बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर रिजवान परवीन अब्दुल्ला आजाद बुल्डारा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर शशिकला दामोदर सुमेद कुमार दामोदर वेडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटो टोमस पिंकी अरोड़ा और ये फरमाइश हमें इरसाल की है बेगम समीर खान शेख मोहम्मद असीम भाई कामरान खान ने मोहल्ला पठान कुरावली से फरमाइशें और भी हैं और ये फरमाइश हमें राहुल बंसौर समीर बंसौर शरण बंसौर लुमिनी नगर अकोला महाराष्ट्र से इनके साथ एक और साथी हैं इनके घर के दिलीप श्रामिकर श्रामिकर श्रामिकर राहटगांव कैम्प अमरावती महाराष्ट्र से चंद्रनगर सहारनपुर से कौशले जोशी सुरेश जोशी और प्रभा जोशी नजीर भाई मतीन भाई शेख चंद फारूक फुलवाले नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से ये फरमाइश हमें इस साल हुई है और ये फरमाइश है जी रजीब खान जब्बार मोहम्मद अशरफ खान की उदयपुर से। तो नहीं सामने आप सबकी पसंद प्रिय नगमा आप सबकी खिदमत में।

की तश्कील दी है। कमेटी की सरबराही सलाहियत साजी कमीशन की चेयरपर्सन राधा चौहान करेंगी। कमेटी से अपनी रिपोर्ट एक महीने के अंदर अमले और तरबियत के महकमे को पेश करने को कहा गया है। तम्बाकू फराहम करदा स्कैंड कॉपियों में पाए गए मामलात के वेरिफिकेशन का अमल और 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की दोबारा जांच जारी है। यह सहूलत सिर्फ उन्हीं तलबा को दस्तियाब है जिन्होंने जांच किए गए अपने जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी हासिल की है। इसी दौरान सीनियर आईएएस अफसर लोखंडे प्रशांत सीताराम को सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई का नया चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। जनाब सीताराम वजारत दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी की खिदमत अंजाम दे रहे थे। उनकी तकर्री राहुल सिंह की जगह हुई है जिनका बतौर एडिशनल सेक्रेटरी जरात और किसानों की बहबूद के महकमे में तबादला कर दिया गया है। हुकूमत ने साथ ही वरुण भारद्वाज को सीबीएसई में सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। वो आला तालीम के महकमे में डायरेक्टर के फराइज अंजाम दे रहे थे। तकर्रियों से मुतालिक काबीना की कमेटी ने इन तकर्रियों की मंजूरी दी है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तालीम बाइख्तियार बनने का एक ताकतवर वसीला है जो लोगों को खुद कफील बाखबर और बासलाहियत बनाता है। सदर जमहूरिया कल नई दिल्ली में स्कॉलरशिप स्कीम के कबायली मुस्तफिदीन से खिताब कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हकीकी माना में तरक्की तभी मुमकिन है जब माशरे के सभी तबकात समाजी इकतसादी और तालीमी तरक्की करें। सदर जमहूरिया ने इस बात को उजागर किया कि हुकूमत की स्कॉलरशिप स्कीम ने कबायलियों की जिंदगी में अक्सर तब्दीली पैदा की है और उनके लिए आला तालीम और नए मौके तक रसाई मुमकिन हो पाई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा कि भारत में हुनर की कोई कमी नहीं है और उन्होंने उसे फरोग देने के लिए उसके निशानदेही करने उसे परवान चढ़ाने और उसे सही मकाम अता करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गुज़श्ता 12 साल के दौरान दूर अंदेश क़यादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के तहत भारत में खातिर ख़ा तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों किसानों ख़वातीन और जवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। इस मौके से आकाशवाणी न्यूज गुज़श्ता 12 वर्षों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम के बारे में एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। भारत ने जोर देकर कहा है कि भारत और नेपाल के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में किसी तीसरे फरीक का कोई रोल नहीं है। वजारत खारजा में तर्जमान रणधीर जायसवाल ने नेपाल के वजीर आजम की भारत नेपाल सरहद से मुतालिक रायजाई और उसके बाद नेपाल की वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा एक बयान का जवाब देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरहद से मुतालिक मामलात के सभी पहलुओं से निमटने के लिए कायमशुदा बाहमी तरीकेकार मौजूद हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि हालांकि भारत नेपाल सरहद के तकरीबन 98% हिस्से की वाजे तौर पर हदबंदी हो चुकी है लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जिस पर काम होना बाकी है। भारत ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के मुश्तरक बयान में गैर जरूरी तस्करे को भी मुस्तरद कर दिया है। जनाब जायसवाल ने कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अटूट हिस्से हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों के सिलसिले में जिनकी खुद कोई हैसियत न हो उन्हें कोई बात कहने से गुरेज करना चाहिए। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेसी रोड्रिगेज आज से भारत के 4 रोजा दौरे पर रहेंगी। कल नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि उनके हमराह खारजी उमूर इकतसादी व मालियाती उमूर साइंस और टेक्नोलॉजी मवासलात व इत्तलात और नकलो हमल के महकमों के वजरा भी होंगे। जायसवाल ने कहा कि मोहतरमा रोड्रिगेज अपने दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दो तरफा बातचीत करेंगी। इस बातचीत में तवानाई तिजारत सरमायाकारी सेहत की देखभाल अद्वियात और काबिल तजदीद तवानाई जैसे शोबों में इश्तराक के इम्कान तलाश करने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। भारत ने फजा से जमीन पर वार करने वाले अंदरून मुल्क तैयार करदा रुद्रम 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम DRDO और भारतीय फजाइया की जानिब से सभी अहम निजाम की सलाहियत को कायम रखते हुए यह आजमाइशी तजुर्बा किया गया है। वजारत दिफा ने कहा है कि इन मिसाइल को पहले से तयशुदा निशाने की जानिब दागा गया। चांदीपुर में मरबूत टेस्ट रेंज पर नस्बशुदा मुख्तलिफ आलात की जानिब से परवाज से मुतालिक डेटा में इस बात की तस्दीक की गई है कि इस आजमाइशी तजर्बे के सभी मकासद हासिल कर लिए गए हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO भारतीय फजाइया दिफा से मुतालिक सरकारी कंपनियों शराकतदारों और सनतकारों को इस हौसलाबी के लिए मुबारकबाद दी है।
उन्होंने कहा कि इस कामयाब आजमाइशी तजुर्बे से अंदरूनी मुल्क तैयार करदा दिफाई टेक्नोलॉजियों की बढ़ती सलाहियत का इजहार होता है और जदीद हथियार निजाम

0: मांग के सिलसिले में आत्मनिर्भरता की जानिब एक अहम कदम है। मरकज ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक जाब्तों में तरमीमात को नोटिफाई कर दिया है। ये तरमीमात 180 दिन के लिए भारत आ रहे गैर मुल्की अफराद को मुल्क में अपने क्याम में तोसी की ख्वाहिश की सूरत में उन अफराद के वीजे की मुद्दत खत्म होने से पहले रजिस्टर करने को मुमकिन बनाती है। वजारत दाखिला ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक तरमीमी जाब्तों 2026 को नोटिफाई किया है, जिसमें इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक सवाबित 2025 के तहत रजिस्ट्रेशन की मुद्दत और अपील मेकानिज्म में अहम तब्दीलियां मुतारफ करा गई हैं। जब्तों में पहली मरतबा ऑनलाइन अपील निजाम को जोड़ा गया है। किसी ऑर्डर से मुतासिरा कोई शख्स अब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के कमिश्नर के पास ऑनलाइन अपील दाखिल कर सकता है। ऑर्डर मौसूल होने के 30 दिन के अंदर अपील दाखिल करना लाजमी होगा। कमिश्नर को 60 दिन के अंदर मुतल्लिका फरीकों को सुनना और मामले को हल करना होगा। प्रसार भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म वेब्स ओटीटी ने नवंबर 2026 में अपने आगाज के बाद से 2 साल से भी कम वक्त के अंदर 1 करोड़ रजिस्टर्ड सार्फिन से तजावज कर लिया है। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने कहा है कि इस संगमेल से अंदरूनी मुल्क डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा इख्तियार किए जाने की अक्कासी होती है, जो नाजरीन को काबिल भरोसा और मुख्तलिफ तरह का कंटेंट फराहम करता है। 1,40,00,000 से ज्यादा डाउनलोड्स के साथ अब वेब्स ओटीटी कंटेंट के सिलसिले में शराकत दारी को उसत देने, इलाकाई और तालीमी मवाद को मुस्तहकम करने और मार्च 2027 तक 2 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स के निशाने को हासिल करने पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर 24,000 से ज्यादा कंटेंट टाइटल्स, 15,000 घंटे से ज्यादा कंटेंट, 140 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स और 200 से ज्यादा रेडियो खिदमत दस्तियाब हैं। रूस की जानिब से यूक्रेन की राजधानी कीव और दिगर यूक्रेनी शहरों पर रात भर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों में कम से कम 21 शहरियों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इन हमलों में शहरी बुनियादी ढांचे और तवानाई के मरकज को निशाना बनाया गया है। जनरल ज़ेलेंस्की ने अमरीका से मजीद पेट्रियट फजाई दफाई मिसाइलें फराहम करने की दरख्वास्त की है। इस दौरान रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि ये हमले यूक्रेन की जानिब से किए गए हमलों के जवाब में हैं। रूसी वजारत दिफा ने दावा किया कि सभी तयशुदा ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। आलमी मौसमियाती महकमा WMO ने सख्त इंतबाह जारी किया है कि अल नीनो का मौसमी निजाम तश्कील पा रहा है और तवक्को है कि ये इस साल दुनिया भर में शदीद मौसमी हालात पैदा करेगा। मौसमियाती अदारे के मुताबिक इस बात का 80% इम्कान है कि अल नीनो का मौसमी निजाम इस साल जून और अगस्त के दरमियान पैदा होगा और नवम्बर तक बरकरार रहेगा। साइंसदानों का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली इसके असरात को मजीद शदीद बना देगी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने CBSE की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए खिदमात की दस्तियाबी की जांच के सिलसिले में पैनल तश्कील दिया है। उसने लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का नया चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। भारत ने नेपाल के साथ बाहमी मामलात के हल के लिए किसी तीसरे फरीक के शामिल होने को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने फजा से जमीन पर वार करने वाले अंदरूनी मुल्क तैयार करदा रुद्रम 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। प्रसार भारती के वेब्स ओटीटी ने अपने आगाज के 2 साल के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा सार्फिन का संगमेल पार कर लिया है और यूक्रेन में रूसी हमलों में 21 अफराद हलाक हो गए हैं। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी आप सुन रहे हैं और दूसरा विस्की नशरियात, जिसमें मैंने पेश है क्लासिकी मौसीकी। इस प्रोग्राम के तहत पंडित भजन सुपुरी का संतोर पर बजाया राग किरवानी सुनते हैं।

पंडित भजन सुपुरी का संतूर पर बजाया राग किरवानी। समीर आप सुन रहे थे, इसके साथ ही क्लासिकी मौसीकी रही प्रोग्राम खत्म होता है। यह आकाशवाणी आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। निशा मेरा पेश है सदाबहार फिल्मी नाखों का प्रोग्राम आखिर शब। तमाम सामीन की हिम्मत में अब्दुल्ला की जानिब से पुरखलूस आदाब।

जमीन तो नहीं और सही फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग आपने सुना, मुकेश का गाया हुआ। ये अब सुरैया को सुनते हैं, फिल्म का नाम है शोखियां।

0: द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिक्स आज से चार दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रोड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए कड़े मुकाबले में खलीलुर रहमान को 99 वोट मिले, जबकि साइप्रस के बहुपक्षीय मामलों के विशेष दूत एंड्रियास काकोरिस को 91 वोट प्राप्त हुए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए पारगमन वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। यह व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस संबंध में घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि वे तेलंगाना अपनी समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत, रचनात्मकता और उद्यमशीलता की भावना के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात के सूरत में एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा सूरत में बरदौली कस्बे के पास महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की 2 बसों की टक्कर के कारण हुआ। इस दुर्घटना में 15 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के सूरत में हुए सड़क हादसे में जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2,00,000 रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड में खेले जा रहे तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत ने इंग्लैंड के सामने 181 रन का लक्ष्य रखा है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करने वाली इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 180 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, न्यूज रेड बाय आरएस राघु। The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking was interested by Central Board of Secondary Education CBSE. OSEM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12 board examinations, replacing traditional paper checking. The committee will be chaired by Chairperson of the Capacity Building Commission, S. Radha Chauhan. The committee will submit its report within a month to the Department of Personnel and Training. Meanwhile, the CBSE yesterday officially activated online portal for verification of marks and re-evaluation of answer sheets of Class 12 students. Our corresponding report says that the facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books. Delhi Court has extended the judicial custody of 5 accused in a neat paper leak case till 15th of this month. On Monday, 2 other accused were sent to 14 days of judicial custody. The CBI has arrested 13 accused in the case so far. Last month, the National Testing Agency cancelled the National Eligibility Cum Entrance Test held on 3rd May amid allegations of paper leak. A re-examination has been scheduled for 21st of this month. India has rejected any role for third parties to resolve its boundary matters with Nepal days after Nepalese Prime Minister Birendra Shah sought involvement of China.

सुन रहे कार्यक्रम गीत सुनहरे, और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और रफी की साहब की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

उसने कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या।

ஆய்மா.

गाई, दुहाई है दुहाई है दुहाई है दुहाई, तू कहाँ से आई, तुझे तो मौत न आई, आए महंगाई महंगाई महंगाई।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली है। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स आज से 4 दिन के दौरे पर भारत आ रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए कड़े मुकाबले में खलीलुर रहमान को 99 वोट मिले, जबकि साइप्रस के बहुपक्षीय मामलों के विशेष दूत एंड्रियाज काकोरिस को 91 वोट प्राप्त हुए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए पारगमन वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। यह व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस संबंध में घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि तेलंगाना अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, रचनात्मकता और उद्यमशीलता की भावना के लिए प्रसिद्ध है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले दौर में थाईलैंड की बुसानन ओंगबा मरुंगफान को 25-23, 21-16 से हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें इंडोनेशिया के अल्बी फरहान ने सीधे गेमों में 21-19, 21-16 से हराया। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रॉयलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by Central Board of Secondary Education CBSE. OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12th board examination, replacing traditional paper checking. The committee will be chaired by Chairperson of the Capacity Building Commission, S. Raghu Chauhan. The committee will submit its report within a month to the Department of Training, Personnel and Training. Meanwhile, the CBSE yesterday officially activated online portal for verification of marks and re-evaluation of answer sheets of Class 12 students. Our correspondent reports that the facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books. A Delhi court has extended the judicial custody of five accused in the NEET paper leak case till 15th of this month. On Monday, two other accused were sent to 14 days of judicial custody. CBI has arrested 13 accused in the case so far. Last month, the National Testing Agency cancelled the National Eligibility Cum Entrance Test held on 3rd May amid allegations of paper leak. Re-examination has been scheduled for 21st of this month. India has rejected any role for third parties to resolve its boundary matters with Nepal days after Nepalese Prime Minister Balendra Shah sought involvement of China and the UK to address the long-standing dispute. External Affairs Ministry spokesperson Nandi Jaiswal said both sides have established bilateral mechanisms to deal with all aspects of the border matter.
1: While close to 98% of India-Nepal boundary has been demarcated, there are some unresolved segments. The shifting of the course of Gandak River has resulted in this situation. In addition, there are cases of cross-border occupation and encroachment of no man's land in demarcated segments of the boundary, which are currently being mapped jointly. We have

0: साथ कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बारेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और प्राथमिकता के आधार पर इसे लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि अगस्त्यमलाई के संरक्षित क्षेत्रों के अतिक्रमण मद्रास उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद कई दशकों से जारी है और लगातार बढ़ता गया है। दिल्ली अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत में 15 दिन बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और

0: अभी आप सुन रहे थे गजल और गीत का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। कलाकार हैं महाराजा पूरम, संतानम, दीप्ति भाटिया और कन्ना कुमार, साथ ही कुमार देवेन।
1: प्रस्तुत है अर्चना।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

0: अब आज का अर्चना कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 4:20:55 होने को हैं। अब वक्त है कार्यक्रम नाद ब्रह्म का। कर्नाटक संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए उषा विजय कुमार द्वारा गाया राग चारू केशी।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे नाद ब्रह्म का कार्यक्रम वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून 2026 सुबह के 4:53 और 48 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए आपको बताते हैं आगे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें।

5:20 पर आप सुन सकते हैं देशभक्ति गीत, जबकि 5:30 का वक्त होगा कार्यक्रम स्वर रंजनी का।

0: फिर तोड़ने ना आवे हर पुन के।
1: श्लोक महला पहला, पहला सुचा आप होए सुचे बैठाया, सुचा होए के देव्या लगा पढ़न श्लोक, हथी जाई सटा किस लगा दोख, अन्न देवता पानी देवता बसंतर देवता लून, पंजवा पाया किरत ताहो आखबा पवित, पापी सो तन गड्या थुका पया तित, जित मुख नाम ना उचरे बिना वे रस खाए,
0: जित मुख नाम ना उचरे बिना वे रस खाए, नानक

नानका ज्यों तेल पौड़ी आपे ही करना की कल आपे कीते तारिये देखे कीता अपना तर कच्ची पक्की सारिये जो आया सो चल सी सब कोई आई बारिये जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनो विसारिये।

तन जियो तन जियो तन जियो तन जियो